सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: राधा, ओ राधा।
3: क्या है? मैं नहीं बोलती।
2: देखो आज होली है, मुझे तंग क्यों कर रही हो?
3: जा, मैं नहीं सुनती।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: आभा दुबे जी हाथरस से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में धैर्य कैसे रखें अगर हम बहुत कठिन परिस्थिति में हैं, वो कठिन परिस्थिति असहनीय हो रही है जिसमें हम चाहकर भी तुरंत परिवर्तन ना ला पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में निर्णय कैसे लें और कैसे?
2: भगवान का यदि भरोसा है तो हर परिस्थिति का परिवर्तन है। कोई भी परिस्थिति हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। यदि भगवान पर भरोसा है और भगवान का भजन है, भगवान का भजन नहीं है तो संसार के किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से आपके धैर्य की सीमा नहीं रहेगी, धैर्य टूट जाएगा। और धैर्य तभी रहेगा जब भगवान का भरोसा है, निश्चित समझो भगवान का। हम आपको एक प्रसंग बता रहे हैं। महोबा से वाराणसी जा रहे थे तो महोबा में जिस भगत ने टिकट लेके दी, वो विशेष हमारा कोई परिचित नहीं था, ऐसे ही श्रद्धालु, तो उसने 3 स्टेशन की सार्वजनिक टिकट खरीद के दी। सार्वजनिक जो जनरल में जहां बैठा जाता है वो टिकट दी और बैठाला उसने हमको उसमें जिसमें एसी आदि लगा होता है। हमें मतलब उसका ज्ञान नहीं कि टिकट का कोई फर्क होता है। इतने में थोड़ी दूर ही ट्रेन चली कि पूरा फोर्स चेक कर रहा था, हमसे बोले टिकट, तो हमने वो निकाली तो उसने कड़वे शब्दों में कहा, पढ़े लिखे हो तुम, ये टिकट 3 स्टेशन की थी, कब व्यतीत हो गया? जनरल में टिकट जनरल की थी और तुम बैठे कहां, कोच में हो, ऐसे खड़े हो जाओ। हम तो भगवान के सारे खड़े हो गए, हमको तो कोई ज्ञान था नहीं कि अब उनको तो अपनी वर्दी का और अपने उसका भाव था ही, वो अपनी सेवा कर रहे थे, ठीक है, उनका डांटना भी ठीक था। खड़े हुए तो अब हमारे मन में आया कि हो सकता है लोग दंड विधान करें, तो आंख मूंदा भगवान का चिंतन किया। तो ही एक आदमी ऊपर से उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की और पैसा दिया, इतनी बड़ी कागज की टिकट दी, बोले बाबा बैठ जा, क्या है? उस व्यक्ति से हमारा कोई परिचय नहीं है जो उतर के आता है, कौन है? भगवान। अंदर उसके भगवान ने प्रेरित किया, एक मिनट में कार्य कर दिया। अगर हमारा भगवान पर भरोसा है तो बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी अशांति, बड़े से बड़े दुख का ऐसे निदान हो जाएगा, आप बिल्कुल विश्वास रखिए। ये हम अपने अनुभव की बात कहते, भले हमसे गलती हुई हो और हम समस्या में फंस रहे और भगवान को पुकारा तो भगवान उस समस्या का नाश कर देंगे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा, भगवान का स्मरण ही तत्काल समस्त विपत्तियों से रक्षा कर देता है। पर होता क्या है, हम लोगों का स्वभाव बना है संसार का आश्रय लेना। जैसे द्रौपदी जी को सभा में निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन घसीट रहा है, उसी समय भगवान को क्यों नहीं पुकारा? क्योंकि उनके मन में था मेरे 5 महाबली पति हैं, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जो अकेले विश्व को जीत सकते हैं। लेकिन उनकी आशा पे पानी फिर गया जब 5 पतियों ने सर नहीं उठाया, तब आशा हुई कि भीष्म जैसे महाबली, द्रोणाचार्य जैसे आचार्य, कृपाचार्य, इतने बड़े बड़े धर्मात्मा बैठे, इनके बीच में मुझे कौन निर्वस्त्र करेगा? लेकिन फिर

0: वस्त्र ही बन गए, वस्त्रावतार हो गया। भगवान स्वयं वस्त्र बनकर के द्रौपदी के अंग पर विराजमान हो गए। दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला मूर्छित हो गया, लेकिन यहां से पल्लू नहीं हटा पाया द्रौपदी का। यदि हम चाहे जैसे हो भगवान का भरोसा दृढ़ रखें, तो आज भी भगवान है, आज भी भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान संभालते, भगवान न संभाले तो ऐसी प्रचंड माया है कि हम सब न जाने कहां बहकर खड़े हो जाए, लेकिन वो कृपा सिंधु है। वो हमारे अवगुणों को, हमारे दोषों को न देखकर केवल अंदर के भाव को देखते हैं कि ये मेरे से जुड़ा है, ये मेरा अपना है, बस इसी बात से भगवान कल्याण कर देते हैं। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। यदि चूक हो जाए, गलती हो जाए, अपराध बन जाए, तो भगवान उधर नहीं देखते। भगवान ये देखते हैं कि ये मेरा है, इसने मुझे अपना माना है, बस इस बात से। तो कोई भी विपत्ति, कोई भी शोक, हम धैर्य पूर्वक इंतजार करें भगवान की कृपा का, किसी अन्य का आश्रय न ले। अगर अन्य का आश्रय लेंगे तो धोखा हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय तो आपको चमत्कार दिखाई देगा कि बड़ी से बड़ी समस्या को कैसे भगवान ने ऐसे ही फूंक में हटा दिया। बड़ी से बड़ी समस्या, जो भारी विपत्ति जीवन को नष्ट कर सकती है, भगवान ने ऐसे बचा लिया। तो भगवान का भरोसा दृढ़, भगवान का आश्रय दृढ़। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का आश्रय ना हो तो इसी जन्म में आप देखेंगे, जैसे भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की, मीरा जी की रक्षा की, ऐसे भगवान हम सबकी रक्षा करते हैं और करेंगे। यदि दृढ़ विश्वास, अन्य आश्रय न हो, यदि अन्य आश्रय हुआ तो आप पहचान नहीं पाएंगे भगवान की कृपा को। अगर केवल भगवान का भरोसा, तो आप देख लेंगे आपके जीवन में एक नया चमत्कार होगा। आपको दृढ़ विश्वास होगा कि भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं। तू
1: जो है। आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन।

0: डायमंड का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
2: भक्ति गीत के बाद स्वागत पर रउआ सबके प्रोग्राम आपन दी आपन देखभाल में। दोस्त लोग रउआ तो पता ही बा कि ई कार्यक्रम लेके आवेली राव रेडियो दोस्त दीपाली। तो सबसे पहले दीपाली की ओर से नमस्कार सुप्रभात। ई है रेडियो रिमझिम 90.4। तो अब चली कहीं जाओ आगाज आज के आपन दे आपन देखभाल कार्यक्रम के। दोस्त लोग हम अपना कार्यक्रम के शुरुआत में बताएं सेहत खातिर आसान घरेलू नुस्खा। कमजोरी होके पे जौन लोग दुबलापन के शिकार होके उ लोग के भोजन के साथ 2 या 3 चम्मच शहद खाए के चाहिए। और ये रात के सोते समय ठंडा फीका दूध में शहद घोल के पिए के चाहिए। होके पे 1 ग्लास ठंडा पानी में 1 से 2 चम्मच शहद घोल के पिए से शरीर में चुस्ती फुर्ती आवेला। अपच होके पे पालक के सब्जी खाई व टमाटर के रस पी। पैर के तलवा में जलन होके पर बड़ा बड़ा लौकी के टुकड़ा काट के उई पर घीसी। ना हो एक खातिर दोनों समय खाना खाए के बाद थोड़ा सा गुड़ खा ली। बवासीर में नींबू काट के ओई पर खाई वाला कत्था लेप के रात के छत पर रख दी। आ सुबह सुबह एके चूसी ऐसे बवासीर में लाभ हुई। सिर में अमरूद काट के नौसादर के लेप करी और रात भर खुला स्थान पर रखी। आज सुबह सुबह खा ली। खूनी बवासीर में ऐसे बहुत लाभ हुई। एक कप गुलाब जल में आधा नींबू निचोड़ ली। आए के सुबह शाम कुल्ला करे पर मुंह के बदबू दूर होके मसूड़ा व दांत मजबूत हुई। साथ 2 केला प्रतिदिन सेवन करे से भूख में वृद्धि होला। आंवला भून के खाए से खांसी में फौरन राहत मिलेला। एक चम्मच शुद्ध घी में हींग मिला के पिए से पेट दर्द में राहत मिलेला। टमाटर के पीस के चेहरा पर एकर लेप लगावे से त्वचा की कांति और ये चमक दुगुना बढ़ जाला। मुहासा चेहरा के झाई और ये दाग धब्बा दूर करे में मदद मिलेगा। पसीना अधिक आवत होके तब पानी में फिटकरी डाल के स्नान करी। पानी में नींबू निचोड़ के पानी पिए से ज्वर के तापमान गिर जाला। सोते से पहले सरसों के तेल नाभि पर लगावे से होठ ना फाटेला। ग्राम छाछ में 10 ग्राम गुड़ डाल के सिर धोए से अथवा नींबू के रस लगा के सिर धोए से रूसी दूर होल। श्रोतागण चली आप जानल जाओ सेहत के साथ ही गेहूं के अंकुरित दाना के घरेलू नुस्खा। अंकुरित अनाज सेहत खातिर काफी फायदेमंद होला। गेहूं के आटे से बनल रोटी तो सबसे सहज और पौष्टिक खाद्य है। अंकुरित गेहूं भी रउआ ढेर सारा विटामिन और पौष्टिक तत्व दे सकेला। गुड़ से भरपूर होके के साथ ही ई रउआ वजन में भी आसानी से समा सकेला। अंकुरित गेहूं शरीर खातिर शक्तिवर्धक टॉनिक के तरह ही है। अंकुर उगल होखल गेहूं में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होला। शरीर के उर्वरक क्षमता बढ़ावे खातिर विटामिन ई एगो आवश्यक पोषक तत्व है। ये ना इस तरह के गेहूं के सेवन से त्वचा और बाल भी चमकदार बनल रहेला। किडनी ग्रंथि तंत्रिका तंत्र के मजबूत और नया रक्त कोशिका के निर्माण में भी इसे मदद मिलेला। गेहूं में मौजूद तत्व शरीर से अतिरिक्त वसा के भी शोषण कर लेला। इतना ही ना अंकुरित गेहूं खाए से शरीर के मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेला। इस शरीर में बने वाला विषैला तत्व के भी निष्प्रभावी कर रक्त के शुद्ध करेला। दाना के चबा के खाए से शरीर की कोशिका शुद्ध होला और इसे नया कोशिका के निर्माण में भी मदद मिलेगा। अंकुरित गेहूं में उपस्थित फाइबर के कारण एके नियमित सेवन से पाचन क्रिया भी सुचारू रहेला। अतः जे लोग के पाचन संबंध समस्या हो उ लोग खातिर भी अंकुरित गेहूं के सेवन फायदेमंद है। तो चलिए अब हम बता दें कि गेहूं के अंकुरित रुआ कैसे करें। गेहूं अंकुरित करे खातिर अच्छा गुणवत्ता के गेहूं ली आ गेहूं के साफ करके 6 से 12 घंटा खातिर पानी में भिंगा दी। ये गेहूं के दिन में 3 बार पानी से धोई। अब गेहूं के कपड़ा में बांध के रख दी। अंकुरित होके पर मनचाहा तरीका से एकर प्रयोग करी। बच्चे खातिर भी रउआ ऐसे पराठा सॉफ्ट पूरी सैंडविच जैसन चीज बना सकता नहीं। उहे डाइट कॉन्शियस लोग एकरा के सिंपल तरीका से नींबू तथा हल्का मसाला के साथ खा सकेला। तो दोस्त लोग ई रहला गेहूं से जुड़ल कुछ घरेलू नुस्खा। अब चलिए हम बता दी हर मौसम में आहार के नियम। के बर्तन में पिए वाला पानी रखे के चाहिए आ सुबह उठते ही एक ग्लास पानी पिए के चाहिए। सुबह के खाना 10 से 12 बजे के बीच खाए के चाहिए। खाना खाते समय खुश रहे के चाहिए। भोजन के साथ सलाद खाए के चाहिए। दोनों समय के भोजन के बीच 7 घंटा के अंतर होके के चाहिए। खाना के साथ थोड़ा पानी पिए के चाहिए, ज्यादा ना। खाना खाए के बाद कुल्ला जरूर करी। खाना खाए के बाद 500 कदम चले के चाहिए। रात के खाना 6 से 9 बजे के बीच खाए के चाहिए। रात के 10 बजे के बाद कुछ ना खाएं। रात के सूते के पहले दूध जरूर पिए के चाहिए। खाना खाए के बाद बायां करवट आराम करे के चाहिए। रात के खाना सूते से 2 घंटा पहले खाए के चाहिए। रात के ब्रश करके सूते के चाहिए। खाना के समापन मिठास के साथ करे के चाहिए, यानी खाना के बाद अंत में एगो मीठा चीज जरूर खाए। ई रहल है आज के हेल्थ टिप्स जोन के अजमा के रउआ पा सकतनी निरोगी काया। तो अति हमरा के यानी आपन दोस्त दीपाली के जाए के अनुमति आ रखी रउआ आपन सेहत के ख्याल। नमस्कार।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करे 87-894-18744।
9: ठक ठक
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
12: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
12: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
13: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
14: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
15: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
15: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
15: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
15: कॉल करे 70-70-75-6300 या 70-70-42-42, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
16: नमस्ते
17: जी। नमस्ते, किससे मिलना है आपको?
16: मुझे अविनाश जी से मिलना है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ।
17: लेकिन साहब किसी से मिलना नहीं चाहते?
16: देखिए मैं बहुत दूर से आया हूँ स्पेशली उनसे मिलने, और मुझे बहुत ही दूर जाना है उनसे मिलने के बाद।
17: अरे मैंने कहा ना भाई, साहब किसी से नहीं मिलते, फैन से तो बिल्कुल ही नहीं, तुम क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, चलो जाओ।
16: भाई भाई प्लीज सुनो, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, कुछ लाया हूँ उनके लिए जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगी।
18: सुबोध कौन है?
17: साहब कोई फैन है आपका, कह रहा है कि आपके लिए कुछ लाया है जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी।
18: आने दो उसे, ड्राइंग रूम में बिठाओ।
17: आइए, साहब बुलाया है।
18: क्यों आए हो?
16: अविनाश जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपकी सभी बुक्स पढ़ी हैं, मैं आपसे मिलने बहुत दूर से आया हूँ। जिस तरह से आपने बजरंगबली को समझा है और अपनी बुक्स में लिखा है।
18: क्या चाहिए तुम्हें?
16: वो मेरा नाम नील है, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ।
18: ऐसा क्या लाए हो?
16: एक कहानी। और
18: देखो तुम अपना समय बर्बाद मत करो, और मेरा तो बिल्कुल नहीं, मुझे अब कहानियों से कोई लेना देना नहीं है।
16: ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है, आप बजरंगबली के इतने बड़े भक्त हैं, मैंने पढ़ा है। देखिए मेरा विश्वास कीजिए।
18: अब क्या बदल सकता है मेरी जिंदगी में?
16: आपको अपने भगवान पर भरोसा नहीं है?
18: नहीं, और मैं बजरंगबली का भक्त था, अब नहीं हूँ। क्या गलती कर दी थी मैंने जिसकी मुझे ये सजा मिली है? हाँ, उस स्ट्रोक के बाद मैं कहीं का भी तो नहीं रहा। मैं तो दिन रात बजरंग बली के बारे में पढ़ता था, लिखता था, उनका गुणगान गाता था। फिर ये सब क्यों हुआ मेरे साथ? मेरी भगवान की ओर श्रद्धा और लिखने का जज्बा सब चला गया है। जब ये हाथ ही नहीं रहे तो मेरा भगवान पर से विश्वास उठ चुका है, और ये जो मेरी किस्मत है ना, उससे भी।
16: मैं आपकी किस्मत ही तो बदलने आया हूँ अविनाश जी।
18: ठीक है, कहो। आज तुम भी एक कहानी सुना लो मुझे, मैं तसल्ली से बैठकर तुम्हारी ये कहानी सुनूंगा। लेकिन अगर कहानी खत्म होने के बाद मुझे लगा कि तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया है, तो मैं एक पल वेस्ट किए बिना तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा।
16: ये ठीक है, तो मैं शुरू करूं। कई सालों पहले एक ऋषि थे, शिलाद, जिनके कोई बच्चे नहीं थे। वो रोज देवों से प्रार्थना करते थे एक बच्चा पाने की कामना में। एक दिन उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रदेव ने उन्हें दर्शन दिए।
9: शिलाद, आंखें खोलो पुत्र, तुम रोज इतनी श्रद्धा से प्रार्थना क्यों कर रहे हो?
19: प्रणाम इंद्रदेव, मुझे एक पुत्र की कामना है देव। ऐसा पुत्र जो बुद्धिमान हो और एक योग्य पुत्र हो।
9: ऐसा पुत्र तो सिर्फ भगवान शिव ही दे सकेंगे, तुम्हें उनकी साधना करनी चाहिए।
19: धन्यवाद इंद्रदेव, मैं अभी शिव जी की साधना प्रारंभ करता हूँ।
16: और बस उस दिन से सालों तक शिलाद ऋषि शिव की साधना करने लगे, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए।

0: वो देखिए स्वामी, वो ऋषि आपकी भक्ति में कितने विलीन हैं।
1: हाँ पार्वती, वो शिलाद है और सालों से मेरी साधना कर रहा है।
0: तो क्या आप उन्हें दर्शन नहीं देंगे?
1: अवश्य दर्शन दूंगा देवी, थोड़ा धीरज रखो।
0: तो जाइए ना, उन ऋषि की तड़प और भक्ति का तो मैं भी एहसास कर पा रही हूँ।
2: नारायण नारायण।
1: अरे नारद मुनि, अब आप विष्णु लोग छोड़कर यहाँ आए?
3: हाँ महादेव, मुझे ऋषि शिलाद की श्रद्धा का आभास हुआ तो सोचा एक बार आपसे मिल लूं।
1: अच्छा, तो आपने भी शिलाद की श्रद्धा को महसूस किया? नारद मुनि, हर घटना का एक समय होता है, मैं अवश्य दर्शन दूंगा उसे।
3: महादेव, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको शिलाद की साधना पर कोई संदेह है?
1: नहीं नारद मुनि, मैं जल्द ही उसे दर्शन दूंगा।
4: ओम नमः शिवाय।
1: आंखें खोलो ऋषिवर।
4: ईश्वर, मेरे आराध्य ईश्वर, मेरी पुकार सुन ली आपने ईश्वर। धन्य हो गया मैं प्रभु।
1: हाँ शिलाद, तुम्हारी साधना से मैं प्रसन्न हुआ। मांगो जो वरदान चाहिए।
4: भोलेनाथ, मुझे एक पुत्र चाहिए जो बुद्धिमान भी हो और एक योग्य पुत्र भी हो।
1: तथास्तु।
5: ऐसा कहकर शिवजी वहां से चले गए और अगले दिन शिलाद को अपने घर के पास के पेड़ के नीचे एक बच्चा मिला और शिलाद समझ गया कि शिवजी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी है। उसने उस बच्चे का नाम नंदी रखा और शिलाद जैसा चाह रहा था वैसे ही वो बच्चा बहुत बुद्धिमान था। और एक दिन
4: ऋषिवर, आप कहाँ जा रहे हैं?
6: तुमने और नंदी ने ये दो दिन हमारी सेवा करके हमें बहुत प्रसन्न किया है शिलाद, हम बहुत प्रसन्न हुए। किंतु अब हमें चलना चाहिए, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। आयुष्मान भव,
7: सदा सुखी रहो।
4: ये तो हमारा सौभाग्य था ऋषि, आप जाने से पहले कृपया मेरे पुत्र को आशीर्वाद दें, उसे भी ये सौभाग्य पाने का अवसर दें।
7: अवश्य,
4: मैं अभी उसे बुलाता हूँ। नंदी, नंदी।
8: जी पिताजी।
4: ऋषिवर को प्रणाम करके इनका आशीर्वाद लो पुत्र।
8: प्रणाम ऋषिवर, मुझे आशीर्वाद दें।
7: खुश रहो।
6: हाँ, सदैव प्रसन्न रहो पुत्र नंदी, और अपने माता पिता को भी प्रसन्न रखना।
7: अब हमें चलना चाहिए।
4: एक क्षण रुकिए ऋषिवर। नंदी, तुम अंदर जाओ।
8: जी पिताजी।
4: ऋषिवर, आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने में संकोच क्यों कर रहे थे? यदि कुछ ऐसी बात है तो आप कृपया मुझे बताएं।
6: हमें क्षमा करना शिलाद, किंतु तुम्हारे पुत्र को हम आयुष्मान भव का आशीर्वाद नहीं दे सकते।
7: हाँ शिलाद, तुम्हारे पुत्र के भाग्य में अल्पायु में मृत्यु लिखी है, बस हम इससे आगे कुछ नहीं कह पाएंगे। चलते हैं, अपने पुत्र का ध्यान रखना, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे और नंदी के साथ है।
4: नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता मेरे पुत्र, ऐसा नहीं हो सकता।
8: क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ
4: पुत्र?
8: कहिए ना पिताजी।
4: दुर्भाग्य है मेरा, कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये पुत्र कि इतनी कामनाओं के बाद मैंने तुम्हें पाया था, लेकिन मेरी कामना तुम्हें बचा नहीं सकेगी पुत्र।
8: ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ।
4: पुत्र, ऋषिवर ने कहा कि तुम अल्पायु में।
8: पिताजी बस इतनी सी बात।
4: क्या इतनी सी बात? तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता नंदी?
8: पिताजी आप भी ना व्यर्थ ही अश्रु बहा रहे हैं। आप ही ने कहा था ना कि मैं स्वयं महादेव शिव का वरदान हूं, तो मेरा भाग्य भी वही बदलेंगे।
7: पिताजी आप चिंता ना करें, मैं महादेव की साधना करूंगा, वो हमें इस परेशानी से बाहर अवश्य निकालेंगे। मुझे विश्वास है, विश्वास है मुझे।

0: नारायण नारायण।
1: नारद मुनि कहिए, कैसे आना हुआ?
0: महादेव, आप तो देवों के देव हैं, सर्वज्ञ हैं, आप तो जानते ही हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ।
1: अब कह भी दो नारद मुनि।
0: महादेव, आपके वरदान से जन्मा शिलाक पुत्र नंदी आपकी कठोर साधना कर रहा है। मैं बस आपको स्मरण कराने आया था कि उसके भाग्य में अल्पायु मृत्यु लिखी है। प्रभु, कहीं आप उसका भाग्य बदलने का वरदान न दे दें।
1: मैं समझ गया नारद कि आप क्या चाहते हैं, परंतु वो मेरा भक्त है और उसका ये संकल्प मुझे प्रसन्न कर रहा है। यदि मैं उसका भाग्य बदलने का वरदान उसे दे भी दूं, तो इसमें क्या परेशानी है?
0: किंतु महादेव।
1: नारद मुनि, नंदी एक बालक है, किंतु उसका संकल्प साधारण नहीं। वो अपने भाग्य पर रोने के बदले उसे बदलने का संकल्प कर रहा है, और ऐसे भक्तों का भाग्य बदल भी जाए तो विधि के विरुद्ध नहीं होगा।

0: शिवाय।
1: पुत्र, क्यों पुकार रहे थे मुझे पुत्र, कहो।
2: प्रभु, प्रभु क्या प्रकाश है आपका।
1: कहो पुत्र, क्या सोच रहे हो।
2: हे ईश्वर, क्षमा करें मुझे, मैं आपके प्रकाश में इतना विलीन हो गया था कि आपको प्रणाम भी नहीं किया। प्रणाम महादेव, प्रणाम।
1: कहो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें।
2: प्रभु, मेरे पिताजी इस बात से परेशान हैं कि जल्दी ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, किंतु मुझे इस बात का कोई भय नहीं है। मैं आपकी आराधना अपनी आयु के लिए नहीं कर रहा था प्रभु, मैं तो बस आपके साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा के लिए आपकी सेवा में रहने की अनुमति चाहता हूँ प्रभु।
1: क्योंकि तुम हटी हो और तुमने अपने हट से ही मुझे प्रसन्न किया है। क्या तुम सदा के लिए मेरे वाहन और मेरे मित्र बनना चाहोगे।
2: यह आप क्या कह रहे हैं महादेव, मैं आपका वाहन।
1: नंदी, इतना ही नहीं, तुम मेरे सभी गणों में से सबसे ऊपर भी रहोगे। आओ मेरे गले लग जाओ।
2: प्रभु, प्रभु।
3: और उस दिन से आज तक नंदी और उसके पिता शिलाद कैलाश में रहकर शिवजी की सेवा करते हैं। नंदी, जैसे ही आप में भी अगर भाग्य को सौभाग्य में बदलने का संकल्प होगा तो शिवजी जरूर आपकी मदद करेंगे।
4: कहानी तो अच्छी है नील, और मैं ईश्वर के चमत्कारों में हमेशा से विश्वास करता आया हूँ, पर मैं चाहे जितना भी शिव की साधना करूं, मेरे ये हाथ तो वापस नहीं आने वाले ना।
3: अविनाश जी, मैं जानता हूँ आपकी भक्ति और श्रद्धा के बारे में, तभी तो यहाँ आया था आपको इस बात का एहसास कराने कि ईश्वर ने आपके लिए अपनी आंखें बंद नहीं की हैं। आप एक स्टोरी टेलर हैं, आपके पास कहानियों की कमी नहीं है, आपके पास पैसे हैं, फेम है, इतने रिसोर्सेज हैं और मन में विश्वास भी है, तो आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं। जब तक आप खुद की मदद नहीं करेंगे, शिव आपके जितने भी करीब हो मदद नहीं कर सकेंगे।
4: तुम कहना क्या चाहते हो नील।
3: आप लिख नहीं सकते हैं तो लिखवा तो सकते हैं।
4: मतलब?
3: देखिए, मुझ जैसे न जाने कितने फैंस हैं आपके, जो आपसे सीखना चाहते हैं, आप उन्हें क्यों नहीं रख लेते आपके साथ। ऐसे आपके कहानियों को हाथ मिल जाएंगे और उन्हें आप जैसे लर्न टीचर।
4: मैं समझा नहीं, यू मीन इंटर्न।
3: यस, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, उनकी एप्लीकेशंस लेकर आया हूँ मैं, आप देख लीजिए, बात कीजिए।
4: हाँ नील, तुम सच कह रहे हो, मैं भी कितना बुद्धू हूँ, इतनी जल्दी हार मान ली मैंने।
3: चलो, अब यहाँ मेरा काम तो हो गया, मुझे चलना चाहिए।
4: तो क्या तुम इतनी दूर से मुझसे बस ये कहने आए थे नील।
3: हाँ और क्या, मुझे लगा आपको अभी इसी की जरूरत है।
4: तुमने जो मुझे फिर से जीने की, फिर से लिखने की जो उम्मीद दी है ना, थैंक यू सो मच, हाउ कैन आई रीपे यू।
3: बस अपना नेक्स्ट बुक रिलीज कर दीजिए अविनाश जी, अब और इंतजार नहीं होता।
4: जरूर करूंगा, और तुम्हारा एड्रेस दे दो, मेरी पहली कॉपी है ना, तुम्हें ही मिलेगी।
3: एड्रेस? मेरा एड्रेस तो शिवजी का एड्रेस है, अमरनाथ, वहीं जा रहा हूँ। बुक के साथ आप खुद भी आ जाइएगा, शिवजी को भी अच्छा लगेगा।
4: क्या?
3: कुछ नहीं, मैं चलता हूँ, हर हर महादेव।
0: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लाइफ में कई बार ऐसा टाइम आता है जब लगता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट शून्य, बोले तो जीरो, लेकिन ये जीरो से हीरो बनाता है वो जो कोशिश करना छोड़ता नहीं, वो जो हार नहीं मानता। जब भी आपके लिए ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोल देता है, क्योंकि वो जानता है कि तेरे लिए रास्ता कौन सा सही है और कौन सा गलत है। उस पर विश्वास रख और अपना काम करते रहे डार्लिंग। शिव मेहनत और कोशिश करना सिखाते हैं, शिव खुद पर विश्वास रखना सिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999। जो

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: स्टूडियो 5, एन इस्लामिक।

0: यार, मेरी मामा तो मुझे कभी भी रोजा नहीं रखने देती।
1: क्यों भाई क्यों? वो क्या कहती हैं?
0: मेरी मामा कहती हैं

0: आमदा, क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हें रोजा रखने देंगी?
1: नहीं यार, मेरी मामा तो बड़े प्यार से समझाती हैं।
0: अच्छा, वो क्या कहती हैं?
1: मेरी मामा तो ये कह देती

0: यार खिजर, तुम तो रोजा रखते होगे, तुम्हारे घर वाले तो नहीं मना करते होंगे।
1: नहीं यार, मेरे घर वाले तो हर साल यही कहते हैं।
0: क्या कहते हैं खिजर, हमें भी बताओ।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: अरे हे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9956 या 9956 57902। ओम नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी हो गई तेज, साइबर अपराध के प्रति बच्चों को किया गया जागरूक, पासपोर्ट जांच में मिल रही भ्रष्टाचार की खबरों पर SP ने अपनाया सख्त रुख, न्यू पुलिस लाइन के पीछे चंवर से मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव, पुलिस जांच में जुटी, और फंदे से लटका मिला एक महिला का शव, बुधवार को आने वाले मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी भी हो गई पूरी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की तैयारियों को लेकर आज जिलाधिकारी समीर सौरभ के निर्देश पर अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे की अध्यक्षता में बैठक की गई थी। इसमें समारोह को भव्य, गरिमामय एवं सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए विभिन्न विभागों के तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में समारोह स्थल की साफ सफाई, मंच, ध्वजारोहण, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पेयजल, विद्युत, चिकित्सा, अग्निशमन, सुरक्षा, यातायात एवं पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के भीतर तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया, साथ ही आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का भी निर्देश दिया गया। इसके अलावा परेड में शामिल होने वाले दलों के नियमित अभ्यास, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता तथा आम नागरिकों एवं अतिथियों की सुविधा का विशेष ख्याल रखने को कहा गया। समारोह स्थल पर चिकित्सा दल, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, विद्युत बैकअप एवं आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। साइबर थाना के द्वारा जिले में साइबर अपराध को लेकर समय समय पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गोपालगंज जिले के रामरतन शाही हाई स्कूल में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों को साइबर अपराध से बचाव तथा ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप फ्रॉड, जॉब फ्रॉड, ऑनलाइन सिक्योरिटी तथा व्हाट्सएप 2-स्टेप वेरिफिकेशन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों को साइबर ठगी से बचने, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP पिन, पासवर्ड एवं अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करने और अपराध होने की स्थिति में तत्काल 1930 पर कॉल करने की जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक ने पासपोर्ट सत्यापन की प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध एवं नागरिक हितैषी बनाने के उद्देश्य से

0: जिले के सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है। पासपोर्ट सत्यापन का कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित सेक्टर पदाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष के द्वारा स्वयं किया जाएगा। इस कार्य के लिए चौकीदार, सिपाही अथवा अन्य अधीनस्थ कर्मी को आवेदक से संपर्क करने या सत्यापन संबंधित कार्य के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। आम नागरिकों की सुविधा के लिए स्पष्ट किया गया कि केवल पासपोर्ट सत्यापन के लिए आवेदक को थाना पर आने की आवश्यकता नहीं है। सत्यापन के क्रम में यदि किसी दस्तावेज अथवा अन्य जानकारी की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक उसे निर्धारित माध्यम से थाना में उपलब्ध करा सकता है। पुलिस के द्वारा आवेदन में अंकित पता, पहचान एवं अन्य आवश्यक विवरणों का नियमानुसार सत्यापन किया जाएगा। यदि कोई चौकीदार, सिपाही अथवा अन्य कर्मी पासपोर्ट सत्यापन के संबंध में आवेदक से संपर्क करता है, दस्तावेज, जानकारी इत्यादि मांगता है, पैसे अथवा किसी अन्य अनुचित लाभ की मांग करता है या सत्यापन के नाम पर किसी प्रकार का दबाव बनाता है तो इसे निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने ऐसे संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जांच कर नियमानुसार कठोर विभागीय और विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पुलिस अधीक्षक ने आम नागरिकों से अपील किया है कि ऐसे किसी भी स्थिति में किसी प्रकार का भुगतान न करें। अगर पासपोर्ट सत्यापन के लिए कहीं कोई पैसे की मांग की जाती है तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 90-318-27-299 पर करें। घटना से संबंधित फोटो, वीडियो, ऑडियो, स्क्रीनशॉट अथवा अन्य साक्ष्य उपलब्ध होने पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी पुलिस अधीक्षक के इस हेल्पलाइन नंबर पर साझा किया जा सकता है। ऐसी कोई भी जानकारी मिलेगी तो पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ऐसे दोषी पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर थाना क्षेत्र के न्यू पुलिस लाइन के पीछे बसडीला चंवर से एक अज्ञात व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि चंवर में पानी लगा हुआ था, कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए गए थे। इसी बीच लोगों ने सड़े गले शव को देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक के शरीर पर ब्लैक कलर का बोल बम लिखा हुआ टी शर्ट मिला है। पुलिस हत्या या आत्महत्या दोनों ही बिंदुओं पर गहन छानबीन कर रही है। फिलहाल शव की पहचान करने में नगर थाना की पुलिस जुटी हुई है। थावे थाना क्षेत्र के बढ़ई हत्ता गांव में एक महिला का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। मृत महिला खुशबू देवी बढ़ई हत्ता गांव के मुकेश कुमार की पत्नी बताई जा रही हैं। इस घटना के बाद परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और इस मामले में आगे की जाँच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि मायके पक्ष के लोगों ने दहेज में 2 लाख रुपए नहीं देने पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को आवेदन दिया है। अब पुलिस इस मामले में मृतिका की सास और ननद को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। घटना के बाद से अन्य ससुराल पक्ष के लोग फरार बताए जा रहे हैं। पटना के उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता वाई भी गिरी की माताजी के श्राद्ध कर्म में प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आगमन गोपालगंज में होना है। इस दौरान हेलीकॉप्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री पटना से गोपालगंज बिस्कोमान भवन में पहुंचेंगे और वहां से वे वाई भी गिरी के माताजी के श्राद्ध क्रम में शामिल होंगे। इसको लेकर जिले में प्रशासनिक स्तर पर जोरदार तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री के सुरक्षा और अन्य स्वागत को लेकर जिला प्रशासन और पार्टी के नेताओं ने आवश्यक तैयारी पूरी कर ली है। मीरगंज थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान मीरगंज हथुआ मोड़ के पास एक आरोपी को पकड़ा है। इसके पास से स्मैक जैसा नशीला पदार्थ मिला है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी अंकित कुमार पिता नगीना पासवान साकिन राजमोहन कॉलोनी थाना मीरगंज का रहने वाला है। इसके पास से मिले मादक पदार्थों को जब्त करते हुए आवश्यक जाँच की जा रही है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। विजयपुर थाना की पुलिस ने मारपीट के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त राजकुमार राम को गिरफ्तार कर लिया। यह विजयपुर के मझरिया गांव के राम इकबाल राम का पुत्र है। इसे गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विजयपुर थाना की पुलिस ने 2 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 पशुओं को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए पशु तस्करों में बलिंदर यादव पिता राम प्यारे यादव साकिन धुरहिट थाना बड़हज एवं संदीप प्रसाद पिता चंद्र प्रसाद साकिन देवरी थाना मोइल, ये दोनों यूपी देवरिया के रहने वाले हैं। इनके पिकअप गाड़ी से 3 पशुओं को पुलिस ने जब्त किया है और इन दोनों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। तब यहाँ एयरफील्ड के शीघ्र परिचालन को लेकर सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने नागरिक उड्डयन निदेशालय के सचिव से आज व्यक्तिगत मुलाकात की और उन्होंने संसदीय क्षेत्र हथुआ अनुमंडल स्थित सवियां एयरफील्ड के शीघ्र परिचालन को लेकर सरकार के नागरिक उड्डयन निदेशालय के सचिव से मुलाकात के बाद मांग करते हुए उन्हें आवेदन दिया। इस दौरान सवियां एयरफील्ड के वास्तु स्थिति और उसमें हुई प्रगति के संदर्भ में भी उन्होंने माननीय सचिव महोदय को अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक विजय मिश्रा ने आज अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इधर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने पुलिस केंद्र में लाइन डे का आयोजन किया। वहां उन्होंने पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुना और उसको निष्पादित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। नगर थाना की पुलिस ने 665 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बसडीला चैनपट्टी नेशनल हाईवे पर छापेमारी करते हुए स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया। मौके से परिवहन में इस्तेमाल स्कॉर्पियो को जब्त करने के बाद आरोपी मिथिलेश कुमार सोहनी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में आयोजित 3 दिवसीय अनुसंधान परिषद की बैठक का समापन हुआ। इस दौरान किसानों के लिए जलवायु सहिष्णु टिकाऊ और लाभकारी कृषि के समाधान विकसित करने पर जोर दिया गया। माझा थाना की पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस पर पहले से मामला दर्ज था। पकड़ा गया आरोपी ओम प्रकाश यादव, पिता बाबूलाल यादव, यह माझा के श्रीरामपुर का रहने वाला है। दूसरा आरोपी शंभू यादव, पिता विश्वनाथ यादव, यह माझा के दानापुर का निवासी है। इन दोनों को आज विधिवत गिरफ्तार कर इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। इस दौरान इनके घर से मोटरसाइकिल भी बरामद करने की बात बताई जा रही है। मोबाइल टावर पर चढ़कर ब्लैकमेल करने का मामला लगातार जिले में बढ़ता जा रहा है। आज भी कटिया में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि अपने पत्नी को मायके से बुलाने के लिए युवक टावर पर चढ़ गया और इस दौरान वहां भारी भीड़ जुट गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने इसे टावर से नीचे उतारा। इस दौरान कई घंटों तक यहाँ अफरा तफरी का माहौल देखा गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी हो गई तेज। साइबर अपराध के प्रति बच्चों को किया गया जागरूक। पासपोर्ट जांच में मिल रही भ्रष्टाचार की खबरों पर एसपी ने अपनाया सख्त रुख। न्यू पुलिस लाइन के पीछे चंवर से मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव, पुलिस जांच में जुटी। और फंदे से लटका मिला एक महिला का शव। बुधवार को आने वाले मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी भी हो गई पूरी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 097 06 575।

0: भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97-7-14-86-164।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
6: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: कभी कभी।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा, मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99 399 66 999।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: किस

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746164।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 91555485507 या 91629335388।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर, पेट्रोल पंप के पास।

0: जय प्रकाश नारायण जन नेता पर चर्चा का आयोजन भी आज निर्धारित है। तो अब घड़ी की सुइयां हमको अनुमति लेने के लिए आपसे कह रही हैं, तो इसी के साथ मुकेश और तन्वी को अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
1: स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात आ हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ वंडरफुल डे।
0: नमस्कार।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
7: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ

0: ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्यौहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देश भर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
2: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
3: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में JPSC JSSC परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: आईएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में ये अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
6: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बेछोरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। आईएमडी ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांति मोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक। और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्ता की पहली सुर्खी है, पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है, संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है, मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है, एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है, टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा, हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है, कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
8: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
9: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
9: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
11: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
12: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
8: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
9: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
8: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
13: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
14: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
15: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
16: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
15: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
13: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: इसका मतलब मोहब्बत, मतलब जिंदगी। जोया।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
1: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86-034-48-652 पे।
9: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
11: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
12: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
11: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94-704-34-468 पे।
13: आज भी आप हमेशा तो अपने दोस्तों के साथ ही रहते हो,
14: तो क्या हुआ?
13: तो एटलीस्ट ये वीकेंड तो हम साथ रह सकते हैं ना?

मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं मेरे दोस्तों से भी बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं।

0: Hey guys, this is Ramji Gulati. Thank you for showing so much of love to Tere Bin Kiwe Ravangi. Guys, we've just re-uploaded the song and we need all your support. Jitna pyar aapne pehle diya, please continue to do so. Like, comment, share and don't forget to subscribe our channel. For those who love me and my team, we'll subscribe here and we're going to promise you, we're going to give you a lot of songs more.
1: नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करें 6252 62112 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन, मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
4: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए संसद ने विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने नव सृजित डिग्री महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में गलत दस्तावेज देने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की। और प्रदेश के सभी निबंधन कार्यालयों में 17 अगस्त से जमीन, प्लॉट और फ्लैट निबंधन की प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस होगी। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
1: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने अब तक निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: राज्य सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किया है। गृह विभाग ने विशेष अवसरों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां प्रदान की हैं। नई व्यवस्था के तहत पुलिस जोन और रेंज में तैनात पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक के साथ ही जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक, सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी भी इन शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे। किसी व्यक्ति से शांति भंग होने की आशंका की स्थिति में विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी अपने स्तर पर ही निवारक कार्रवाई करते हुए बॉन्ड या मुचलका भरवा सकेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के मौके पर नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्यौहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: राज्य में नव सृजित 211 डिग्री महाविद्यालयों में हाल में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में बिहार के 81% लोगों को अवसर मिला है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि कुल चयनित 2451 सहायक प्राध्यापकों में 1980 बिहार के निवासी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया में राज्य में लागू आरक्षण नीति के प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया गया है। उन्होंने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की गई है। श्री चौधरी ने कहा कि आगे किसी भी अभ्यर्थी द्वारा गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की जानकारी सामने आने पर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले को लेकर 17 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया फिर शुरू होगी। श्री तिवारी ने कहा कि तबादला प्रक्रिया के दूसरे चरण में वे शिक्षक आवेदन कर सकेंगे जो किन्हीं कारणों से पहले चरण के तहत आवेदन नहीं कर पाए थे। मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग का लक्ष्य 31 अक्टूबर तक तबादले से जुड़े सभी मामलों का निष्पादन करना है। महिला शिक्षकों को गृह प्रखंड और पुरुष शिक्षकों को गृह जिले के भीतर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का स्थानांतरण पूरी तरह पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन पोर्टल और बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत किया जाएगा। प्रदेश में जमीन प्लॉट और फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस होगी। 17 अगस्त से सभी निबंधन कार्यालयों में यह नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। पेपरलेस निबंधन के तहत डीड तैयार करने से लेकर स्टाम्प शुल्क भुगतान, बायोमेट्रिक सत्यापन और हस्ताक्षर तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। निबंधन के बाद डिजिटल डीड की प्रति व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि राज्य के 50 निबंधन कार्यालयों में यह व्यवस्था पहले ही शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के पारंपरिक उत्पादों को GI टैग दिलाने के लिए मुहिम तेज कर दी गई है। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 20वीं GI समीक्षा बैठक में शाहबाद का अनरसा, मनेर का लड्डू और कोसी जूट जैसे नए उत्पादों को भी GI पहचान दिलाने के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान GI टैग दिलाने के लिए प्राप्त 28 आवेदनों की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि इनमें 10 आवेदन स्वीकृति के अंतिम चरण में हैं। गौरतलब है कि हाल ही में प्रदेश के 3 उत्पादों, नालंदा की 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक, गया की पत्थर कट्टी शिल्प कला और भोजपुर की पीढ़िया चित्रकला को GI प्रमाण प्रदान किया गया है। प्रदेश में अति संक्रामक रोग खसरा रूबेला के उन्मूलन के लिए 31 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इस अभियान के तहत सभी जिलों को निर्धारित तिथि तक छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण करने के निर्देश दिए हैं। विशेष अभियान के तहत 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी छूटे हुए बच्चों का सर्वे कर सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद नियमित टीकाकरण सत्रों के अलावा सभी स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष टीकाकरण शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही बच्चों को विटामिन ए की खुराक भी दी जाएगी। गौरतलब है कि खसरा रूबेला तेजी से फैलने वाला रोग है, जिसके प्रभाव से बच्चों को निमोनिया, दस्त और दिमागी संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है। केंद्र सरकार ने पान मसाला की पैकिंग को लेकर नया नियम लागू किया है। इसके तहत पान मसाला की पैकिंग में प्लास्टिक, पॉलिथीन, PVC, सिंथेटिक पॉलीमर, एल्यूमिनियम फॉयल और मेटल की परत के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने पान मसाला की पैकिंग के लिए प्लास्टिक रहित कागज, पेपर बोर्ड, सेलुलोज या दूसरे प्राकृतिक सामग्री के इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं। नया नियम गजट में प्रकाशित होने के साथ ही 10 अगस्त से लागू हो गया है। प्रदेश में मानसून के कमजोर पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में उमस और गर्मी का असर एक बार फिर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भागों में के जिलों में आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 12 अगस्त को राज्य के उत्तर

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद।

0: अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करे 94512-11001।
0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
2: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 FM में।
4: रमजान बोल रहा हूँ, बनारस।
3: हाँ जी, कैसे हैं आप?
4: बढ़िया है।
3: तो क्या हो रहा है अभी?
4: अभी नाश्ता हुआ, काम कर रहे हैं। काम चालू कर रहे हैं।
3: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है। तो बता दीजिए कौन से गाना सुनना है आज आपको?
4: सुना दीजिए हीरो नंबर 1 गोविंदा का मूवी है, उसमें गाना है मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से।
3: जी जी है,
4: सुना दीजिए।
3: गाना डेडिकेट
4: जी, इतने श्रद्धा सुनेंगे हम, सुनेंगे आप लोग कुछ लोग।
3: जी बिल्कुल, तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 91.4 FM।
4: आज शाम को प्ले हो जाएगा? कल?
3: आज नहीं तो कल हो ही जाएगा।
4: ठीक है, आइए प्ले कर दीजिए।
3: बिल्कुल।

0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 एफएम में।
1: जी बिल्कुल, आपका जिला देवघर झारखण्ड से।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं मैम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: उधर गोपालगंज का मौसम कैसा है मैम?
0: गोपालगंज का मौसम तो अभी ठीक है।
1: बारिश वगैरह हो रही है?
0: नहीं, बारिश तो नहीं हो रहा है, लेकिन मौसम ठीक है।
1: ठीक है ना, इधर थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, मौसम इधर भी ठीक। आज सुना दीजिए मैम।
0: बता दीजिए,
1: पुरानी फिल्म है तू हसीन में जवान, फिल्म का गाना धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म है, सुमन कल्याणपुर की आवाज में।
0: और गाने के बोल क्या है?
1: गीत के बोल है आमदेव जैसी तेरी सुरतिया।
0: जी, और गाना सुनाना भी है?
1: जी जी, सबसे पहले मैं आपको रेडियो रेमी के जितने भी श्रोतागण हैं सबको सुनाना चाहता हूँ।
0: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रेमी। जी।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
0: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारीलाल विजय कुमार?
8: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारीलाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारीलाल विजय कुमार।
8: मुरारीलाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18744।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51-51 पे। Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
11: कैसे हैं मैडम जी?
10: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
11: ठीक हूँ मैं।
10: अच्छा जी, क्या कर रही हैं अभी?
11: अभी आपके पास फोन लगा रहे
10: हैं। अच्छा, नाश्ता हो गया आपका?
11: जी हो गया।
10: हाँ हाँ, हम सभी का हो गया है। समाचार ठीक है, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
11: गाना सुनाइए, राष्ट्रीय गाना।
10: कौन सा?
11: 15 अगस्त वाला गाना, राष्ट्रीय
12: है गाना शर्मा फिल्म का।
13: अच्छा जी, चलिए
12: ये गाना है।
13: गाना किसी को सुनाना भी है?
12: जी मैडम जी, आपको जितना रेडियो रंजन दोस्त है, आरजे सब है, सोनी मैडम, मनोरमा मैडम
13: जी
12: आप है, और जितना लेजेंड है सबके।
13: ओके जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
12: जी मैडम जी, नमस्ते
13: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम।
1: क्या
0: मेरा ठीक है, आप बताइए आपका क्या हाल है?
1: अरे दुनिया है, इधर का मौसम कैसे हो रहा है?
0: इधर का अभी मौसम ठीक है,
1: ठीक है। बारिश सही हो रहा है?
0: नहीं, बारिश हल्का फुल्का कभी कभी,
1: मतलब मौसम थोड़ा ठंडा ही होगा। तो हमको एक गाना सुनना था।
0: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
1: गाना बोल है, हर आदमी को बीबी का गुलाम होना चाहिए। और ये गाना जितने रेडियो सुनने वाले श्रोता है, हमारे मनान भाई है, इसको सुनवाना चाहता हूँ।
0: जी जी, ओके जी, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिंगटोन 90.4 FM।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
10: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो,
13: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
13: नमस्ते जी, राधे समरसिया कबीरपुर गांव से कर रहा हूं बतिया।
12: हाँ जी, कैसे हैं आप?
13: बिल्कुल मस्त है, अपना सुनाइए घर परिवार।
12: हम सभी ठीक हैं, घर परिवार में भी सब कोई ठीक है।
13: चलिए भोलेनाथ बनाए रखे आप लोग। तो फरमाइश की तरफ बढ़ चले क्या?
12: बिल्कुल बढ़िए।
13: गाना सुनना है और राधा पौडवाल की आवाज में एक लाइन गा कर बता रहा है।
12: बिल्कुल बताइए।
13: आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की हो, यही सुनना है हमें।
12: ओके जी, और डेडिकेट भी रहेगा गाना?
13: जी, सबसे पहले आपको और श्रुति बहन को और गोपालगंज जिले के सुपर स्टार फैन है आप लोगों की घोषणी आराम मलिक है और सांतरा कुशवाहा जी है और सभी गोपालगंज जिला वासियों को, सिवान जिला वासियों को आए हम बनी।
12: जी चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार। तो बस आपका रेडियो
0: जी मनोज कुमार जी, क्या हाल चाल?
1: हाल चाल ठीक है, आप अपना?
0: हम लोगों का भी ठीक है। हम धनाव से बोल रहे हैं, धनाव से इरशाद मास्टर। इरशाद मास्टर पहचान गए?
1: हम तो पहचानते हैं, लेकिन आप मुझे पहचानने में गलती।
0: अच्छा, भारती जी क्या बोल रहे हैं?
1: हाँ।
0: आवाज आप लोगों को मिलता जुलता है। और सब?
1: और सभी, आप बताइए, आप कहते हैं?
0: हम लोग भी ठीक है। बारिश भी हो रहा है आजकल, रोज एक दो झलक आ जा रहा है बारिश। जब शुरू में ट्राई कर रहे थे तो बहुत बिजी बता रहा था, सोचे कि चलिए लास्ट में कर देते हैं।
1: हाँ, शुरुआत में थोड़ा ज्यादा बिजी रहता
0: है। बहुत ज्यादा रहता है, तो पहले फर्स्ट में हम कॉल कर चुके हैं बहुत बार। ये सब ठीक है।
1: गाना
0: सुना दीजिएगा। मूवी का नाम है, गा के बता दे रहे हैं।
1: बिल्कुल।

0: मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल के आवाज में है
1: जी।
0: और सबसे पहले आप लोगों को सुनवाना चाहता हूँ और जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सभी श्रोताओं को, और हम लोग रोशन टेलर में सुनेंगे आपका मेरा गाना बजेगा तो गाना से,
1: और फिर गाना प्ले करते हैं सुनते रहिए रेडियो रंजन।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
11: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 91.4 FM में। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल क्या है जनाब?
13: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
12: मेरा भी बहुत अच्छा है।
13: नाश्ता पानी हो गया है?
12: हाँ हाँ, नाश्ता करके आते हैं घर पे।
13: अब ड्यूटी चल रही है? नहीं।
12: हाँ,
13: कितना बजे से कितना बजे तक?
12: अभी 10 बजे से 6 बजे तक।
13: 10 से 6 तक रहती हैं आप?
12: आप सब बताइए, आप सब क्या कर रहे हैं?
13: हम अभी कपड़ा काट रहे थे।
12: कपड़ा की शूटिंग करते हैं?
13: अच्छा जी,
12: सिलाई करती हैं?
13: जी सिलाई करते हैं।
12: चलिए सब तो बढ़िया है।
13: तो रेडियो भी हम लोग यूज करके क्या सुनते हैं, और कपड़ा भी अच्छा तरह से मतलब सिलते उलते हैं?
12: चलिए बढ़िया है।
13: और लाल को दुकान को भी फरमाइश मिलते हैं?
12: आज बता दीजिए कौन से गाने की फरमाइश है?
13: गाने की फरमाइश और सामान भी मोहब्बत बता देना। तो सामान आया है, सामान का तो महीना चल रहा है। एक गाना सुना दीजिएगा, और आपको भी डेडिकेट करना चाहते हैं, और सभी रेडियो जितने सुनने वाले हैं दोस्तों को डेडिकेट कर।
12: जी जी बिल्कुल। तो चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रंजीम 90.4 FM।

0: हाँ मैडम नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: जी मैडम।
1: नाम बताया?
0: कमलेश बोल रहे हैं, रखना से।
1: अच्छा जी, कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: गाना नहीं है, दिल के पतिया पर लिखा था, भी पतिया।
1: अच्छा, और गाना डेडिकेट है
0: या?
1: गाना किसी को सुनाना चाहते हैं आप?
0: हाँ, जितना लोग सुन रहे हैं सब किसी को साथ और आपको भी।
1: ओके जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 एफएम।
0: जी मैडम नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9797146164।
8: Excuse me boss, you have a text message।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमझिम 90.4 FM पे समय 9:28 हो रहे हमारी स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम, कहां से मैसेज कर रहे हैं उस स्थान का नाम टाइप करना है और सेंड करना है हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है आप लोगों को तो पुराने गाने की फरमाइश करना है, ताकि आपकी फरमाइश आप तक पहुँचाई जा सके, आपको सुनाई जा सके और आप सुन पाएँ। यदि आप नए गाने का फरमाइश करेंगे तो पूरा तो नहीं हो पाएगा और आप इंतज़ार करते रह जाएंगे। तो पुराने गाने पसंद करते हैं तो अभी फरमाएं और चलिए बढ़ा जाए, कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए कि नहीं देखा जाए। और यहाँ पे मैसेज कई पहुंचे हुए हैं और लिखा गया है कि क्या हाल है सर जी, मैं कमलेश कुमार लेज सविया फील्ड गोपालगंज से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, बढ़िया है, और अपना बताएं कि आप कैसे हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सोनू भाई नमस्कार, मुझे गाना सुनना है जिसका बोल मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, सुनाना है आपको। भारती जी हैं, सविता जी हैं, बबीता जी हैं, निशा जी हैं, रोशनी जी हैं, गुड़िया जी हैं और अहमद भाई, खुशबू जी, शगीर जी, राम कुमार पांडे जी, कमरान भाई, अफसर भाई, जवेद भाई, समीर भाई, मुकेश भाई, गट्टा शर्मा, उत्तम सोनी जी हैं और पंकज भाई, शाहजहां जी, सोनी जी और श्रीराम जी, तमाम सखी सहेलियों को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और आप बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया प्लीज़ प्ले माई सॉन्ग। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम।

की किस्मत में मेरी जान लिख दे। और इस लाइन को पहुंचाने वाले अपना नाम मनीष रजक फाजिल नगर खुशी नगर उत्तर प्रदेश से हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सनम भैया कैसे हैं, तो बिल्कुल बढ़िया है। और स्वीटी शर्मा जुड़ी हैं वृंदावन से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सनम भैया जी कैसे हैं आप, मैं शो से जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से, तो बिल्कुल बढ़िया आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में रोहित जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, बुलेट चौधरी तिनखड़िया से जुड़े हुए हैं, गाना सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज कई पहुंच रहे हैं तो मैसेज को रोकते हैं और गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, फिर अगले स्लॉट में बाकी मैसेज जो भी हैं उसको शामिल करेंगे, क्योंकि गाने भी सुनने हैं। और पहले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं दिलीप जी की, और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे कई मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे एक मैसेज पहुँचा हुआ है और इस मैसेज को करती हैं रुखसार, और इन्होंने नई गाने की फरमाइश की है, तो आपकी फरमाइश हम नहीं कर पूरी कर पाएंगे। और एक और मैसेज पहुँचा हुआ है नैना शर्मा जी की तरफ से, और उनके तरफ से भी गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है जान से प्यारा। तो कौन से गाने सुनना है ये बता दें, और इसमें कई ऑप्शन आ रहे हैं, आगे की लाइन भी बताती हैं तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे में से इस पहुंचा हुआ है, और बुलेट चौधरी जी तीन फड़िया से जुड़े हुए हैं, इनकी तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है दुपट्टा सरक रहा है मेरा दिल धड़क रहा है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे अभी, और आगे कुछ मैसेज दिखा जाए। लिखा गया है कि दिल का हाल बताना नहीं आता, किसी को ऐसे तड़पाना नहीं आता, सुनना चाहते हैं आपकी आवाज़ मगर बात करने का बहाना नहीं आता। मनीष रजक फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, बिल्कुल बहाना ढूंढ लीजिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि भोजपुरी सॉन्ग, तो भोजपुरी सॉन्ग हम नहीं सुनाएंगे इस गाने को। आप पुराने फिल्मी गाने के फरमाइश करती हैं भोजपुरी में, चाहे जो भी श्रोतागण हैं जो सुन रहे हैं भोजपुरी सुनना चाहते हैं पुराने फिल्मी गाने के फरमाइश करें, हम बिल्कुल पूरा करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, आप कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। काफ़ी दर्द भरा सॉन्ग रहा दिलीप भैया के द्वारा, वैसे मुझे सॉन्ग सुनाने के लिए थैंक्स। मैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से मैसेज करती हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सुनो भैया नमस्ते, अमली नौसाद दरभंगा भाजीतपुर से, आज तो आप पहला सॉन्ग ही लाजवाब और ज़बरदस्त सुना दिए, बस इसी तरह सुनाते रहिए। बिल्कुल यदि आप लोगों का साथ रहेगा तो इसी तरह सुनाते रहेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सुनो जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मंकेश सहनी भैरवगंज वेस्ट चंपारण से, गाने का बोल है प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा। ओहो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने की फरमाइशी तो पूरा करने की कोशिश से आगे बढ़े। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा, सुनो भाई नमस्कार, गाना सुनाने के लिए दिल से शुक्रिया। तो चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय, इस मैसेज को करती है शबीना खातून, और आगे कुछ मैसेज नहीं पहुंचा हुआ है तो फिलहाल स्वागत है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि आई एम वेरी फाइन, मैसेज करते हैं कमलेश कुमार ब्लेज सब या फील्ड से, तो बिल्कुल रहना चाहिए। और चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले गाने को सुना जाए।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7 50।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो जिम 90.4 FM पे। शो चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज देखा जाए। और आगे लिखा गया है कि तेरा दिल उदास क्यों है, तेरा दिल उदास क्यों है, तेरी आँखों में प्यास क्यों है, जो छोड़ गया उसे समझदार में, जो छोड़ गया तुझे मजेदार में, उसे मिलने की आस क्यों है, जो दे गया दर्द जिंदगी भर का, वही तेरे दिल वही तेरे लिए खास क्यों है। और इस लाइन को भेजते हैं मनीष रजक। और आगे में शीश पहुँचा हुआ लिखा गया है कि दुपट्टा सरक रहा है तो पिन लगा लीजिए नहीं सरकेगा, बट कमाल के सॉन्ग रहा, मैसेज करती हैं रोशनी। आगे में शीश पहुँचा हुआ है सुपर सॉन्ग, दुपट्टा सरक रहा है मेरा दिल धड़क रहा है, नाइस, मैसेज करती हैं शबीना। और आगे में शीश पहुँचा हुआ है और गाने का फरमाइश, तो उस गाने के फरमाइश हम पूरी नहीं कर पाएंगे, और नैना शर्मा आप दूसरे गाने के फरमाइश करें। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा भी, तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं, और इस गाने के फरमाइश करते हैं शमीर आलम जंगलिया से, और डेडिकेटेड नाम देते हैं इरफान भाई, कमरान भाई, ग़ुलाम हुसैन, अहमद अली, साहिल भाई, शफिया वसीम, सगुफा करीम, रुबीना नाज, शफाक साजा, हिना हजरा, अनमका गुड़िया, सविता ब्यूटी, सबनम जरीन, सबनम सिद्दीकी, नीतू रोशनी, शबीना, शबा, आशा, निशा, तबू, सजदा, संतरा, और आपको। चलिए हम भी हैं आप सभी के साथ, गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।

काफी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं हम सभी रेडियो रमछीम 90.4 एफएम पे सो चल रहा है। इसमें इस फरमाइश का और इस गाने की फरमाइश करने वाले थे शमीर आलम और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगली गाने के फरमाइश वेस्ट चंपारण से पहुंचा हुआ है और गाने का बोल दिया गया है प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज शामिल कर ले मंके सहानी जी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, मैं भी आपके शो में हाजिर हो चुकी हूँ और मेरा भी एसएमएस को शामिल कर लीजिए। निशा पांडे, तो बिल्कुल स्वागत है आपका। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, काफ़ी प्यारा सॉन्ग, थैंक्स भैया मुझे सुनाने के लिए, मैसेज करती हैं रोशनी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय जी हमें सॉन्ग सुनना है जब दिल धड़कता है, और इस मैसेज को करती हैं प्रियंका। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हम भी हैं जी लाइन में। बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्य। ओहो सोनाली मैसेज करती हैं, गाने का बोल देती हैं दिलबर दिलबर, तो आपकी फरमाइश पूरा करेंगे। जो भी मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, प्लीज़ प्लीज़ भजा दीजिए। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, बने रहे हमारे साथ। और फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अगले गाने की फरमाइश सुनते हैं हम सभी रेडियो रमछीम 90.4 एफएम पे।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
5: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52 599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
6: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है, इसमें फरमाइश का और यहाँ पे अगली मिसेज पहुँचा हुआ है, और अगले गाने के फरमाइश हम पूरी करेंगे। यहाँ पे गाने का बोल स्वर्ग मूवी से दिया गया है, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरी जिंदगी अधूरी। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, थैंक्स फॉर गाना बजाने के लिए, चलिए आपको भी धन्यवाद है मुकेश जी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सुपर सॉन्ग, मैसेज करती है रोशनी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा भी, तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सोनो बाबू, कैसे हैं, लेट से जुड़े हैं, खेद है, पर आपके आपका दिल तो पागल तो नहीं ना है किसी के लिए, पर दिल पर किसी का जोर नहीं है, वेरी और मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से, और कहते हैं कि अगर आपसे सच्चा प्यार होता तो वो ज़रूर आएंगे, सच्चा प्यार होगा तो वो ज़रूर आएंगे, वरना दिखावे का प्यार होगा तो नहीं आएंगे। बिल्कुल, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि अब मेरा गाना बजा दीजिए। बिल्कुल, आपकी भी गाने बजाएंगे, बहुत कम ही समय मिला हुआ है हमें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सुनू जी, मैं अनूप। तो बिल्कुल अनूप जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। बढ़ते आगे, मैसेज आते जा रहे हैं तो मैसेज को रोकते हैं, अगले गाने के फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं।

रेडियो रिमझिम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और अभी गाने सुन रहे थे हम सभी स्वर्ग मूवी से, मेरे दोस्त लौट के आजा, तीन तेरी जिंदगी अधूरी है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि सही में ये सच्चा प्यार की पुकार है, दर्द में सच्चे दोस्त की पुकार की पहचान होती है। बढ़िया सॉन्ग मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और अनूप जी आज तो पूरी नहीं पाएगी और हमें लगता है कि आपकी फरमाइश हम सुनाए हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है, दिल में तुझे बिठा कर। सुरेश जी त्रिवरमा से जुड़े हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, लेकिन गाने की फरमाइश तो नहीं पूरी हो पाएगी क्योंकि काफ़ी समय निकल गए हैं और समाप्ति के कगार पे हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं प्रियंका जी की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है। और गाने का बोल दिया गया है, जब दिल धड़कता है महसूस होती है। तो चलिए आप ही के गाने के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे क्योंकि समय भी हो गए हैं समाप्ति का। और आगे जो भी श्रोतागण मैसेज किए हुए हैं थोड़ा सा सब्र करेंगे और अगले दिन अपने मैसेज को रिपीट करेंगे ताकि हम आपकी फरमाइश सुना सकें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहे आप सब रेडियो रिमझिम 94 FM जो हमेशा कहता है सुना दिल से। नमस्कार।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट

0: अवे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: आसमानों खाने नचते ने सारे नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर काली घाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंगटोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द माइग्रेन चक्कर आना मिर्गी की दौरे झटके सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर फालिज साइटिका न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पादरी बाजार गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग बांझपन ल्यूकोरिया दिमाग की कमजोरी याददाश्त की कमी पेट रोग गैस्ट्रिक लीवर में सूजन बवासीर कान रोग पुराना बुखार नस रोग किडनी की पथरी पीत की थैली में पथरी पेशाब की थैली में पथरी गठिया पुराना जोड़ों का दर्द साइटिका चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी जादवपुर मेन रोड गोपालगंज। संपर्क करें 9955 97644।

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-097-06-575।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया है आप सभी के मनपसंद कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 92 91। जी हाँ, 9852788291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277166596। तो दोस्तों, बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आप सभी के लिए, जब तक हमारे सभी प्यारे प्यारे श्रोतागण जुड़ रहे हैं तब तक आप सभी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करूंगी रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और गाने के बोल हैं, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

अभी आप लोगों ने सुना मेरी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग और गाने की बोल थी, हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं और जो कि लिखते हैं कि भारती मैम, धनेश कुमार मिश्रा, आपको प्यार भरा नमस्कार करता हूँ और ओपनिंग सॉन्ग बहुत अच्छा रहा, मुझे ये तो बताइए कि किससे प्यार हो गया है। तो बहुत बहुत स्वागत है, और मुझे प्यार हुआ किसी से नहीं है, बस गाना बहुत अच्छा लगता है ये। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी नमस्ते, मैं साधु राय चंपारण से, और कैसी हैं मैम, मेरा एक सप्ताह पूरा हो गया है और मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से, क्या हाल है मैम, घर खरा कूड़ा है और नाइस सॉन्ग, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि कितनी दूर निकल गए हम रिश्ते को निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते, लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए दर्द को छुपाते छुपाते। भारती जी नमस्कार, कैसी हैं और आप, और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से और गाना सुनना चाहता हूँ, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं जी मैम नमस्ते, गुड मॉर्निंग जी, और वाह बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है आपका, लाजवाब चॉइस है। तो मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, तो इसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि राजन कुमार तमकुही रोड से और कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और हमारा फरमाइश है, गाने की लिंक भेज दिया हूँ और भारती जी हमारा एक सप्ताह पूरा हो गया है, गाना प्ले कर दीजिएगा ओपनिंग सॉन्ग नाइस। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ, ये प्यारा सा सॉन्ग गाने के बोल हैं फुल करी।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।

ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 88 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप, मुझे गाना सुनना है। और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई और लिख रहे हैं मेरा नाम अजय है, मैं अयोध्या से हूँ और गाने की जो बोल है पहुंची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यह मैसेज पहुंचेगा, भारती मैम नमस्कार, मैं राम कुमार पांडे लंदन से और मैं भी जुड़ गया हूं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यह मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्कार भारती मैडम, हम भी शो से जुड़ गए हैं और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए नई अमन सारी जमतारा से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ जो अगली फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, कैसी हैं आप और मुझे गाना सुनना है। और मैं रोहित देहरादून से और गाने की बोल हैं जो कि पहुंची हुई है और गाने के बोल हैं हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले किया जाए और एंजॉय किया जाए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। काफ़ी खूबसूरत सॉन्ग है।

तो अभी हम लोगों ने सुना रोहित जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग हद कर दी आपने, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी गाना प्ले करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी आज लगता है आप मूड में हैं और शुरुआत में ही गाने को आप गुनगुनाने लगे, बहुत अच्छा लगा और लगे रहिए मंजिल पाही जाओगे। और मैसेज करने वाले हैं धनेश मिश्रा। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुस्तफ़ा सऊदी अरबिया से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं हाय भारती मैम कैसी हो आप और हमें गाना सुनना है, कृपया गाना सुना दीजिएगा। और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मोतिहारी से MD जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं और लिख रहे हैं प्लीज़ मेरा भी गाना सुना दीजिएगा, तो बिल्कुल आपकी भी गाने की फरमाइश पूरी होगी। और इससे पहले हमारे पास यहाँ जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है अजय कुमार जी की तरफ से जो कि अयोध्या के रहने वाले हैं और लिख रहे हैं कि गाने के बोल है फुलवा के देख पगली बातें भौरा। और यहाँ लिंक भी उनकी तरफ से आई हुई, तो चलिए बिना देरी के गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रंजन 90.4 FM में।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, Glamour X 101,354 रूपए और XT125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97714-86164।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि यदि आप रेडियो रिमझिम के हालचाल के बारे में और जानना चाहते हैं तो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल और न्यूज सुन सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ेंगे बिना देरी किए आगे, और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिएगा। हेलो
1: जी, मेरा नाम मुकेश है। मुकेश है
0: जी। जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: हम लाडगढ़ से बोले, हमको बॉर्डर फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: बॉर्डर मूवी का कौन सा सॉन्ग?
1: चिट्ठी आई है आई है।
0: चिट्ठी आई है सुन, उसमें का है
1: जी। हाँ मैम, किसी फिल्म का हो ये गाना सुना दीजिए, चिट्ठी आई है। जी,
0: और सॉन्ग सुनाना भी है किसी को?
1: जी हाँ, नीलम को और आपको और जो हमारे सुन रहे हैं हमारे लोग
0: जी, जी।
1: रेडियो रिमझिम के श्रोता जी, हाँ उन सबको।
0: ओके,
1: और मैम जी आप ठीक हैं?
0: जी जी, हम सभी ठीक हैं। आप सब बताइए, आप सब ठीक हैं ना?
1: जी हम भी ठीक हैं। हम लोग काम करते हैं डेकोरेशन का, जो लाइट वाइट लगाया जाता है शादी ब्याह में। हाँ मैम जी, वही में लगाते हैं, हम काम करते हैं अपना खुद का जनार लाइट जी।
0: ये तो बहुत बढ़िया है
1: जी, शादियों में ले जाना कि अपने लगा के सजाते हैं घर को हम लोग। जी समझ रहे हैं ना?
0: जी जी समझ रहे हैं। ओके जी,
1: मैम जी उधर का मौसम कैसा है? उधर बारिश वरिश हो रही है?
0: नहीं, बारिश तो नहीं हो रहा है अभी, तो गर्मी पड़ रहा है, धूप भी वैसे ही तेज है।
1: मैम जी इधर भी हमारे तरफ बारिश नहीं हो रही है।
0: ओके जी, फिर आपका गाना प्ले कर दिए हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। एंजॉय कीजिए अपने गाने को।
1: धन्यवाद।
0: वेलकम।

अभी हम लोगों ने नाम मूवी से सुना, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि भारती जी गुड आफ्टरनून, मनीष रजाक फाजिलगढ़ कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, हमें भी गाना सुनना है और गाना सुना दीजिएगा तो मैं आपको बता दूँ कि आपके गाने मंगलवार को ही प्ले हुए थे और आज मैं नहीं बजा सकती, और लेकिन आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि धनेश जी लिख रहे हैं कि कुछ सोचूं तो तेरा ख्याल आता है भारती जी, कुछ बोलूं तो तेरा नाम आता है भारती जी, कब तक छुपाऊं दिल की बात को तेरी, तेरी तो हर बात पर मुझे प्यार आता है भारती जी। ओह क्या बात है, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं कि शक्ल के हिसाब से डीपी लगाया करो कन्याओं, धोखा हो जाता है। डीपी रवीना टंडन की और शक्ल रानू मंडल की, और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं सन्यासी रंजन जी। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ मैसेज आया, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून भारती जी, मेरा नाम मुकेश है और मुझे गाना सुनना है मनी मिराज वेलकम मूवी सॉन्ग, और गाने की लिंक पहुँची हुई है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहा है कि मोतिहारी से एमजी जुड़े हुए हैं और फिल्म का नाम और गाने की भूल है जो कि आज फिर तुमसे प्यार आया है, गाने की बोल है आज फिर तुम पे प्यार आया है, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ काफ़ी मैसेजेस पहुँच चुके हैं जो कि लिख रहे हैं कि रेडियो रिमझिम नमस्कार, मैं सुबोध साहू बेगूसराय से, गाना सुनना है और किकरा से कहीं दिल के बतिया, और धन्यवाद भारती जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून उमा शंकर मिश्रा दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से, और लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून भारती दी, क्या हाल है भारती दी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मेरा हाल तो ठीक है, आप सब बताइए आप सब कैसे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकेंद्र कुमार कुशवाहा दुबई से और रहने वाले हैं बंजारी से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि ये वो कहती है मत पिया करो इतनी सिगरेट, होठों की शान जाती है, मैं कहता हूँ मत दिया करो इतना धोखा मोहब्बत में लड़कियों, तुम्हारे धोखे से लड़कों की जान जाती है। और इसी के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और लाइन काफ़ी बढ़िया है। और इसी के साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ नमस्ते सागिर आलम अंसारी फ्रॉम तेजपुर से, और तेजपुर आसाम से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो
1: नमस्ते,
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। नाम बता दीजिएगा अपना, और कहाँ से हैं आप? जी जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: मैम हमको पगले बनाते
0: हैं, और सॉन्ग डेडिकेट भी है। सॉन्ग गाना किसी को सुनाना भी है, बता दीजिए।
1: अपनी मम्मी और भाई के साथ।
0: अच्छा जी, तो आपका गाना प्ले कर दिए हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग पगले बना देलू, और गाना था प्रमोद प्रेमी का। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मनीष जी लिख रहे हैं कि सपनों की दुनिया में हम खोते चले गए, मदहोश न थे पर मदहोश होते चले गए, ना जाने क्या बात थी उस चेहरे में, ना चाहते हुए भी उसके होते चले गए। और बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम जी, और सॉन्ग आज अभी इसी वक्त मुझे लिख रहे हैं कि आज अभी इसी वक्त मुझे पता चला है कि मुझे प्यार हो गया है, और लिख रहे हैं अर्ज किया है इश्क ने इंसान को क्या बना दिया, किसी को कवि तो किसी को कातिल बना दिया, ये फूल का बोझ ना उठा सकी मुमताज, और शाहजहां ने उनकी यादों में ताजमहल बना दिया। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं दुर्गेश आजमगढ़ से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो कि अगली फरमाइश पहुँच गई, लिख रहे हैं भारती जी नमस्कार, मैं नौशाद अली मोतिहारी से, और मुझे भी गाना सुनना है, और हमारे तरफ से सोनी जी को सुनाना चाहता हूँ, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो बिल्कुल आपका भी गाना प्ले होगा। और इससे पहले हमारे पास जो कि फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून भारती जी, मेरा नाम मुकेश है और मुझे भी सुनना है और मनी मिराज वेलकम मूवी सॉन्ग, और मैम हमारा भी याद रखिएगा गाना प्ले करना है। और गाने की यहाँ बोल पहुँच हुई है, मनी मिराज का है, और अचरे से बंधले दिल बंधले रहेगा, तो बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है। चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रमजम 90.4 FM में।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी।

0: लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि सन्यासी रंजन जी, मकान मालिक पूरे साल तेरी बहन आई है और अगर रक्षाबंधन के दिन नहीं आई तो बेटा कमरा खाली कर देना। और इनकी तरफ से हमेशा काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुंचती है और ये भी बहुत ही अच्छा था। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, पहले सावन की पहले हरियाली आपको दिल खुशनुमा करे भारती बहन। और मेरा सॉन्ग आपके लिए, आपके पास कबाड़े की झोली में रखा है, कब उसे खोलेंगे। और लिख रहे हैं न्यायपारा विरई जिला बालोद से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज भाई ठाकुर, ईश्वर राज पप्पू ठाकुर, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैं आपको बता दूं कि कबाड़े के झोले में नहीं रखा हुआ है और आपका सॉन्ग शुक्रवार को प्ले हुआ था, इसीलिए आपका सॉन्ग शुक्रवार को ही प्ले होगा। और इसी के साथ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं दीनानाथ यादव कुवैत से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ एक और गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार जी, आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं मैम आप बहुत अच्छी होंगी। और आज बहुत ही अच्छे गाने की फरमाइश आई है और आप अभी को बहुत बहुत आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनू सऊदी अरबिया से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने की बोल है मनवा लागे। और लिख रहे हैं कि मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरा गाना क्यों नहीं प्ले करती हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई दिक्कत है, आपका भी गाना प्ले होगा। और चलिए कोई बात नहीं, बिना देरी के आपके गाने को प्ले करेंगे और बहुत ही खूबसूरत सी गाने की फरमाइश है। तो चलिए रेडियो रंजन 90.4 FM में एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: अभी हम लोग ने सुना सोनू जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग मनवा लागे, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग सोनू भाई, और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार और लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग भारती दी। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, नमस्ते, प्रणाम सभी दोस्तों को और केशव राज बिहार बेगूसराय से, और गाना सुनना चाहते हैं और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश आई हुई है। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि एक बार करके एतबार लिख दो, कितना है मुझसे प्यार लिख दो, कटती नहीं ये ज़िंदगी अब तेरे बिना, कितना और करूँ इंतज़ार लिख दो। और लिख रहे हैं कि तरस रहे हैं बड़ी मुद्दतों से हम अपनी मोहब्बत का इजहार लिख दो, दीवाने हो जाए जिसे पढ़ कर के हम, कुछ ऐसा तुम एक बार लिख दो। भारती जी नमस्कार, सभी दोस्तों के साथ सोनू भाई को नमस्ते, आपके बीच हम भी जुड़ गए हैं और हमारा भी हाजिर लगा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। जी जी बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा। अच्छा जी, और गाना डेडिकेट भी है। ओके जी, फिर आपका गाना प्ले कर रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। एंजॉय कीजिए अपने गाने को।
1: थैंक यू मैम,
0: वेलकम।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707-06-575।
9: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि अनिल कुमार दरभंगा से, नमस्ते भारती जी, मुझे भी एक सॉन्ग सुनना है और सॉन्ग सुना दीजिएगा। और गाना है चंगा से, नमस्ते भारती जी, मुझे भी एक सॉन्ग सुनना है और सॉन्ग सुना दीजिएगा। और गाना है चल कमरिया शिव के धाम। तो मैं आपको बता दूं कि भक्ति सॉन्ग मैं नहीं सुना सकती, इसके अलावा कोई और गाने की फरमाइश करे तो मैं सुना सकती हूँ, और वैसे भी आपके गाने की फरमाइश कल करे तो अच्छा होगा, क्योंकि कल आपका दिन पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं थैंक्स आपको हमारा लाइन पसंद करने के लिए। और बात तो सही है, बहुत ही खूबसूरत लाइन थी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं हेलो भारती जी, गाना सुनना है। और विक्रम चौहान जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि सोनी जी कब तक आएंगी, तो ये तो मैं भी नहीं जानती वो कब तक आएंगी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है कि हेलो भारती जी, गुड आफ्टरनून जी, मुझे भी सॉन्ग सुनना है और बजा दीजिएगा। तो राकेश भारती बक्सर से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो मैं आपको बता दूं, प्लीज़ आप अपना गाना कल सुनिएगा, क्योंकि आपका दिन कल पूरा हो रहा है। और इसी के साथ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं हाय गुड आफ्टरनून भारती जी, मुझे भी गाना सुनना है और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आप गाना फरमाइश कर सकते हैं और सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ यहाँ मेरे पास जो मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं शायद मेरा सॉन्ग सुना दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने की यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है उनकी तरफ से, शाहिद जी की तरफ से, और गाने की बोल है याद आती है और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग बॉर्डर बॉर्डर हिंदुस्तान का मूवी से, और गाना था याद आती है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आज पड़ोस की अपनी पति के साथ बहस हो रही थी, मैंने तेज आवाज़ में गाना लगा दिया, जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं सन्यासी रंजन जी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो अगला मैसेज पहुँचे हुआ, लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, प्रेम मधेसिया पटरौना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। और भारती जी नमस्कार जी, कैसी हैं? गुड आफ्टरनून जी। और भारती जी, आज हमको भी गाना सुनना है, और गाने की बोल पहुंची हुई है और बहुत ही खूबसूरत लाइन है गाने की, और अभी तो प्ले नहीं करना है इसलिए नहीं बोल रही। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले होगा। उससे पहले हमारे पास यहाँ एक और गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रही है कि हाय भारती दी, गुड आफ्टरनून, मेरा नाम करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से, और मेरे गाने की 2 हफ्ते हो चुके हैं, और अंकुश राजा की रक्षाबंधन का सॉन्ग सुना दीजिएगा, और प्लीज़ भारती दी बजा दीजिएगा। और इसी के साथ जो हमारे पास गाने की बोल आई है, घर के लक्ष्मी बहिना, तो चलिए बिना देरी के गाना प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रंजन 90.4 FM में।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
10: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
12: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 85070-32042 पे।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि तेरे चेहरे की वो खूबसूरत तस्वीर कहाँ से लाऊं, जो हर लम्हा तेरे साथ गुजरे ऐसी तकदीर कहाँ से लाऊं। मैं मांगता हूँ हर सफ़र में साथ तेरा, मैं मांगता हूँ हर सफ़र में साथ तेरा, तू ही बता मेरे हाथों में वो लकीर कहाँ से लाऊं। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं केशव राज जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बहुत ही काफ़ी खूबसूरत लाइन है, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, इंतज़ार इतना करो कि उसे आना पड़े, प्यार इतना करो कि उसे अपनाना पड़े। बहुत अच्छे होते हैं वो दोस्त जो समझते भी हैं और समझाते भी हैं। और बहुत ही खूबसूरत लाइन है, और इसी के साथ हमारे साथ सनी जी जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय भारती मैम कैसी हो आप, हमें भी गाना सुनना है और कृपया गाना सुना दीजिएगा। और गाने की बोल है कि मेरी जान तिरंगा है, और मैसेज करने वाले हैं रंजीत कुशवाहा वैशाली बिहार से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनके गाने की फरमाइश को चलिए करते हैं पूरा और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। और काफ़ी खूबसूरत गाना है, और गाने के बोल हैं मेरी जान तिरंगा। चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

है।

0: देखा सर, पहले लात।
1: तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग मेरी जान तिरंगा है, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मैं डॉक्टर अमोद कुशवाहा ग्राम जय छपरा जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और मुझे भी गाना सुनना है। गाना सुना दीजिएगा। और मुसाफिर गाने की बोल है, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले। और मूवी है गदर, एक प्रेम कथा का गाना है, और प्लीज़ मैम पूरा गाना सुनाइएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं, थैंक्स मैम गाना सुनाने के लिए। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते मैडम जी और का हालवा जी, और खाना हो गई हमरो हाजिरी लगा दी। और लिख रहे हैं कि केहू कहत रहे कि तोहरा वाली दो चार दिन से दिखाई नहीं खे, दिखत नहीं खे, और केहू कहत रहे कि तोहर वाली दो चार दिन से दिखत नहीं खे, तो हमहू कह दिली कि जाए द मर्दे कोनो दिक्कत नहीं खे, और आजकल के प्यार ऐसने बाकी ढेर दिन टिकत नहीं खे। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं दिलीप शर्मा अबू धाबी से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, प्रेम मधेसिया पर रौना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और भारती जी नमस्कार जी, कैसी हैं, गुड आफ्टरनून जी, और गाना सुनना है। तो लिख रहे हैं भारती जी, आज हमको भी गाना सुनना है, जिंदगी की राहों में गम रम जो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, और गाना सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका गाना भी प्ले होगा। और चलिए बिना देरी की आपके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और बिना देरी किए हैं बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ जो कि मैसेज पहुंचा हुआ, लिख रहे हैं भारती कोयल, लता मंगेशकर की बहन, आवाज़ की जादूगरी। और भारती दी, मैं कितना तारीफ करूँ, मुझे समझ नहीं आता आप आवाज़ बनाने के लिए कौन सी खाने का इस्तेमाल करते हैं। और नया पारा विरई से बसंत कुमार ठाकुर और प्रमोद कुमार साहू, हरी थाली की हम सब की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी, और मैं भी वही खाती हूँ जो आप सभी खाते हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो कि अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मेरी बहन का गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भारती दी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। हाँ जी, कैसे हैं आप?
6: मैडम जी, अपना सुनाइए, आप कैसे
5: हैं? हम सब ठीक हैं
6: जी। मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं। एक गाना सुनना था।
5: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
6: वो भोजपुरी गाना सुनना था, खेसारी लाल का, वो चूड़ी हरियर की वाला जो नहीं है,
5: बोलबम का।
6: जी जी,
5: तो मैं आपको बता दूं, भक्ति सॉन्ग और बोलबम की ये सारे सॉन्ग मैं नहीं बजा सकती।
6: अच्छा, तो कोई बात नहीं, वो बजा दीजिए। बरसात के मौसम में तन्हाई क्या लोग नहीं बजा सकते। वो वाला बजा दीजिए
5: और सॉन्ग सुनाएंगे भी किसी को।
6: जी जी, अभी जुड़े हुए हैं सिंह सागर जी को।
5: जी,
6: उनको सुनाना चाहते हैं, और हमारे प्रमोद भाई है जो यहाँ से चले गए हैं, उनको भी सुनाना चाहते हैं, और बाकी जितने भी रेडियो के जो लोग सुन रहे हैं उनको भी।
5: जी बिल्कुल, तो चलिए आपका गाना प्ले कर दिया है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, एंजॉय कीजिए अपने गाने को।
6: ठीक है मैडम, थैंक यू,
5: वेलकम।

0: अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी भर साथ में पी लेने दो। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हम विकास यादव कुवैत से लाइव जुड़े हुए हैं और हरदम जुड़ते रहते हैं, और मैडम सबको गुड मॉर्निंग, और मनवा लागे सॉन्ग बहुत ही प्यारा सॉन्ग जी, और हमको भी गाना सुनना है, विवाह मूवी का टाइटल सॉन्ग और नंबर लगता है तो बता दीजिएगा। ओके जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी नंबर लगेगा। और उससे पहले हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि केतन फ्रॉम महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। और अनिल कुमार महतो लिख रहे हैं कि गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय मैम गुड आफ्टरनून, बंजारी रोड लालगंज MD नौसाद MD शदाम, और साथ में मोहम्मद निसार, मोहम्मद रिजवान और अभिनंदन टेलर भी जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्कार, हम लोग भी आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं और कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, और अभी जो गीत चल रहा था देशभक्ति का बहुत ही अच्छा लगा, और उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अर्चिता सिंह और रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ लिख रहे हैं कि गाने की फरमाइश भेज रहा हूँ और गाना बजा दीजिएगा और सुना दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं, वॉइस के माध्यम से इनकी फरमाइश पहुँची हुई है, तो क्या है इनकी फरमाइश।
1: मैं मुझको गीत सुनना है वंदे मातरम, मेरा नाम अजय सिंह है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।

0: माध्यम से फरमाइश पहुंच गई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। जी बता दे कौन सा गाना सुनेगा बा? कौन सा
1: गाना बोले? डाकिया डाक लाया।
0: डाकिया डाक लाया। और गाना सुना होगे बा के ओके?
1: सब कोई सुना होगा, जरना लो दीजिए सब सब ठीक है।
0: अच्छा जी, चलिए तो वो गाना के प्ले करते नहीं, एंजॉय करिए रेडियो रेंज 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते।

0: 72,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 पर।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं शुभम, बलरामपुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और मुझे भी गाना सुनना है और गाने की बोल यहाँ पहुंची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले होगा लेकिन अभी नहीं। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते मैडम जी, मैं शुभम यादव हिमाचल प्रदेश से सोलन, गाना टूट गई चुड़िया कलाई में, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं, आपने मेरे मैसेज शामिल किया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद बसंत ठाकुर विरई से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास जो अगली फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, नौशाद अली मोतिहारी से, और मुझे गाना सुनना है और गाने की यहाँ बोल पहुँची हुई है और कर्मा मूवी का सॉन्ग है और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, गाने की बोल है ऐ वतन तेरे लिए। तो चलिए बिना देरी किए गाना इनका प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नास। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार है। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा, यही से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
3: कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया है। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
4: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्र ध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
5: इन तिरंगा यात्रा, बाइक एंड साइकिल रैलीज, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड कॉन्सर्ट्स, ईच एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट फॉर्म बट द सेंटीमेंट behind them is common. The national flag is the symbol in which every citizen can find a sense of belonging.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
6: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
7: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉ. अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
0: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। उड़ीसा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय उड़ीसा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगतसिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेल सुंदरूप को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
10: ओम नमः शिवाय।
11: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
10: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
11: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
10: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
11: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
10: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
11: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
10: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
11: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
10: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
11: बोलबम हर हर महादेव।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
10: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
11: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
11: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
13: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
14: Christine, you're not wearing this dress. Vicky, where are you?
15: There's an important call.
14: Are you crazy? I can't talk right now.
15: It's editor of Style magazine.
16: Hi, Vishali. I'm from Style magazine.
14: Hey, actually my show is just about to start. So can you call me by 10:30?
16: Wait, just a minute.
14: Bye.
16: I just need a small interview.
14: Yeah.
16: I won't take much time. Are you there, Vishali?

0: Hello?
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7 50।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
5: इसका मतलब मोहब्बत, मतलब जिंदगी। जोया।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852878291, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72776665। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे फरमाइश पहुँची हुई हैं जो कि लिख रहे हैं कि मैं डॉक्टर अमोद कुशवाहा ग्राम जय छपरा जिला से जुड़ा हुआ हूँ, और लिख रहे हैं कि नेक्स्ट मेरा गाना बजा दीजिएगा, और लिख रहे हैं कि मेरा बजा दीजिए। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी गुड आफ्टरनून, हम सुनील कुमार पश्चिमी चंपारण अरे राज बाबा की नगरी से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो अगली फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं, विकास यादव कुवैत से लाइव जुड़े हुए हैं और इन्हें भी गाना सुनना है, और गाने की बोल है विवाह मूवी का टाइटल सॉन्ग सुनना है। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो विकास जी के साथ सुनेंगे ये प्यारा सा सॉन्ग रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग विवाह मूवी का, मिलन अभी आधा अधूरा है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, भारती जी नमस्कार, दिनेश कुमार अहमदाबाद से, मुझे भी सॉन्ग सुनना है और मैंने आपके पास लिंक भेज दिया और गाना सुनाना दोस्तों को सुनाना चाहता हूँ और धन्यवाद। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग दी, और मैसेज करने वाली हैं करिश्मा जी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, राधे राधे, पाजी यूपी 54 से, और मेरी भी हाजिर लगा दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास जो यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हर ख्वाब में अब तेरी ही दीदार होता है और हर रास्ता तुझ पर ही आकर ख़त्म होता है, ये कैसी मोहब्बत है तेरे नाम की, हर सांस में तेरा ही एहसास होता है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं केशव जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। और इसी के साथ हमारे पास जो यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है वॉइस के माध्यम से है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस और क्या है इनकी फरमाइश।
1: मैडम जी, मेरा भी गाना सुना दीजिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यही गाना सुना दीजिए। नमस्कार आपको और आप पूरे साथियों को हमारे तरफ से।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87894 18744।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
10: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
10: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमज।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 एफएम। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि मुझे भी गाना सुनना है, और भारती मैम प्लीज़ सुना दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं केतन फ्रॉम महाराष्ट्र से, और लिख रहे हैं भारती मैम अब बजा दीजिए प्लीज़। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से, और आपका भी गाना प्ले हो नहीं होगा क्योंकि शुक्रवार को प्ले हुआ था। और इसी के साथ हमारे पास जो मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि

0: ये खूबसूरत सा सॉन्ग हाले दिल मेरा पूछो ना सनम, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि मैम एक गाना प्ले कर दीजिएगा, और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है तो ज़रूर आपका भी गाना प्ले करेंगे। और लिख रहे हैं कि औरंगाबाद से जुड़े हूँ, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ कृष्णा जी लिख रही हैं सुपर सॉन्ग चल रहा है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अमोद जी की मेरा गाना नहीं बज रहा है, और क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या मैम? तो नहीं, ऐसा नहीं है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय, और इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, हमारे गाना बजा दीजिएगा और धन्यवाद। और मैसेज करने वाले हैं सुबोध साहू बेगूसराय से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास जो यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते मैडम जी, मैं शंभू यादव हिमाचल प्रदेश सोलन गाना सुनना है, और गाने के बोल हैं टूट गई चुड़िया कलाई में, और प्लीज़ गाना प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं बिना देरी किए, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है तो एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में अपना सॉन्ग।
1: चलें

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। यहाँ काफ़ी सारे हमारे पास मैसेज पहुँचे हुए हैं, जो कि लिख रहा है कि पाजी यूपी चौहान से, जो कि लिख रहे हैं कि पढ़ने वाला भी तेरा दीदार करेगा, एक बार नहीं 100 बार करेगा। मैं लिखूँगा जब शायरी तुझ पे, मेरे डायरी का एक पन्ना भी तुमसे प्यार करेगा। और बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और इसी के साथ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि मोतिहारी से मज़र आलम, वेरी नाइस सॉन्ग। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग रोते हैं, खुश वहीं लोग रहते हैं जो शाम के दो पैग मार के सोते हैं, और खुश वहीं लोग रहते हैं जो शाम को दो पैग मार के सोते हैं। दुनिया में कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग हंसते हैं, और खुश वहीं रहते हैं जो शाम को दो पैग मार के सोते हैं। और मैसेज करने वाली है करिश्मा जी और सुपर सॉन्ग। तो इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और लाइन पहुँची हुई है, जो कि धनेश कुमार जी की तरफ से है। और लिख रहे हैं कि दिल का एहसास जानना है तो प्यार करके देखो, अपनी आँखों में किसी को उतार कर देखो, चोट उन्हें लगेगी दर्द तुम्हें होगा, जरा अपना दिल एक बार हार कर तो देखो। और बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और इसी के साथ हमारे पास जो यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है, जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, और गाने के बोल हैं माँ से है माटी और माँ से ही माथा, और औरंगाबाद से बिहार के रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं मुझे पूरा फॉर्मेट नहीं पता है कैसे मैसेज किया जाता है, तो आप अपना नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे पता चले आप कौन हैं। और आपने जगह तो बताया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अरमान अंसारी मैसेज करने वाले हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। और चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले किया जाएगा, और रेडियो रिमझिम 90.4 पे एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: और हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुना अभी तिरंगा का, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार जी, भारती जी।
0: नमस्कार,
1: मैं पप्पू ठाकुर कटिहार जिला गोपालगंज से बोल रहा हूँ।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है जी, अपना बताइए।
0: हम सब भी ठीक हैं।
1: बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और सोनी मैम को भी प्रणाम बोलिएगा हमारा।
0: जी जी,
1: आजकल नहीं आ रही आजकल, क्यों?
0: ये तो मैं नहीं बता सकती, हमारी मैनेजमेंट बताएगी।
1: सही बात है, सही बात। चलिए, बोल रहे हैं, गाना सुना दीजिए।
0: बता दीजिए।
1: 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक मन्ना डी की आवाज में गाना है, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बीच में। ये गाना सुनवा दीजिए।
0: और गाना सुनाना भी है?
1: हाँ हाँ, सभी जितने लोग सुन रहे हैं, और 15 अगस्त की अग्रिम बधाई सबके लिए, जितने भी सुनने वाले हैं।
0: जी जी, ओके जी, आपका गाना प्ले कर दिया है रेडियो रंजन 90.4 एफएम में। एंजॉय कीजिए अपने गाने को।
1: ओके, थैंक यू।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 916293-3538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और मैं आप सबको बता दूं, यदि आप हमसे इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप और इंस्टा कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782191, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा। और दिनेश कुमार मैसेज करने वाले हैं और लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा, तो जी बिल्कुल आपका भी होगा। उससे पहले हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैडम जी, मैं तारकेश्वर मांझी दुबई से, और मैडम जी मुझे भी गाना सुनना है, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ लिख रहे हैं कि ख्वाहिश थी उसे पाने की, अब करते हैं दुआ उसे भुलाने की। उस शख्स ने कुछ इस कदर तोड़ा हमें कि तमन्ना ही नहीं रही किसी और से दिल लगाने की। और बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है, और सॉरी मैं आज आपका गाना प्ले नहीं कर सकती, आपका गाना सैटरडे को प्ले होता है और उसी दिन होगा। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि कोई भी गीत शामिल कर लेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और गुरु नानक पूरा बठिंडा पंजाब से, और किशोर सबलिनिया, सावित्री सबलिनिया, सुमन सबलिनिया, बेटी अंशु के साथ जुड़े हुए हैं, और राधे राधे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको भी राधे राधे। और इसी के साथ यहाँ जो कि हमारे पास फरमाइश पहुँची हुई है मोतिहारी से, पुट्टू भाई मुनि खातून के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि एक मेरी बीवी के लिए गाना प्ले कर दीजिएगा। और लिख रहे हैं कि गाने के बोल हैं तेरे संग प्रीत लगाई सजना, और सॉन्ग इसी को प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, तुझे संग प्रीत लगाई सजना। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं भारती जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी तरफ से लाइन सुना दीजिए प्लीज़। और मैं मतलब समझी नहीं कि कैसी लाइन। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, मैं सरकटिया नारायण पटेल वाराणसी से, और मैं भी एक गाना सुनना चाहता हूँ, और मेरे परिवार वाले मुझसे वाले भी जुड़े हुए हैं, और गाना है संदेश आते हैं, और प्लीज़ भारती जी गाना प्ले कर दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हे भगवान मैं लिख रहे हैं कि हे भगवान मैं लास्ट गाना सुना था 28 जुलाई को, चेक करिए मैडम जी। तो मैंने आपको नहीं किया कहा कि आप शनिवार को सुनिएगा, किसी और को बोला था, और ये मैसेज आपके लिए नहीं था। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, नमस्ते नमस्कार भारती मैडम जी, सोनी मैडम जी, मुझे भी एक गाना सुनना है और पवन सिंह की आवाज़ में, और रामकेश काल छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास जो अगली फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं, शुभम बलरामपुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, और मुझे गाना सुनना है, और गाने के बोल हैं मेरे रंग दे बसंती चोला, और यही गाना सुना दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे ताकि जल्दी से आप अपने गाने को सुन सकें। तो एंजॉय कीजिए रेडियो रंजन 90.4 FM में।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
6: तो छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ दिनेश जी की तरफ से मैसेज आया जो कि लिख रहे हैं कि सायरी, सारे लिसनर के लिए आपकी तरफ से। ओहो, तो ये बात थी। तो चलिए, आप सभी के लिए नहीं लेकिन कुछ सायरी है जो बोलूँगी। सायरी है कि राज तो हमारे हर जगह पे हैं, पसंद करने वाले के दिल में और नापसंद करने वालों के दिल में। और एक और लाइन है जो कि मैं लोगों से मुलाकात के लम्हे याद रखती हूँ, बातें भूल भी जाऊँ पर लम्हे याद रखती हूँ। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, हमारा भी सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा और धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गाना का लिंक सेंड किया हूँ, बजा दीजिएगा। और भक्ति सॉन्ग है अजय कुमार कुशवाहा, दरौली सिवान से, और अभी महाराष्ट्र में हूँ, सुन रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैं आपको बता दूँ, आप सभी से मैंने पहले भी कहा था कि भक्ति सॉन्ग मैं प्ले नहीं कर सकती, क्योंकि इस पर भक्ति सॉन्ग नहीं बजता है और केवल हिंदी और भोजपुरी गाने बजते हैं, लेकिन भोजपुरी भी तो अश्लील नहीं। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं क्या हुआ है मैम, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। और लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं धीरज, और हाय धीरज फ्रॉम रावल बिहार से, और प्लीज़ प्ले द सॉन्ग। और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते, नमस्कार मैडम जी, और राजकुमार राम गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि पवन सिंह की आवाज़ में, और लिख रहे हैं कि गाने की बोल है सनहिया लगावल बहुत बात नहीं है। और चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: काहे गुनगुनाऊं जब गावे के ना रहे,

तो अभी हम लोगों ने काफ़ी खूबसूरत सॉन्ग सुना पवन सिंह की आवाज़ में, सनहिया लगावल, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, क्योंकि आप सभी के साथ तो आज टाइम का पता नहीं चला और काफ़ी सारे अभी भी गाने की फरमाइश है हमारे पास, और जिनका प्ले नहीं हो पाया है उनकी गाने की फरमाइश कल प्ले करूँगी। और इसी के साथ है जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, जो लिख रहे हैं हाय गुड इवनिंग मैम, और हम टुनटुन यादव विलेज पठानपट्टी पोस्ट पटरा जिला गोपाल बिहार से बानी, और हमके गाना सुनने के बाद जिंदगी की टूटे लड़ी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास एक और मैसेज पहुँचा है, जो लिख रहे हैं भारती जी बहुत गर्मी है हमारी तरफ, आपकी तरफ कैसा मौसम है? तो जी हमारे तरफ भी काफ़ी गर्मी है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी राम राम, क्या मेरा गाना आज बजेगा? और राज गारमेंट और पगवारा पंजाब से, और अल्ताफ राजा का कोई भी सॉन्ग सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अभी भी मैसेज पहुँचा है, जो कि लिख रहे हैं बड़ा मज़ा आता है उसे बार बार मुझे सताने में, क्यों भूल जाती है कि नहीं मिलेगा कोई मुझसा चाहने वाला इस ज़माने में, नहीं आए यकीन तो फिर आजमा कर देख लेना, कुछ बात अलग है इस दीवाने में, तारीफ नहीं करता खुद की मगर ये सच है, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा तेरा साथ निभाने में। भारती जी नमस्कार, सभी गाने एक से बढ़कर गाने, चले जाने की बारी आ गई है, तो आपको सभी दोस्तों को नमस्कार, रात में मिलते हैं दिलीप राम दिल्ली से। तो बहुत बहुत स्वागत है और बाय बाय। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, जो लिख रहे हैं भारती जी हमारा रिक्वेस्ट को आप पूरा कैसे किए इसके लिए दिल से धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे पास मैसेज पहुँचा है, जो कि लिख रहे हैं कि लक्ष्य फिल्म का कोई भी गाना प्ले कर दीजिएगा। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है, जो कि लिख रहे हैं राधे राधे भारती जी, मैं सुरेश कडेला जोधपुर राजस्थान से, हम आपके चैनल को रोज़ सुनता हूँ और बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी गाना सुनना है, और गाने के बोल है मेरे सपनों की रानी कब आएगी, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे, और काफ़ी लोगों के फरमाइश जो कि छूट रहे हैं उनका कल प्ले हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: और इसी के साथ हमारे पास सभी की तरफ से बाय बाय के मैसेजेस पहुंच चुके हैं और लिख रहे हैं कि धीरज फ्रॉम अरवल बिहार से, और मुझे गाना सुनना है लक्ष्या फिल्म का और प्लीज़ सुना दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: कदम मिलते हैं हम चलते हैं, जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
0: तो श्रोताओं, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852878891, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277166596। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं आज सभी से विदा लूँगी, और सुनते रहिए ये प्यारा सा सॉन्ग रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-651 या 97-0975-675।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
8: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
10: भरोसे वाले से लेंगे,
9: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
10: और कीमत भी।
9: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
11: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
12: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
13: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
14: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी
13: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
15: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
13: कॉल करें 85070-32042 पे।
16: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
5: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451551 पे।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
8: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029994921 पे,
8: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
6: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रमझिम।
9: सुनो दिल।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 916293-3538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो रिमझिम।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
5: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97 714 86 164।
5: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन, मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
6: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.

0: मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया हेलो माई चॉइस का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 80 29 94 911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपने गाने की फरमाइश। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: मनोरमा मैम
2: जी, जी
1: गाना सुनना है।
2: जी गाना सुनाएंगे, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
1: मेरा नाम कुहाड़ पड़ेगा, जामपुर से बोल रहे हैं।
2: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे मैम, गर्मी तो बहुत है मैम, आज बहुत दिन खराब हो गया।
2: गर्मी तो है, तो वैसे क्या हो रहा है अभी?
1: अभी बैठे हैं।
2: खाना वाना हो गया आपका?
1: खाना आपका खाना?
2: जी जी आपकी सुनवाई बता दीजिए।
1: गाना सुनवाइए मैम, जनरे झूठ मत बोलो को दा के पास जाना है।
2: गाना लिख
1: देती है रेडियो रोहतक को।
2: तो वैसे आप ये रेडियो रिंगटोन को कैसे सुनते हैं?
1: मोबाइल से सुनते हैं, रेडियो है हमारे घर, रेडियो से भी सुनते हैं।
2: अच्छा, मतलब मोबाइल ऐप के जरिए?
1: नहीं नहीं, रेडियो जो मोबाइल, जो मोबाइल में रेडियो होता है
2: ना,
1: हाँ इससे सुनते हैं।
2: चलिए बहुत अच्छी की बात है। मतलब कितने समय से सुन रहे थे?
1: उसी समय से चालू हुआ, 2009 5 जनवरी को जो समय से सुनते
2: हैं। बहुत अच्छी की बात है। कैसा लगता है आपको कार्यक्रम?
1: बहुत बढ़िया, हर प्रोग्राम अच्छा लगता है हर समय समय से। पहले तो 12 बजे बंद हो जाता था ना, 5 बजे खुलता था, अब तो चालू हो गया 24 दिन में और रात में 11 बजे तक सुनते हैं।
2: मतलब आप ऑल प्रोग्राम सुनते हैं ना?
1: सब प्रोग्राम सुनते हैं, जब सुनता है कहीं कोई काम में चले, कोई बात नहीं, समय रहता है तो जो प्रोग्राम आता है वो सुनता है।
2: बढ़िया, गाना डेडिकेट भी है?
1: बोले हैं सभी को।
2: ले करते हैं गाना आपका।
1: जी मैं
2: रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिम 90.4 एफएम में।
1: धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा आ रहा हूँ मैम, मैयर एमपी से।
0: जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम। तो अभी इंतजार खत्म हो गया मैम, फोन तो लग गया। अभी तो फरमाइश का इंतजार रहेगा मैम, तब बजेगा आज तो कल,
0: कोशिश रहेगा की।
1: तो जी, तो आज फरमाइश है कुमार सानू का आवाज में है, गाने के बोल है मारे कटारी में मर जाऊं, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते मैम।
0: ओके ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: धन्यवाद मैम।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AM पर।
8: नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
8: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
8: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 916293-3538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
8: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम हर हर महादेव।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: Now pick your phone up.
11: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं

0: हेलो
1: जी, नमस्कार
0: नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 एफएम में।
1: जी अरुणा जी, क्या हाल चाल है?
0: जी बढ़िया है, अपना बताइए आप कैसे हैं?
1: हम जी बढ़िया, और मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी से परेशान है
0: जी। यहाँ पे भी बहुत गर्मी,
1: लेकिन आप लोग ऐसे है बैठे रहना, हम लोग को धूप में चलना पड़ता है, दिन सूरज ही रोड पे चलना पड़ रहा है, गाड़ी चलाना पड़ता है।
0: वैसे क्या करते हैं?
1: मैं गाड़ी चलाता हूँ ना यहाँ पे, और आपके रेडियो से गाना भी सुना रहे हैं। बहुत गाना भी सुना रहे। हमारे इसमें आरजे लोग आए और हम लोग यहीं पे आए, आरजे लोग आए थे, आज भी हम लोग से प्यार मोहब्बत है और सभी लोग अच्छे जानते हैं। जितने अभी जो आप लोग अभी अभी आई है,
0: वैसे आज की फरमाइश बता दीजिए।
1: हेलो
0: जी जी, फरमाइश बता दीजिए अपनी।
1: आवाज सब वीक जा रहा है, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। गाना है तेरा पता है, ये वाला सॉन्ग सुना दीजिएगा।
0: जी जी बता दीजिए।
1: आप वो सुन रहे हैं प्यार की दीजिए, कबाब सुन रहा हूँ मैं रेडियो।
0: ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं
1: जी।
0: सुनते रहिए सबके साथ जी। 90.4
1: और कितने मंगलमय हो।
0: नमस्कार।
2: ये पर्दा

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 FM में।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
0: अनिल बात कर रहा हूँ छोटू से।
1: जी कैसे हैं अनिल जी?
0: बस बढ़िया, आप बताइए और आपकी टीम के बारे में बताइए।
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ और हमारे यहाँ के टीम भी सभी बढ़िया है।
0: आप भारती जी बोल रही हैं ना?
1: नहीं
0: मनोरमा जी बोल रही हैं?
1: जी।
0: जी, अभी मेरा कॉल लगा था, अभी आवाज में डिफरेंट नजर आ रहा है क्योंकि कॉल लगा और फिर कट गया, आधा अधूरा बात हुआ था।
1: जी, वो नेटवर्क इश्यू की वजह से कट गया।
0: हाँ,
1: तो
0: तो आज का फरमाइश है हमारा कुमार सानू का सॉन्ग है, बहुत दिन हुए हैं देखे हुए तुझे यार।
1: हाँ, वैसे आप 2 लाइन गा के सुना सकते हैं?
0: गाना तो बहुत कम गाते हैं लेकिन आप कहिएगा तो थोड़ा सा गुनगुना देंगे।
1: जी
0: बहुत दिन हुए हैं देखे हुए तुझे यार, आजा। याद नहीं है उतना अच्छा से, खराब हो गया गाना ही, खराब हो गया पूरा।
1: कोई बात नहीं, आप
0: थोड़ा सा सुने हुए ज्यादा दिन भी हो गया ना, इसलिए तो सोचे कि आज रेडियो पे ही फरमाइश कर रहे हैं इस गाने का।
1: जी बिल्कुल।
0: अब आप गवा दी हमको, अब भारती जी से जब बात होगी वो भी गवाएंगी, सोनी जी आएंगी तो वो भी गवाएंगी।
1: तो कोई ना, आप बहुत अच्छा गाते हैं इसीलिए बोले।
0: नहीं, गाना बहुत कम गाते हैं वैसे, कभी प्रयास कर लेंगे घर से ही, मतलब उसको रिपीट कर लेंगे फिर उसके बाद उस दिन हम गा के सुना देंगे बढ़िया से गा देंगे।
1: जी बिल्कुल। तो
0: वैसे आप लोगों का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है रेडियो रिमझिम पे, और आते एक बार बात हुई थी तो वो कॉल बजा नहीं था, और बाकी सब ठीक है।
1: जी वैसे तो मैं कॉल रिकॉर्ड नहीं की थी, आज बहुत दिन के बाद कर रही हूँ।
0: आप स्टार्टिंग में जब आई थी, जब आप लोग शुरुआत में जब आप आई थी और भारती जी को भी उसमें योर वॉइस योर चॉइस में लाया गया,
1: जी
0: उसी टाइम के बाद बता रहे हैं।
1: जी हाँ, तो कोई मेरे से मिस्टेक हुई होगी। वैसे तो मैं सारा गाना प्ले की थी,
0: हाँ,
1: अगर आप कहीं नहीं सुने होंगे भी हो सकता है।
0: नहीं रेडियो ये तो कोई बोल ही नहीं सकता कि हम नहीं सुने होंगे, मतलब रेडियो तो मतलब एक सोशल मीडिया का युग होने से मतलब नहीं है, वो सब तो बकवास की चीजें हैं। वो अपनी अपनी जो सरकार आ रही है, तरह तरह की स्कीमें ला रही है, रेडियो जो है वो किसी का नहीं है, वो भारत सरकार का ही है, लेकिन उसका और बाकी सोशल मीडिया एप्लीकेशन का ये जवाब नहीं हो सकता, वो अलग चीज हो गया, ये अलग चीज हो गया।
1: जी
0: इसमें पारदर्शिता होती है, जो भी चीजें आती हैं अच्छी ही आती
1: बिल्कुल।
0: है। जी,
1: ठीक है अनिल जी, तो अगर गाना उस दिन नहीं बजा होगा उसके लिए सॉरी। और ये कौन
0: अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इसका कोई मतलब दिल पे नहीं लेते हैं, हम अपना ही ना परिवार है, परिवार में सबको रहना है, गलती सही सबसे होता है। जी
1: जी, तो अनिल जी गाना प्ले करते हैं।
0: जी
1: जी
0: थैंक यू।
1: वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
10: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
12: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 97-65-65-750।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: Hey, हेलो मैम, जब करे
15: नमस्कार मैम।
14: नमस्कार,
15: कैसी है मैम
14: जी? बढ़िया है, अपना बताइए।
15: हम भी ठीक है, नाश्ता पानी हो गया है?
14: हो गया। और आपका?
15: मेरा भी हो गया है।
14: बहुत अच्छी बात है। वैसे आपका नाम?
15: सुनीता देवी।
14: हम तो आवाज सुन के पहचान गए, लेकिन क्या करे, अगला आदमी को भी तो पता चले।
15: जी जी जी
14: मैम। वैसे कहाँ से?
15: हाजीपुर से।
14: अब क्या हो रहा है अभी?
15: अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी बैठे हैं, तो इसीलिए सोचे कि आज तो आज बुधवार है, आज लगाए कॉल करें। सोमवार को तो नहीं लगाए, तबीयत खराब था, उपवास से तो सो गए थे।
14: वैसे मौसम भी चेंजिंग हुआ है, इसकी वजह से भी तो।
15: जी जी मैम, दो दिन से तो धूप बहुत ज्यादा तेज हो रहा है।
14: बहुत ज्यादा। क्या कर
15: रहा? और सब बोली
14: है? जी सब बढ़िया। आज की फरमाइश बता दीजिए।
15: जी मैम, गाना तो भूल गए हैं, मगर एक गाना याद आ रहा है, खेसारी लाल के नहीं है, शंकर भगवान को गाना है, रात दिन रावनी है, रात दिन राउर बैला लाला, वही बजा दीजिएगा मैम।
14: और सुनवाना भी है?
15: जी मैम, आपको, भारती मैम को, सभी भाई और बहनों को गाना है।
14: तो आपके घर परिवार में सब कोई ठीक है?
15: जी मैम, सब कोई ठीक है। आपकी?
14: जी मेरे यहाँ भी सब कोई ठीक है।
15: चलिए ठीक है,
14: ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
15: थैंक यू मैम।
14: रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
15: थैंक यू मैम।
14: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी, मैं अरुण मिश्रा बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 2 से गोपालगंज।
1: जी, क्या हाल चाल है अरुण जी?
0: बस बहुत बढ़िया है जी। आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं?
1: जी जी, हम लोग भी बढ़िया है
0: जी। आप लोग, आपका तो ये रेडियो का जो आदमी सुन करके बिल्कुल हमेशा टाइम का इंतजार करता रहता है कि हाँ अभी टाइम होगा, अभी कॉल करेगा, ये प्रोग्राम अभी सुनेगा। बहुत अच्छा है, सुबह का प्रोग्राम भी तो जो है वो आदमी को जिंदगी के लिए एक नया ढाल बन गया है, जो प्रवचन आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। हमको गाना सुनना है, अरे मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है।
1: ओके, हेलो जी, जी। और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: जी, सबसे पहले तो आप आए और जितने भी ये फिल्म का दोस्त साथी हैं, जितने भी आदमी सुनते हैं, उन सबको सुनाना। ठीक है
1: जी। तो मौसम कैसा है उधर का?
0: मौसम तो बस यही है, मौसम जो है मौसम बना हुआ है बारिश का, ऐसे संभावना लग रहा है कि शाम तक बारिश होएगा, क्योंकि ये भादो के जैसा नहीं लग रहा है, एक कुवार का जैसा लग रहा है। घाम में काफी मतलब वो है, थोड़ा सा भी धूप लगता है ना तो लगता है कि बस चमड़ा सूख गया। सही मौसम नहीं है,
1: ऐसे लग नहीं रहा जैसे कि सावन का महीना चल रहा है।
0: आप ही देखिए ना, बाहर निकलकर देखेंगे तो आप उसके अंदर का अपना बता देगा कि सावन भादो के जैसा नहीं लग रहा है, ये कुवार के जैसा लग रहा है। कुवार में जैसा धूप निकलता है ना, ऐसे एक क्वेश्चन नहीं किया था कि चमड़ा कब सूखता है, तो बताने वाला बताया कि कुवार में। आंसर सही हो गया, यही बात है। तो दुमास लग गया था ना, दुमास लग गया। अगर सीधा सीधा महीना जोड़ा जाए ना तो ये कुवारी है। ठीक है, मैं रंजी गाना सुना दीजिए, आज सुनाएंगे कि कल?
1: कोशिश रहेगा कि आज ही चले। ठीक है, तो गाना प्ले कर दें आपका।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: Now pick it up,
6: hello.
5: Now pick your phone up,
6: hello.
5: Pick it up,
6: hello.
5: Now pick your phone up,
6: hello.
7: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए

0: हेलो
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला, गुना मध्य प्रदेश से।
1: जी कैसे हैं सुनील जी?
0: बढ़िया है मैडम जी, और बरसात हो रही है और आपका रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं।
1: अच्छा जी, ऐसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: मधुसूदनगढ़ जिला, गुना मध्य प्रदेश से।
1: अच्छा, तो बारिश हो रही है अभी उधर?
0: जी जी जी, बारिश, रात का ही पानी गिर रहा है, अभी पानी गिर रहा है।
1: अच्छा, हमारे तरफ तो बहुत ज्यादा धूप निकला हुआ है।
0: जी हम आपके इधर गिर रहे हैं क्या पानी?
1: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है, धूप निकला हुआ है बहुत तेज।
0: अच्छा, उधर धूप निकल रही है उधर?
1: जी।
0: अरे वाह, हमारे यहाँ तो कल से आप तो ठंडा ही हो गई, हमने पंखा कूलर सब बंद कर दिए हैं, अब तो नॉर्मल है।
1: अच्छा, तो कहीं लोग बारिश से परेशान है, कोई कहीं गर्मी से?
0: जी जी जी।
1: तब खाना वाना हो गया आपका?
0: जी अभी नहीं हुआ है।
1: अच्छा,
0: और भारती जी बोल रही है कि सोनी जी?
1: नहीं।
0: मनोरमा जी?
1: जी जी
0: जी, बहुत दिनों में बात हुई है मेरी आपसे आज।
1: जी, और क्या है ना, भारती जी रिकॉर्डिंग कर रही थी बीच में।
0: तो मैडम जी, पिक्चर का नाम है आज दीवाना मुझसा नहीं कोई।
1: ओके, और गाने के बोल?
0: गाने के बोल है, सारे लड़कों को कर दो शादी, बस एक को कुंवारा रखना।
1: ओके, और गाना डेडिकेट दिया?
0: जी जी मैडम जी, सबसे पहले आपको है, भारती मैम को है, सोनी मैम को है, और अपने गोपाल ओझा जी है, जितेंद्र धाकड़ती है, इन सभी को ये गाना डेडिकेट है, जितने भी ये रेडियो सुन रहे हैं उनको। और ये प्ले कब होगा मैडम जी?
1: पूरा कोशिश रहेगा कि गाना आपका आज ही प्ले हो।
0: जी जी धन्यवाद।
1: तो गाना प्ले करते हैं ये सबके साथ, रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंचिम 90.4 FM में।
1: बस माँ का काम छुट्टी से ठीक
0: जी, क्या हाल चल रहा रेशमा जी? ठीक
1: बा, आप बताएं।
0: जी, हमारो बढ़िया बात।
1: तो उसका कॉल कायल बने लू। ठीक हो गई बा, तबे तो ठीक बा।
0: बिल्कुल बढ़िया बात।
1: मुनारवा में
0: जी
1: सुन बनी
0: जी बढ़िया बानी। रुआ ठीक बने नो?
1: बनी,
0: चलिए बढ़िया की बात है।
1: आज गाना सुना दे,
0: बता दी।
1: हारे हारे हम तो दिल से हारे,
0: काई दो लाइन रुआ गा के बता सकते नहीं?
1: बता दे।
0: बिल्कुल,
1: ज्यादा याद नहीं है, थोड़ा सा याद था।
0: हाँ हाँ उतने गई ना।
1: हारे हारे हारे हम तो दिल से हारे, इतना याद है मैडम जी।
0: ये कोनो बात नहीं के, और ये गाना रहुआ क्योंकि सुनवाई के भी चाहता नहीं।
1: और सुन ले, मैं जितना सुन तो सब कोई सुनी।
0: चलिए बढ़िया बात।
1: अच्छा मैडम जी, अगले साल रोना तो मना से बजू है ना? सुनो से गाना जन कॉल रहो, रोना रिकॉर्ड कर रहे तो ना बजू है।
0: शुक्रवार के हम रिकॉर्ड कर ले रहे हैं।
1: शुक्रवार को शुक्रवार।
0: अच्छा
1: जब हमें गाना हम फरमाइश बोले रही, बहुते दर्द दो दिला प्यारे हो दिला टूटा तो जानो।
0: हम वैसे तो गाना तो सब प्ले कर ले रहे हैं, मतलब कहीं रुआ ना सुन पाई लेते हैं।
1: सही हो सके ला ठीक है कहा तुम, लेकिन हम चालू करूंगी काम से चालू करें, सब जगह कुछ वे ना वे चालू करेंगे। बस 10 मिनट आगे पीछे हो जाएगा काम में रहने का।
0: हाँ हाँ वैसे ना, तो
1: जैसे याद पर गया काम तो हो जल्दी चालू करें, फिर आगे चालू करें।
0: अच्छा चलिए, तो घर परिवार में सबको ठीक बनो?
1: जी मैडम जी, सब ठीक अपन बताए।
0: जी जी यहाँ पे भी सब ठीक बा।
1: और अगर सबको ठीक बा?
0: सबके बढ़िया बा।
1: हम लोग सबको ठीक बा।
0: हाँ हाँ बढ़िया बा।
1: पार्टी में आ गए बनी?
0: चलिए ठीक बा, तो और गाना प्ले कर पानी?
1: जी मैडम जी, बजा दे आज तन बजा दे तो ठीक है।
0: जी जी पूरा कोशिश रही।
1: हाँ ठीक बा
0: ठीक बा। सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: जी मैडम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451551 पे।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM पर।
5: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
5: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
8: सलाम अलैकुम।
9: वालेकुम अस्सलाम।
8: आज तो बड़ी खुशी की बात है कि कई बार कॉल लगाया लोग।
9: जी जी
8: हाँ, नहा करके आए थे, जानते हैं कि आज पट्टी खुला है, 1 महीना के बाद आज नहाए।

0: खाना वाना हो गया ना?
1: हाँ अभी तो खाना खाए।
0: ये बढ़िया,
1: अभी खाना खाए है, सेब खाए।
0: तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
1: हाँ हमारा फरमाइश ले लीजिए, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं पूरी फिल्म का।
0: और ये आप सुनवाना भी चाहते हैं किसी को?
1: कब सुनाइएगा?
0: पूरा कोशिश रहेगा कि आज ही बजे आपका गाना।
1: अच्छा ठीक, उसने तो हमें को बज गया सुन लू, सुबह भी बज गया सुन लू, दो बार आ गया। ठीक है,
0: वालेकुम अस्सलाम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: थैंक यू। मैं निसार अहमद लकड़ी दरगाह जिला सिवान से बोल रहा हूँ। जी, मैं निसार अहमद लकड़ी दरगाह जिला सिवान से मैं बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? भारती जी?
1: नहीं जी, मैं मनोरमा।
0: अच्छा, मनोरमा जी।
1: जी,
0: अच्छे से कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सुनते हैं हम। तो गाना हमको सुनना है,
1: बता दीजिए।
0: लास्ट कॉल है मेरा अब शायद?
1: नहीं,
0: अभी है कॉल। इसके
1: कॉल है
0: और गाना है, थोड़ा गुनगुना कर बता देते हैं।

0: यही गाना है।
1: ओके, वैसे आप अपना नाम क्या बताया?
0: निसार अहमद, लकड़ी दरगाह, जिला सिवान।
1: ओके, तो ये आप गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: पहले तो आपको, भारती जी को और सोनी मैडम जहाँ भी हैं, ये गाना उनके लिए भी है, और जितने भी रेडियो इंजिन सुन रहे हैं उन सभी भाई बहनों के लिए और अपने फैमिली के साथ ये गाना सुनना चाहते हैं।
1: ठीक है, तो गाना प्ले करते हैं आपका।
0: थैंक यू
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजिन 90.4 FM।
0: थैंक यू, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए। ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: Now pick it up, pick it up.
4: Hello.
3: Now pick your phone up.
4: Hello.
3: Pick it up, pick it up.
4: Hello.
3: Now pick your phone up.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो

0: हेलो,
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगचिम 90.4 FM में।
1: जी सर, मास्टर बोल रहे हैं धना से।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: हम लोग बढ़िया से, अच्छे से हैं। आप लोग कैसे हैं बताइए।
0: जी, हम लोग भी बढ़िया हैं।
1: बढ़िया है, रेडियो रिंगचिम परिवार सब लोग अच्छे से हैं।
0: जी, सब कोई बढ़िया है।
1: आपके तरफ तो बारिश हो रहा है कि नहीं?
0: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है।
1: बड़ी धूप कड़ा निकल रहा है।
0: जी, धूप तो है।
1: ये तो पहला कॉल लगा हुआ है।
0: जी, पहला ही कॉल।
1: जी सर, गाना सुना दीजिए। गाना सुनवा दीजिए,
0: बता दीजिए।
1: 8 और 16 मूवी का। आज सुबह जब मैं जगा, आज सुबह जब मैं जगा, हो तेरी कसम ऐसा लगा तूने मुझे याद किया है। ये वाला गाना मैडम।
0: ओके, और ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
1: जी, सबसे पहले आपको और जितने रेडियो रेंजिंग सुनने वाले श्रोताओं है सभी को, और हम लोग ठनाओ से रोशन ट्रेलर में सुनेंगे सभी लोग।
0: तो ये आप रेडियो रिंगचिम को कैसे सुनते हैं?
1: मोबाइल से सुनते हैं।
0: मोबाइल ऐप के जरिए?
1: ऐप के जरिए, हाँ। और रेडियो हम लोग का सर थोड़ी बजेगा, पकड़ भी नहीं करेगा रेडियो में।
0: जी जी, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हम धनाव थाना नासीगंज जिला रोहतास बिहार से, जिला रोहतास हम लोग हैं।
0: अच्छा, चलिए बढ़िया। तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: जी
0: जी, रेडियो रिंगचिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
0: जी जी, धन्यवाद। मैं संजय कुमार शाह, ग्राम मोढ़ा मंगिया, पूर्वी चंपारण बिहार से।
1: जी, कैसे हैं संजय जी?
0: जी, मेरा हाल खबर बिल्कुल बढ़िया है। थोड़ा गर्मी तो बहुत ज्यादा है, गर्मी थोड़ा नहीं कहा जाता है, लोग
1: गर्मी तो बहुत।
0: जी जी, बाकी हाल खबर ठीक है, बढ़िया है। और कहीं ना रूम में बैठे हैं, बता रहे हैं, सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, सब घर पर जा रहे हैं, सब ठीक है। और सब उधर के मौसम बताइए, उधर इसे गर्मी क्या है, बरसात हुआ है कि नहीं, आजकल होता है कि नहीं बरसात?
1: बहुत है, धूप भी निकला हुआ।
0: जी जी, हमारे यहाँ 50 रोज पहले ही से बारिश रुका है, 4 रोज पहले बारिश हुआ था, लेकिन 4 रोज से गर्मी चल रहा है। गर्मी तो उस समय था, लेकिन फिर भी कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा पानी गिरला पर थोड़ा राहत हुआ है, थोड़ा राहत रहा, लेकिन फिर भी पानी रुका रुका फिर भी गर्मी ज्यादा हो गया। खैर, प्रकृति के नियम है, चलता रहता है। आज गाना सुना दीजिए,
1: बता दीजिए।

0: शंकराचार्य
1: जी, आप तो बहुत अच्छा गा लेते हैं।
0: जी जी, चलिए आप कहती है तो हम लोग थोड़ा गुनगुनाते हैं, लेकिन हम लोग तो गाते आना नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी गुनगुना लेते हैं ताकि ट्रैक मिल जाए बढ़िया से, आप लोग उसने में सरल हो सबसे। तो पहले कुछ मित्र की याद करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको, आप रेडियो इंजन संपन्न परिवार को, और दोस्त में हो गया शिकारा से मामा शादी जी, कुशवाहा जी, कुशवाहा जी, सोहनी, दीपक दास, जयभान ठाकरे, जूनिया साहब, धर्मेंद्र यादव उर्फ मिथुन, धनराज प्रसाद कुशवाहा, मदन राम भैरवगंजी, भैरवगंजी, राजेंद्र यादव भाटी, सतलाल गौतम, उत्तर प्रदेश मऊ से, सलार अंसारी, मोहम्मद सलार अंसारी, बजवलिया का विशेष उनको, संदिका सहसोक, हरिंद्र प्रसाद यादव, मिकुटा, कौशल किशोर प्रसाद, जितेंद्र सरकार, नीरज गुप्ता, सुरोज श्रीवास्तव, हमारे नाम से देने पर चले तमाम सुनते हुए अभी आपसे चलेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करें 87-894-18-744।
12: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
13: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
14: Now pick it up,
15: hello.
14: Now pick your phone up,
15: hello.
14: Pick it up,
15: hello.
14: Now pick your phone up,
15: hello.
16: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं।
17: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
0: जी। गाना सुनना चाह रहा हूँ
1: जी। गाना सुनवाएंगे, आप नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: कमलेश कुमार बलुआ टोला मनियारा फार्म से।
1: अच्छा,
0: गाना सुनना है बूढ़े राजा के बाबा धाम का गाना
1: जी। बता दीजिए
0: बूढ़े राजा गाना बाबा धाम के नाम का
1: कौन सा? आवाज कट के आ रही है।
0: बाबा धाम के गाना,
1: गाने के बोल
0: देवघर बाबा के बूढ़े राजा कौन गाना बजाएगी? नाव का गाना बजाएंगे।
1: अच्छा ठीक है, मतलब भोजपुरी में या फिर हिंदी में?
0: बाबा धाम गाना बोलूंगा ना।
1: तो मतलब हिंदी में या फिर भोजपुरी में?
0: भोजपुरी में बजाइए।
1: अच्छा, और गाना सुनवाना भी है
0: जी?
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं
0: जी।
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनते हैं

0: हेलो
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 एफएम में।
0: जी थैंक यू। हम कैसी है?
1: जी बढ़िया है, अपना बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
1: कोई अच्छी की बात है। वैसे आपका नाम?
0: नेहा।
1: कहाँ से बोल रही है नेहा जी?
0: कासम से।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है।
1: क्या हो रहा था अभी?
0: अभी आराम करेंगे।
1: खाना वाना हो गया आपका?
0: जी।
1: ये बढ़िया। तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
0: सावन मजा न देगी, गाना
1: चूड़ी मजा न देगी, कंगन न मजा देगी।
0: जी ये
1: ओके। और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
0: आपको और जितने भी रेडियो रिंगटोन का भी।
1: ओके। वैसे नेहा जी, आप ये रेडियो रिंगटोन को कैसे सुनती हैं?
0: जी ऐसे सुनती हूँ,
1: गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड की है।
0: जी
1: ये बढ़िया। मतलब कब से सुनते आ गई आप ये कार्यक्रम?
0: 2000।
1: अच्छा, तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिंगटोन का कार्यक्रम?
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: मतलब सबसे अच्छा कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है रेडियो रिंगटोन?
0: मैच वाइज और क्रिसमस फरमाइश।
1: अच्छा जी जी, चलिए बढ़िया। तो नेहा जी आपका गाना प्ले करते हैं। जी रेडियो रिंगटोन 90.4 एफएम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-46651 या 97-0-97-06-575।
4: Now pick it up,
5: hello.
4: Now pick your phone up,
5: hello.
4: Pick it up,
5: hello.
4: Now pick your phone up,
5: hello.
6: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार।
1: हेलो
0: मैम, हम बोल रहे हैं ना।
1: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: अपना सुनाइए।
1: जी मेरा भी बढ़िया।
0: अरे हमारे से कोई गलती हो गया है क्या? कितने कॉल किया? 312 कॉल किया, 2 बार लगा उसके बाद ही काट दिया गया।
1: नहीं, कॉल कटा नहीं हो क्या? ना नेटवर्क इशू की वजह से कट जाता है कभी कभी।
0: तो सोचते कि कोई भारी गलती हो गई है हमारे।
1: नहीं नहीं है, कोई बात नहीं है।
0: बहुत परेशानी होती है कॉल लगाने में, है ना? तो ऐसा लगता है कि बना हुआ घर गिर गया। हाँ, अगर विश्वास न हो तो आप एक बार लिसनर बन के कॉल करके देख लेगा।
1: नहीं, हम
0: इतना परेशानी होती है,
1: तब तक दूसरा।
0: हाँ, 300 बारी आज कॉल किया, अब 2 बार लगा, इसके बाद कट गया।
1: चलिए कोई ना,
0: मैं सोचा कि लगता है कोई गलती हो गया है, बोलूंगा कि मैम देखिए हमारी नंबर ही ब्लॉक कर दो, क्या फायदा।
1: नहीं नहीं, ऐसी बात
0: सर। सर और सब अपना सुनाइए।
1: जी जी सब बढ़िया।
0: इस बात को अपने दिल पे मत लेना, मैं ऐसे बोल दिया, बहुत परेशानी होती है
1: समझते हैं।
0: हाँ, तो इस बात को आप दिल पे मत लेना, क्योंकि किससे कहेंगे, आप ही से कर सकते हैं ना।
1: जी बिल्कुल।
0: हाँ, तो वही बात है। शुरू से आप ही रिकॉर्डिंग कर रहे थे? शुरू से रिकॉर्डिंग आप ही कर रहे हैं?
1: नहीं नहीं, आज मेरा रिकॉर्डिंग है।
0: गणेश कुमार मिश्रा दिल्ली पहचान नहीं रहे क्या? तो मैं ऐसे भी सोचा कि आज लगता है मनोरमा मैम है, इसीलिए लंबा उसके यहाँ बात करने का अलग तरीका है, इसलिए थोड़ी लगता है बिजी ऐसा जा रहा था ना, लग रहा था कि मनोरमा मैम नहीं है आज। क्योंकि आप लंबा बात होते है ना। चलिए, आप पहले का भी रिकॉर्डिंग हमारी यहाँ की हुई है, आज भी एक रिक्वेस्ट ले लीजिए, भोजपुरी ही है, मैं ज्यादा करके भोजपुरी देता हूँ, लेकिन बढ़िया देता हूँ, कोई अश्लील गाना नहीं। तो आज भी एक है गोटू राजा के, है गाने का बोल है, खाली तीर्थ कर बी और ही काम बा, माई बाबू के चरण में चारों धाम बा।
1: आइए, आप गाना एक बार गा के बता सकते हैं?
0: खाली तीर्थ कर बी और ही काम बा, माई बाबू के चरण में चारों धाम बा। बस इतना ही।
1: बहुत अच्छा गा लेते हैं
0: मैम। मैं तो बहुत अच्छा गाता ही था, थोड़ी टेंशन में आजकल जी रहे हैं साल डेढ़ साल से, इसलिए थोड़ी वो, नहीं तो मैं तो गांव में एग्जाम जो होता है ना 24 घंटा का, उसमें मैं गाता था, मेन में नहीं गाता, पर पानी की वजह से थोड़ी टेंशन में। तो हम तो गा तो बहुत अच्छा लेते हैं, संगीत हमें बहुत प्रेम। हाँ, संगीत बहुत प्रेम है, इतना मूवी से मुझे प्रेम नहीं है, संगीत प्रेम, संगीत सुनकर मैं रातों भर जगा रह जाऊंगा, इतनी प्रेम है। हाँ, इसलिए थोड़ी सी हमारी बातों पर गौर करना, बहुत परेशानी होती आप लोगों से बात करने के लिए।
1: जी जी,
0: गाने सुनने का माध्यम तो बहुत है, सुन सकते हैं जैसे मर्जी, लेकिन एक आप लोगों के द्वारा जो गाना बजता है उसका एक अलग ही है। तो ये कब तक बज जाएगा
1: ये गाना आपका? कल बजेगा, मतलब रहेगा कि आज ही बजे?
0: नहीं, पिछला भी आपका एक बार ही है, गाना मेरा सुना दीजिए।
1: ठीक है, गाना प्ले करते हैं।
0: आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा।
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 FM में।
0: अस्सलाम वालेकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या खैरियत है?
1: जी बढ़िया है, अपना बताइए।
0: मेरा भी अच्छा। आपकी तरफ के मौसम कैसा हुआ है?
1: धुआं निकला हुआ है
0: जी, गर्मी बहुत ज्यादा है।
1: आज गर्मी है। वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
0: हम माझा से बोल रहे हैं।
1: अच्छा, और आपका नाम?
0: मेरा नाम साई पलक है।
1: साई पलक
0: जी,
1: बहुत प्यारा नाम है
0: जी।
1: तो क्या हो रहा है अभी?
0: अभी आपके पास कॉल कर रहे थे, एकदम बिजी बता रहा था लाइन, तो क्या क्या अभी लगा है कॉल?
1: चलिए, अब कॉल लग गया तो अपनी फरमाइश बता दीजिए।
0: क्या मौसम आया है?
1: क्या आप दो लाइन गा के बता सकती हैं?
0: नहीं, मतलब इतना ही याद है क्या मौसम आया है, सुना दीजिए। गाना सर आपको भी डेडिकेट करना चाहते हैं, सभी डिजिटल को डेडिकेट करना चाहते हैं।
1: ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है। क्या

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। नमस्कार।
3: ठक ठक
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
13: कॉल करें 87-894-18-744।
14: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
13: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
10: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
14: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
15: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
16: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
15: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।

0: लेके आ गए बा भोजपुरी माटी के एक नया सौगात। कार्यक्रम में हमने के रउरा तक पहुँचे के कोशिश करम सन, और कार्यक्रम कैसन बा कैसन लागल जरूर बताई। कैसे नया सौगात बाटे सोटी बिरजा भार कार्यक्रम की, और इस कार्यक्रम में हम बानी रउरा साथ और दोस्त अमरीश, और उम्मीद बा कि आपके ये कार्यक्रम बहुत पसंद आई। तो चलिए बता देता नहीं, कार्यक्रम में सोटी बिरजा भार में स्वर बाटे मास्टर इस्माइल के और खुश मोहम्मद जी के। तो चलिए लफ्ट उठावल जाओ सोटी बिरजा भार के।
1: अब बिरजाभार जो आसन लगा के बैठल बड़न, अब देखिए वहां के अब सखी लो आओ तलो कौने तरह से। ए सखी
2: काए सखी
1: एगो कार बा, आज चले के हमनी के फुलवारी देखल जा, इतना बढ़िया बढ़िया फूल फुलाइल बा हो।
2: चले के
1: चल, अरे चल सखी चल सखी, अरे बाबा फूल बरिया से फूल।

0: रे
1: आ तू कहां रहलू ह तारा के जोहनी से त ना मिललू ह त का करिस
0: बाप रे बाप हम कह रहनी अपने मरदे के मनावे खातिर
1: मरदे के अरे बाप रे बाप सुन तरू हो ए बरले है बूढ़ भइल भी अपने मरदे के मनावतिया
0: बाप रे बाप के हमार मरद बड़ी बिगड़ल पाट
1: का बिगड़ल बड़े हो
0: बाप रे बाप कहत का
1: हां
0: कहो
1: हां
0: काना हमरा लगवा सबे से रहे नुकरे बाप तारा कुछ बुझाता हमार दिन नियरा गोइल बाटे
1: आही बाल
0: ए हां हम कैसा जोगी लोग को तड़े है दाता
1: आई बे तोरो नजर पर गेल का हो जोगी के ऊपर अरे बाप रे बाप धतन कितना सुबह जोगी बड़े हो दादा चल तनी आज उनकरा के आ उनके ऊपर चढ़ जाए ऐसन सुंदर बाण
0: चुप रहलो ने हमरा पहले जगाव ता जा
1: जा जगाव आसन लगावले बने तो
0: ए जोगी बाबा जोगी बाबा हो हमरा सब बियाह करब नहीं आवा है बे कंठे तनी डूबा लो नहीं डूबे अरे सुन बाता सुन बा ए दे गाव रे सोन हमार आवाज में गड़बड़ा गोइन नु बा
2: बाबा
3: का हा?

0: अब देखा जा, अब यहाँ से हम जाता नहीं।
1: आवाना दो मिनट में बाहर आना हाँ। लक। यहाँ ना करूँ।
0: कब बोतल से भी यहाँ ना करूँ?
2: तो हमरा से कॉलिए बाबा।
0: तो हरों से भी यहाँ ना करूँ। अब देखा, अब यहाँ से जाता नहीं हम। अब देखिए, आप उसी से जोगी जा रहल बने, जे ही जाए के रास्ता में बाड़न, तब तक रत्नावटी रानी जन बा तो उन जादू से मार के इनकरा के सुगा बना दहलस। अब सुगा बन गई ले। अब देखिए जू के कहानी यही जू, अब उन्हें हेमंती जन बा तन पलंग पर सुतली बा, सपना देखतिया कौन तरह से

0: हाँ भौजू, अपने मामी के जगाओ तड़ी। अब भौ आइले उनका मामी उठा तड़ी का कह तड़ी। अरे
1: हेमंती
0: मामी,
1: तू कैसे चली आई हो?
0: देखा मामी चलेली, हमार पति देव गई बने। जुम्बार के सुगा बना दली सर रतनपुर शहर में। जब रानी रत्नावती बिया तो हमरे पति के सुगा बना दले बिया मार के।
1: हेमंती
0: हाँ मामी,
1: सुगा बना दले बिया
0: हाँ
1: बिरजभार के।
0: हाँ
1: की कहला उजा जाए के हो रतनपुर शहर में रानी रत्नावती के लगे? उ तो बहुत जादू जाने ले हो। है कोनो बात नहीं के, जब तू हमरे लगे आ गयलू, हमार नाव सतीश सावन सावरी हुए।

0: चला मामी देखा हमनी के आ गई कहाँ रतनपुर शहर में आ गई
1: रतनपुर शहर है
0: यह रतनपुर शहर है
1: लेकिन हम कहा देखता नहीं हो
0: हाँ
1: कहा ही देखता नहीं कि चारों ओर से कठवासी बा के मा है हमार भगना गई हुई है
0: मामी देखा यह रास्ता पकड़ा जल्दी ले चलो
1: चलो हम चलता नहीं हो जा
0: चलो
1: रोक दे जा जादू के रंग
0: रोक दे मारू
1: और पता लगावा ये बागीचा में कि केने बिरजा भार बाने केने रानी रतवंती दिया
0: मामी देखा यह रानी है एकरा से जम के लड़ाई करे बा मामी जब तक कि ऐसा लड़ाई ना करू तई बुझतिया जे हमरा से बड़ा शक्ति हीन बाड़ी मामी चले के साथ से सामना सामनी करो
1: चलो रे
2: हाँ
1: रतवंती ते चिन्हत ने किस हमरा के
3: हम का चिन्हत नहीं तरह के
1: ते चिंते ने किसे
3: तू के हाँ के हमरा से जादू में बीस निकल जाए तब ना
1: हमरे ना सती सारू हो बे
3: उसे कहूँ
1: ते हमरा के जानत ने किस
3: ना
1: डेढ़ हछरिया है इस तोरा के हम ही हो जानता नहीं
3: हाँ ऐसे मार के तेरे भगना के सुगा बना देने वाली अब तेरे लग पावर हो के तय करा के अपन आदमी बना ला
1: पावर तो हमारे लग उतना बा कि तोहनियों के समझ जाए सन आ तोरे पूरे राज भर के लोग समझ जाए लेकिन सुन ले हम तोरा सब कहता नहीं कि हमरे बिरजा भार के तनी के जौन सुगा बना ले बाड़ू सन उनकरा के आपस से आदमी बना के हमरे लगे भेजा दस
0: मामी अगर इतना ही शक्तिशाली भैया एक के जादू चला दो कि बही कहीं कागरी चल जा
1: रे ना मन बे
3: ना मानो
1: ना मन बे
3: ना
1: तले देख हम तोरा ऊपर जादू अब चला होता नहीं
3: चला के देख ला
1: एक दो और ये
0: मामी ये तो बह गई अब हमारे पति के देखा वह सुगा बन के पेड़ पर टाए टाए करता है उनकरा के जल्दी आदमी बना दो
1: एक काम कर
0: हाँ
1: जल्दी ते ओजा जो ओजा जल्दी जो
2: सुगा पेड़ पर
1: सुगा जब बन गेल बने हम ओजा आदमी बना देता नहीं आ ओजा से तुरते उनके रखते धौली है चल। लेके चले है
0: चल अरे मामी अरे तू तैयार गेलु हो हेकरा के कहे के लेके एलु हो मामी हम तो एकर सूरत नहीं देखल चाहत
1: यही से तो हम कहत रहनी हो कि रे हेमंती ते हमरा के मत लिया के चल बाबू ई नेकी के जमाना नहीं खे बिरजा भार चलो अब से तू वापस चल चला अबे तार ठीक समय बा चलो बाबू हमार चलो
3: अरे काहे के लियो ले हो एलु हमरे अरे पिया ही आके

0: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले 5 वर्षों तक के लिए विस्तारित किया। योजना के लिए कैबिनेट ने 950 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति। केंद्र सरकार ने 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोटों के फील्ड ट्रायल को दी मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में दी जानकारी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, 15 अगस्त से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा होगी शुरू। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी जिला मुख्यालयों में निकली तिरंगा यात्रा। देशभक्ति के रंग में सराबोर हुआ पूरा प्रदेश। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले 5 वर्षों तक के लिए विस्तारित कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके लिए 950 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल ने बताया कि इस फैसले से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का संकल्प और मजबूत होगा।
1: अब तक 4,15,000 बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिला है। बहुत लोग बच्चे पढ़े हैं। राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस योजना को, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना को अगले 5 साल 2026 से 2031 तक 5 वित्तीय वर्षों के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी है, जिससे बच्चे मेधावी बात पढ़ सकेंगे। और इसके लिए इस वर्ष 26-27 में 950 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।
0: सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने 7 निश्चय 3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक विस्तारित कर दिया है।
1: 7 निश्चय 3 के अधीन जो दोगुना रोजगार दोगुना आय की योजना है सरकार की, उसके अधीन 2026-27 से 2030-31 तक अर्थात अगले 5 वर्षों के लिए इस योजना को स्वीकृति दी गई है। और 26-27 के लिए इस पे 430,08,33,000 रुपए के व्यय की भी स्वीकृति दी गई है। कुशल युवा कार्यक्रम के अधीन जो गांव-गांव में स्किल डेवलपमेंट का काम युवाओं के लिए किया जाता है, इसके 5 साल के एक्सटेंशन से युवाओं को स्किल मिल सकेगा और उनको रोजगार मिल सके।
0: एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने बीएड कॉलेजों में डिग्री कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में 221 पदों के सृजन को मंजूरी दी। मंत्रिपरिषद ने कयाची, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के निर्माण के लिए पेट्रोलियम कंपनियों को 10-10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का भी फैसला किया। कैबिनेट ने कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी बाधित रही। विपक्ष इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा था। इससे पहले गृह मंत्री ने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वे इस मामले पर विपक्ष के सवालों का कल जवाब देंगे।
2: सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: केंद्र सरकार ने 10 और 20 रुपए मूल्य वर्ग के प्लास्टिक नोटों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्लास्टिक नोटों को पूरी तरह लागू करने की निश्चित समय सीमा और इस पर होने वाले खर्च का आकलन संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक नोट कागज के नोटों के साथ जारी किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने बताया कि साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इस वर्ष 30 जून तक 3,718 अवैध मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक किया है। इनमें फर्जी लोन ऐप सहित गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले ऐप शामिल हैं। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार के प्रयासों से 25,000 2,698 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन को असफल किया गया। श्री कुमार ने बताया कि 32,10,000 से अधिक म्यूल खातों की जानकारी संबंधित संस्थाओं के साथ साझा की गई। जदयू सांसदों ने आज दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान बिहार के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और संसदीय क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई। इधर नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर वारिसलीगंज में प्रस्तावित चीनी मिल को शीघ्र शुरू करने की मांग की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि 15 अगस्त से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा शुरू होगी। इसके जरिए विद्यार्थी स्कूल के बाद रात्रि 11 बजे तक विशेषज्ञ शिक्षकों से पढ़ाई कर सकेंगे। श्री चौधरी आज पटना में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
3: इसी 15 अगस्त से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कि रात के 11 बजे भी यदि स्कूल के बच्चे रात के 11 बजे टीचर खोजेंगे तो उनको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए रात के 11 बजे भी उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चे बाहर नहीं जाए ये मैं जरूर सोचता हूँ।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज सभी जिला मुख्यालयों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, कर्मी, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयंसेवक समेत आम लोग शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: सूरज की धवल किरणों के बीच जब तिरंगे की तीनों रंगों की आभा बिखरी तो लगा जैसे पूरा बिहार देशभक्ति के रंग में रंग गया। कहीं बच्चों के कदमों की रफ्तार थी तो कहीं युवाओं का जोश, और हर ओर गूंज रहे थे राष्ट्रभक्ति के नारे। स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी जिला मुख्यालयों में निकली तिरंगा यात्राओं ने माहौल को देशभक्ति में सराबोर कर दिया। इन यात्राओं का उद्देश्य केवल तिरंगा लहराना नहीं बल्कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना को जन जन तक पहुंचाना भी रहा। तिरंगे के साथ बढ़ते कदम मानो यही संदेश दे रहे थे कि आजादी केवल इतिहास का गौरव नहीं बल्कि उसे संजोने और देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
0: राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 15 अगस्त से एक महीने के अंदर 30,000 से अधिक भूमिहीन परिवारों को बास्केट पर्चा देकर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। श्री जायसवाल पटना में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।
3: राजस्व विभाग ने सर्वोच्च प्राथमिकता में सर्वे का काम पूरा करने का फैसला लिया है और हम 15 अगस्त को कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जिला को सर्वे पूरा करने का हम घोषणा कर सकें।
0: सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद सकरी और रैयाम चीनी मिलें जल्द चालू होंगी। श्री यादव आज पटना में संवाददाता सम्मेलन में विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे।
4: हाल में हमने एग्रीमेंट भी किया है, निर्णय लिया है हमारे कैबिनेट की सहमति के साथ, हम दो चीनी मिलों को प्रारंभ करने वाले हैं बहुत जल्द, एक सकरी में दूसरा दरभंगा में रैयाम और सकरी मिल चीनी मधुबनी में। और मैं समझता हूं कि वहां पर कि दो चीनी मिलों से एक नई शक्ति, नई ताकत, नई ऊर्जा उस इलाके के किसानों में आई है। किसानों में एक नई संचार, नई ऊर्जा, नए उत्साह का वातावरण पैदा हुआ है।
0: संवाददाता सम्मेलन में विभागीय सचिव धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के रबी मौसम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की जाएगी।
5: राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने की स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में दी है और ये योजना आगामी जो रबी का मौसम है उससे लागू होगी। ये किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा पहल है सरकार के तरफ से। किसानों के जो फसल की जो क्षति होती है उसका बीमा होगा, किसान को फसल क्षति के समतुल्य क्लेम का भुगतान होगा।
0: बिहार सरकार के पशुपालन निदेशालय और द गोट ट्रस्ट के बीच बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए आज पटना में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर विभागीय मंत्री नंदकिशोर राम उपस्थित रहे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया कि परीक्षा के लिए 14 अगस्त तक विज्ञप्ति जारी की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि सरकार ने BPSC से शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE4 जल्द आयोजित कराने का आग्रह किया है। श्री तिवारी ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में अभ्यर्थियों से किसी बहकावे में नहीं आने की अपील की।
6: छात्रों की सब बात मानी गई है तो क्यों सड़क पर उतरेंगे? कुछ नेता हैं जिनकी नेतागिरी खतरे में है, वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए हमारे अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं। अभ्यर्थी उनके झांसे में न जाए, सरकार उनकी है और उनके हर बात को सरकार संज्ञान ले रही है।
0: राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों के रिक्त पदों को भरने का आश्वासन दिया है। श्री हसनैन पटना में पुस्तकालय दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।
7: मैंने आश्वासन दिया है आज कि बिहार की यूनिवर्सिटीज के अंदर हम जितने लाइब्रेरियन के पोस्ट हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पोस्ट हैं, जो खाली पड़े हैं उनको भरने की कोशिश करेंगे, और लाइब्रेरीज जो जहां पर लाइब्रेरीज जिनके अंदर ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है उनके अंदर थोड़ा और काम करने की कोशिश।
0: प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने से लोगों को एक बार फिर उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर आंधी के साथ वज्रपात की आशंका है, वहीं कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। इस अवधि में तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। 36वीं बिहार राज्य ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मेडल टैली में पटना की टीम पहले स्थान पर रही, वहीं बेगूसराय की टीम दूसरे और नवादा की टीम तीसरे स्थान पर रही। रोहतास के जोगिया गांव में एक व्यक्ति की हत्या के बाद जारी तनाव के बीच पुलिस ने दोनों आरोपितों को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया है। एडीजी मुख्यालय सुनील कुमार ने बताया कि इस मामले को लेकर सोशल मीडिया से 600 भ्रामक पोस्ट हटाए गए। स्वतंत्रता दिवस को लेकर मधुबनी जिले से सटे नेपाल की सीमा को सील कर दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि 15 अगस्त तक सीमा पार आने जाने वाले लोगों की गहन तलाशी ली जाएगी। आकांक्षी जिला के प्रभारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार कांगे ने आज औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और मध्य विद्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले 5 वर्षों तक के लिए विस्तारित किया। योजना के लिए कैबिनेट ने 950 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति। केंद्र सरकार ने 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोटों के फील्ड ट्रायल को दी मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में दी जानकारी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा 15 अगस्त से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा होगी शुरू। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी जिला मुख्यालयों में निकली तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के रंग में सराबोर हुआ पूरा प्रदेश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: शांति
1: हम आबे
0: जब नखन बाबू बिरजा भार मानो
1: चल तू
0: तो चल चल एजा से वापस चलल जा
1: चल
0: बाबू बिरजा भार।
1: हाँ
0: अब तो हम जा तनी एजा से
1: जल्दी लेके जा जल्दी लेके चल जा हम एकरा के देखल लखी चाह आब वहां से हेवंती सात सौरी चल गइलो आबो जी बिरजा भार का कहतारन
0: का कहतारन
1: अब बिरजा भार कहतारे कि हे भगवान आज यहाँ रतनपुर शहर में आयल बनी आ रतनपुर शहर में अगर रतनावटी हम करा के इस सुगा बना दलसी है अगर मामी हम ना आती तब तो हम ना बचती लेकिन खैर हम जब सोरनपुर के नाव लेले बानी आ जाए के तैयार भइल बानी तो कुछ हो जाई तो का हो लेकिन हम सोरनपुर जइबे करब आ फिर वहां से आगे के प्रस्थान कर तरे कैसे।
2: तो श्रोता लोग आज खातिर बस इतना ही। कैसन लागल चाचा चाची काका काकी कैसन लागल जरूर बताई 9857788291 नंबर बाटे। इन नंबर पर कॉल के माध्यम से मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आप खत लिख सकता नहीं रेडियो रिमझिम बंजारी मोर गोपालगंज 84/28 के पता पर। और हमके पता बा कि आप सबे के कार्यक्रम बहुत अच्छा लागल हुई। परम आदरणीय श्रोता बंधु लोग के प्रणाम करता नहीं पैर छू के प्रणाम करता नहीं चलता नहीं अब फिर आये एगो नया एपिसोड के साथ एगो नया कहानी के साथ फिर हुई पूरा मस्ती। तो अभी खातिर दीप विदा अपन दोस्त अमरीश के लेता नहीं जाए के विदा ठंड से बच के रही और गरीब के मदद करी दी इजाजत हंसत रही मुस्कुरात रही नमस्कार।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
2: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम इकडेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 9797-14-86164।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
5: ओम नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
5: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
5: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
5: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
6: बोलबम हर हर महादेव।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: दिल

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
0: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
8: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
7: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
8: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
10: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
0: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 62052 62112 पे।
10: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98 523 52 599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
12: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
13: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन रक्षा नवाचार संगठन अपनी आईडेक्स टीम के लिए भर्ती के प्रतिस्पर्धी तरीके यानी विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार के माध्यम से पूर्णकालिक आधार पर पेशेवरों को व्यक्तिगत सलाहकार के तौर पर नियुक्त करना चाहता है। इच्छुक और योग्य पेशेवर पर्याप्त अनुभव होने पर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रोग्राम डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पदों की संख्या 2, डिप्टी प्रोग्राम डायरेक्टर 1 पद, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पदों की संख्या 2, डिप्टी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव 1 पद, डिप्टी प्रोग्राम डायरेक्टर वित्तीय सेवा 1 पद और प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वित्तीय सेवा 1 पद तथा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव लीगल 1 पद। विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार देख सकते हैं वेबसाइट www.idex.gov.in। इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी महिला विश्वविद्यालय इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। पदों की श्रेणी ग्रुप ए शिक्षण, पदनाम प्रोफेसर, विभाग और संकाय हैं आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। एसोसिएट प्रोफेसर पदों की रिक्तियां हैं इन विभागों में आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज गणित, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्तियां इन विभागों में हैं आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, आर्किटेक्चर, अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन का लिंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है www.igdtuw.ac.in। ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं 21 अगस्त 2026 तक, जबकि आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 28 अगस्त 2026। महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल का चिकित्सा निदेशालय इन पदों की रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। सूबेदार मेजर डाइटिशियन 1 रिक्ति, उपनिरीक्षक इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफिक 1 रिक्ति। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं सीमा सुरक्षा बल की आधिकारिक वेबसाइट www.bsf.nic.in। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड में कार्यपालक निदेशक का 1 पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.ibbi.gov.in। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान अपर निदेशक तकनीकी के 1 पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। पता है www.nihfw.ac.in। भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर आमंत्रित करते हैं अवर श्रेणी लिपिक LDC के पदों को भरने के लिए आवेदन। योग्य उम्मीदवार देख सकते हैं 1 अगस्त 2026 से 7 अगस्त 2026 का रोजगार समाचार पत्र। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही, कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
7: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
14: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
15: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
16: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
17: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
18: ओम नमः शिवाय।
19: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
18: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
19: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
18: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
19: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
18: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
19: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
18: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
19: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
18: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
19: बोलबम हर हर महादेव।
20: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
21: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
22: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
21: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
22: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
21: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99

0: कसम।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब
6: पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
8: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
7: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
0: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
7: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
9: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनने नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
7: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
10: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
7: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से है, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
11: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली है।
7: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
12: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहां पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को जयपुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
7: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। JPSC और JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2 मिनट और 18 सेकंड तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारिशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्रों के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: Good evening, this is Akashvani.
14: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
15: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रमजिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
16: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
17: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
15: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
18: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
15: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
16: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
19: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
20: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
19: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
20: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
19: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
20: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
19: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
20: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
21: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
22: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
21: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
22: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
23: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
23: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
23: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
23: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
24: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने थावे मां भवानी के दरबार में की पूजा अर्चना। जीवन रक्षक और जन सुरक्षा को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। गोपेश्वर कॉलेज में छात्रों ने दिया धरना। प्रसव के दौरान महिला की मौत पर जमकर हुआ हंगामा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम का हुआ शंखनाद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का गोपालगंज आगमन हुआ था। इस दौरान सर्वप्रथम हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री बिस्कोमान भवन में लगभग 2:30 बजे के आसपास पहुंचे। इसके बाद वहां से सीधे बाई रोड मुख्यमंत्री का काफिला थावे मां भवानी के दरबार में पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री के साथ बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद रहे। इसके अलावा जिला पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक सहित तमाम जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। मुख्यमंत्री थावे मां भवानी के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से थावे माता का पूजा आराधना किया। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी का थावे मां भवानी के दरबार में आगमन हुआ था। वहां स्थानीय पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से माता की पूजा आराधना कराई। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला वहां से चनावे जेल के पास पहुंचा, जहां प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के भूमि का उन्होंने निरीक्षण किया। थावे प्रखंड के चनावे जेल के समीप ही मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि का चिन्हांकन किया गया था। इसको लेकर सम्राट चौधरी ने वहां भूमि का निरीक्षण कर अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री वहां से सीधे गोपालगंज पहुंचे, जहां नगर थाना क्षेत्र के मानिकपुर में हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता YV गिरी के घर उनके माताजी के श्राद्ध

0: पुलिस बलों की मुस्तैदी से मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम पूरी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। समाहरणालय के सभा कक्ष में आज जिलाधिकारी समीर सौरभ के निर्देश पर समाहरणालय में कार्यरत कर्मियों के लिए आपातकालीन जीवन रक्षक सहायता एवं जन सुरक्षा के संबंध में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसका आयोजन डॉक्टर अभिषेक रंजन निदेशक सक्षम हॉस्पिटल फाउंडर एवं श्रीजी सेवा ट्रस्ट गोपालगंज के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यशाला का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में जीवन रक्षक सहायता उपलब्ध कराने तथा जन सुरक्षा से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। कार्यशाला आज दूसरे दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया, जिसमें कई पदाधिकारियों और समाहरणालय के अधीनस्थ कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। हथुआ के गोपेश्वर कॉलेज में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि अपनी समस्याओं को लेकर लगातार छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एबीवीपी के नेतृत्व में छात्रों ने आज पूरे दिन कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन किया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा
1: कि सामने जो है धरने पर बैठे हैं, क्या वजह है, क्या कुछ मांगे हैं?
2: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही छात्रों के साथ खड़ी रही है और आज कॉलेज महाविद्यालय प्रशासन से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के शैक्षणिक समस्याएं इतनी है, जिसको लेकर के हम सभी आज गोपेश्वर महाविद्यालय में धरना पर बैठे हुए हैं। जिसमें ये चीज है कि अभी 26 से 30 का जो सत्र का मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है और उसके बाद भी उसका एडमिशन हो गया, यानी उसका मेरिट लिस्ट सार्वजनिक नहीं हुआ, छात्रों को पता नहीं चल पाया कि कितने मार्क्स पर किसका एडमिशन हुआ है। दूसरा चीज ये है कि 2019 से सेशन से लेकर के 2022 सेशन तक के छात्रों से डिग्री का पैसा लिया गया, लेकिन महाविद्यालय में अभी तक उन छात्रों को डिग्री नहीं उपलब्ध कराई गई और विश्वविद्यालय स्तर पर जाने पर उन लोगों को कहा जाता है कि आपकी डिग्री महाविद्यालय में दी जाएगी। ऐसे में उन सभी छात्रों की आगे की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो रही है, साथ ही उसका मेरिट लिस्ट टीआर नहीं जारी हो पाया है। 2019 से लेकर के 2022 तक के सेशन का टीआर नहीं जारी हो पाया है। इसके साथ साथ महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी है, कई ऐसे विषय हैं जिसमें शिक्षक नहीं है, छात्र आते हैं और छात्र आकर के महाविद्यालय से वापस लौट के चले जाते हैं। इन्हीं सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम सभी आज आंदोलन पर बैठे हुए हैं। देखिए, ये हमेशा से ही हम सभी कई आंदोलनों में, विश्वविद्यालय स्तर के आंदोलनों में, महाविद्यालय के आंदोलन के स्तरों में कई बार हमने मांग किया है कि जो महाविद्यालय में जो भी छात्राओं की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति हर हाल में की जाए, चूंकि छात्र दूर दराज से पढ़ने के लिए महाविद्यालय में आते हैं, उनके लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, छात्राओं के लिए कॉमन रूम की व्यवस्था, इन सब चीजों की व्यवस्था महाविद्यालय में हर हाल में होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा ही आंदोलन करने के लिए तैयार और संघर्ष करने के लिए
1: था। या नहीं,
2: ऐसी व्यवस्थाएं अभी किसी भी महाविद्यालय में नहीं है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय में ऐसी व्यवस्थाएं अभी नहीं है। मेरा नाम नवीन, विभाग संयोजक, सीवान, गोपालगंज।
0: आज गोपालगंज के चिराई घर के पास स्थित डॉक्टर मिथिलेश शर्मा के निजी क्लिनिक पर एक प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। शव को एम्बुलेंस से क्लिनिक पर ले जाकर वहां हंगामा करने लगे, जिसके बाद नगर थाना की पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। समझा बुझा कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मरीज को क्लिनिक से एम्बुलेंस में सदर अस्पताल भेजा गया और सदर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने महिला को मृत बता दिया, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने क्लिनिक पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। आज शहर के मिंज स्टेडियम में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा कार्यक्रम का शंखनाद हुआ। इस दौरान तमाम पदाधिकारीगण, कई विद्यालयों के बच्चे और भारत स्काउट तथा गाइड के जिला इकाई की टीम मौजूद रही। इस कार्यक्रम में एसएस बालिका और वीएम इंटर कॉलेज तथा डीएवी मध्य विद्यालय और डीएवी उच्च विद्यालय के साथ ही अन्य विद्यालयों के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। स्काउट गाइड की टीम ने मार्च पास्ट करते हुए इस तिरंगा यात्रा को और भव्य बना दिया। बताया जा रहा है कि रामरतन साई उच्च विद्यालय जादवपुर और उचका गांव उच्च विद्यालय गोपालगंज की बैंड टीम भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिका भी इस तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे। संगठन आयुक्त रवि कुमार सिंह के नेतृत्व में स्काउट गाइड के छात्रों ने तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत गुड़ उत्पादन के लिए विभिन्न क्षमताओं तथा 5 से 20 और 21 से 40 TCD क्षमता को लेकर इच्छुक निवेशक लाइसेंस के लिए ऑनलाइन सरकार के वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। गुड़ इकाई गोपालगंज जिला की भोरे

0: पतिया विजयपुर और पंचदेवरी प्रखंडों के अपरंपरागत आरक्षित ग्रामों में स्थापित किया जाना है। लघु गुड़ इकाई 5 से 20 TCD क्षमता की स्थापना पर पूंजी लागत 50% या अधिकतम 6 लाख रुपए तथा मध्यम 21 से 40 TCD क्षमता गुड़ इकाई की स्थापना पर पूंजी लागत का 50% या अधिकतम 15 लाख रुपए अनुदान के रूप में भी दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए ईख पदाधिकारी गोपालगंज एवं सहायक निदेशक ईख विकास गोपालगंज के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। कुचायकोट थाना के भाटुमा में 2 पटीदारों के बीच आपसी मारपीट हुई थी। इस मामले में पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल पर निरीक्षण करने के बाद जख्मी लोगों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट में भर्ती कराया, जहां घायलों की स्थिति सामान्य नियंत्रण में बताई जा रही है। इस संबंध में दोनों पक्षों से प्राप्त आवेदन के आधार पर पुलिस ने कांड दर्ज किया है। साथ ही इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पक्ष से राहुल तिवारी, पिता स्वर्गीय चंदेश्वर तिवारी, और दूसरे पक्ष से प्राथमिकी अभियुक्त अजीत तिवारी, पिता कामेश्वर तिवारी, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब दोनों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। माधोपुर थाना की पुलिस ने चीटिंग के एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी गोल्डन पांडे, पिता रामायण पांडे, साकिन बेलसर, थाना माधोपुर का निवासी है। इस आरोपी पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने और धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई की जा रही है। अब आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, साथ ही इसमें आवश्यक अनुसंधान भी किया जा रहा है। इधर कुचायकोट थाना की पुलिस ने चोरी कांड के एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी वजीर हुसैन, पिता रियासत हुसैन, साकिन हरपुर, थाना कुचायकोट, जिला गोपालगंज का निवासी है। इस आरोपी पर चोरी का मामला दर्ज था और यह फरार चल रहा था। अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने नई दिल्ली में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर पार्टी के अन्य सांसद भी उपस्थित रहे। मुलाकात के दौरान सांसद ने अन्य जदयू सांसदों को नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद और जदयू सांसदों के साथ ही नीतीश कुमार जी से आशीर्वाद प्राप्त किया, उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। इस अवसर पर बिहार के विकास, जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, संगठनात्मक गतिविधियों तथा पार्टी को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने से संबंधित विषयों पर उन्होंने सार्थक चर्चा की। सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार जी का दीर्घ राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक दक्षता, दूरदर्शी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत हैं। उनके मार्गदर्शन में जदयू के सांसद बिहार की जनता की आकांक्षाओं एवं जनहित से जुड़े विषयों को संसद में मजबूती से उठाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। सांसद ने कहा कि जदयू के सभी सांसद एकजुट होकर बिहार के विकास, जनता के कल्याण तथा राज्य के अधिकारों से जुड़े विषयों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और जन प्रतिनिधि के लिए ऊर्जा एवं प्रेरणा का स्रोत है। सभी सांसदों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनका आशीर्वाद लिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने थावे माँ भवानी के दरबार में की पूजा अर्चना। जीवन रक्षक और जन सुरक्षा को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। गोपेश्वर कॉलेज में छात्रों ने दिया धरना। प्रसव के दौरान महिला की मौत पर जमकर हुआ हंगामा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम का हुआ शंखनाद। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: ओम
2: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
6: सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
9: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
10: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
11: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
10: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
11: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
10: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
11: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
12: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
10: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
13: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक ठाक आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो एम 6.4 FM पे समय 9:23 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो आप लोगों को पुराने गाने की फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। ऐसा ना हो कि आप नए गाने का फरमाइश कर दें और अपने गाने का इंतज़ार करते रह जाएं और नए गाने की वजह से आपके गाने ना बज पाएं। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं करना है, पुराने गाने के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना है। और कुछ मैसेज पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि कैसे हैं सर, सॉन्ग थम के बरस जरा थम के बरस। इस मैसेज को करती हैं श्रिया फ्रॉम अमोम अजम से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है ए दिल तू उसे भूल जा। माय नेम इज़ दीपक एंड जेलर। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि मुझे भी गाना सुनना है और कहते हैं क्या हाल है। तो हाल तो फिलहाल ठीक नहीं है, लेकिन आप सभी के बीच उपस्थित है कार्यक्रम को लेकर और कार्यक्रम चल रहा है, बने रहे हमारे साथ और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो कार्यक्रम मस्त चलेगा। मैसेज को करती हैं निशा डुमरिया से। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सोनू भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है, मस्त है ना। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाना सुनना है लिखे हुए, तो बिल्कुल गाने के फरमाइश पूरा करने की कोशिश है। और रोहित जी देहरादून से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं तो बिल्कुल बने रहे हमारे साथ दिलीप राम जी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सोनू भाई तो बिल्कुल आपके मैसेज तो शामिल कर दिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि क्या हुआ है, तो वही हुआ है और कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मौसम का कुप्रभाव पड़ा है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मैं अजय कुमार मिश्रा ग्राम गणेश स्थान माझा से और मुझे गाना सुनना है, तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल बने रहे हमारे साथ। बढ़ते हैं आगे और गाने की फरमाइश पूरी करते हैं सरिया की, और इन्हीं के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं पहले फरमाइश थम के बरस जरा थम के बरस।

कमल के सॉन्ग सुन रहे हैं आप सब रेडियो रेमझेम 90.4 FM पे सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करें तो पुराने गाने या 90s के गाने के फरमाइश करें। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज लिखा जाए, लिखा गया है कि हाय सोनू सर, मुझे गाना सुनना है, गाने का नाम है कौन दिशा में लिख के चला रे बटोहिया। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ, लिखा गया है कि हाय, मैं कमलेश ब्लेज सबिया फील्ड गोपालगंज से, और मुझे सॉन्ग सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है सांसा मूसा से है, हमारा नाम है रोहित, प्रमोद प्रेमी के गाना मेहरारू चाही सोना। तो इस गाने की फरमाइश हम पूरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पुराने गाने की फरमाइश इसमें की जाती है और पुराने गाने की फरमाइशों को पूरा किया जाता है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, थैंक्स सॉन्ग सुनाने के लिए, आपको धन्यवाद रेडियो रमझम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है अजय कुमार मिश्रा जी, तो आप थोड़ा सा सब्र करें, आप इधर उधर घूमें नहीं, जहां आपका स्थान मिला है, आप तो गणेश स्थान से हैं और हमारे कार्यक्रम में जहां स्थान मिला है वहीं पे बने रहें, नहीं तो आपका भी नंबर फेल कर जाएगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय हेलो प्रणाम सलाम, मेरे तरफ से प्यारे प्यारे और लिसनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूं, मीसा भारती ओजवलिया उंचका गांव प्रखंड से, और थम के बरस माय बेस्ट सॉन्ग, और मेरे भी हाजिरी लगा दीजिए और सॉन्ग है। तो बिल्कुल सॉन्ग है तो पूरा करने की कोशिश है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ और आगे बढ़ते हैं। अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और इस गाने की फरमाइश करते हैं हमारे श्रोतागण हैं, ए दिल तू उसे भूल जा, दीपक एंड जेलर जी। सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: प्रसाद क्लिनिक।
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
6: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
9: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
10: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
9: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
10: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
9: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
10: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
9: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7 50।

छोटा सा ब्रेक हो गया खात्मा और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रमछेम 90.4 एफएम पे शो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए हैं, अगले गाने की फरमाइश हम पूरी करेंगे। यहाँ पे मैसेज किए हुए हैं कमलेश जी विलेज सविया फील्ड गोपालगंज से, और गाने की फरमाइश किए हुए हैं लाल दुपट्टा मलमल का टाइटल सॉन्ग। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए, मैसेज देखा जाए, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, आप कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, कहते हैं काफ़ी दर्द भरा सॉन्ग। बिल्कुल आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सुनो सर, रंजन कुमार तमकुही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और हमारा भी फरमाइश है तो पूरा करने की खुशी से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो नमस्ते सर, समीर आलम जंगलिया से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और क्या हाल है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सोनू जी, मैं रेखा पांडे सरिया वार्ड नंबर 5 से, और मैं आज रेखा जी का गाना फरमाइश नहीं कर रही हूँ, अगली बार करूँगी, पर अभी मुझे लाता जी का गाना सुना दीजिए। मेरा गाना है ए मेरे वतन के लोग। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने का फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि तुम्हारी आंखों की गहराई में मैंने अपना सब कुछ खो दिया, तुम्हारी आंखों की गहराई में मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, तुम्हारी हंसी की लहर में मैंने अपना जीवन खो दिया है। सुनो भाई नमस्कार, ये दिल अब भूल जा, सुपर सॉन्ग। इस मैसेज को करते हैं दिलीप राम जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, मेरा भाई अभिनंदन मिश्रा का नाम जरूर लीजिएगा, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करने वाले अतीक्ष मिश्रा हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, कहते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, कृपया मेरे गाना सुनाएं। तो चलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, गाने की फरमाइश है तो कौन से गाने सुनेंगे, इसमें नाम तो नहीं दिख रहा है। यदि गाने का नाम फिर से बताते हैं, एक शब्द तो दिख रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, गाने का नाम फिर से बताते हैं तो कोशिश रहेगा कि आपकी फरमाइश हम पूरी कर दें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, मैं पल्लवी कुमारी नरेनिया मीरगंज से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर, मैं सन्नी पटेल और सॉन्ग सनेहिया लगावल बहुत बात नहीं है, तो बिल्कुल बहुत बात नहीं है लेकिन गाने के फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। और बढ़ा जाए आगे, अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: ये कौन गा रहा है?
1: है कोई प्यार के गीत गाने वाला, जंगल जंगल घूमता है प्यार के नए नए गीत लेकर, कभी दर्द भरे तो कभी खुशी के।

रेडियो रामझेम 90.4 FM सुनने आप सब, और काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे थे। और यहाँ पे आगे मैसेज कहीं पहुँचे और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि गाना बजाने के लिए थैंक यू सर जी, आपको धन्यवाद है रेडियो रामझेम 90.4 FM पे। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि गाना सुना दीजिए, मैं नाचू बिन पायल घुंघरू टूट गए। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम निरंजन जी। और काफ़ी पहले मैसेज किए हुए थे और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। अगली गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं यहाँ पे, मैसेज किए हुए हैं अजय कुमार मिश्रा जी ग्राम गणेश स्थान माझा से, और गाने के फरमाइश करते हैं तुझको ना देखो तो दिल घबराता है, जानवर मूवी से। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेम छिम 90.4 FM पे। शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे आगे देखा जाए कुछ मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे अजय जी के द्वारा मैसेज पहुँचा हुआ है। लिखा गया है कि मेरा भतीजा का आज जन्मदिन है, इस अवसर पर इस गाने को सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए रेडियो रिमझिम सुनने के लिए आपको भी धन्यवाद है और साथ में एंजॉय करने के लिए रेडियो रिमझिम के आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मधु सरिया से राजू कुमार और सॉन्ग की फरमाइश करते हैं तो आज तो नहीं पूरा हो पाएगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि काइंडली सर सॉन्ग प्ले कर दीजिए, तो थोड़ा सा सब्र करें आपकी सॉन्ग प्ले कर देंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, बस तुझी से प्यार है और तुझी से मोहब्बत, तुझी से दुनिया है मेरी, तुझी से पापा हसरत। सुनो भाई नमस्कार, जानो और मूवी की सॉन्ग सुपर। और मैसेज करते हैं दिलीप जी, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि गाने के फरमाइश करते हैं बार बार ये दिन आए, बिल्कुल पूरा करने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं रोहित जी की और डॉक्टर अमोद कुशवाहा ग्राम जय छपरा जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, बन रहे हमारे साथ और बढ़ते हैं आगे गाने को प्ले करते हैं।

रेडियो एम जी 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का, और इस गाने के फरमाइश करने वाले रोहित जी हैं और आगे में से कई पहुंचे हुए हैं, और इनके तरफ से रिक्वेस्ट भी पहुंचा हुआ था कि पूरा सॉन्ग सुनाइएगा, लेकिन क्या करें, मेरे पास कई श्रोतागण की फरमाइश है और पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत लंबे समय के गाने हैं और आगे कई श्रोतागण अपने गाने को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा समझें और आगे हम अगले गाने को प्ले करें। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया जी, गाना प्ले करने के लिए शुक्रिया। चलिए आपको धन्यवाद है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि काइंडली सर, तो बिल्कुल आपकी भी गाने हम प्ले करेंगे, थोड़ा सा सब्र कर ले, एक गाने के बाद आपकी भी फरमाइश हम प्ले कर देंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और इस गाने की फरमाइश करती हैं फरीदा, और गाने की फरमाइश इनके तरफ से दिया गया है तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, इस गाने को फरमाइश करती हैं, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सब रेडियो एम जी 90.4 एफएम पे। इस मैसेज को करती हैं बंगरा से,

0: कभी प्यारा सॉन्ग रेडियो रामझीम 94 एफएम पे सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज और मैसेज किए जा रहे हैं। और चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं सनी पटेल जी, और गाने का बोल देते हैं, सनिया लगावल बहुत बात नहीं है, नजरिया चुरावल बहुत बात होला।
1: हमनी के मिलन अब नहीं हो सकत, कुछ मजबूरी बा जेकरा कारण हम तो उसे ना मिल सकीला।
2: काहे आखिर काहे रोवलू जब हंसावे के ना रहे, काहे गुनगुनौलू जब गावे के ना रहे, आज आंसू पोछा तनी एगो प्रश्न बन के, काहे कैलू मोहब्बत जब निभावे के ना रहे।

रेडियो MCM 94 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए, तो आगे कई मैसेज तो हम शामिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समय जो है समाप्ति से काफ़ी आगे निकल रहे हैं हम, और यहाँ पे आगे मैसेज कई हैं। अंतिम गाने हम प्ले करते हैं और आज उनके लिए खास है, और यहाँ पे आज बर्थडे के उपलक्ष्य में इस गाने के फरमाइश किया गया है, तो इनकी फरमाइश हम जाते जाते प्ले कर जा रहे हैं। और गाने का बोल दिया गया है, बार बार दिन ए आए, बार बार दिन ए आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, और रेडियो MCM परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। गाने को प्ले करते हैं और फिर इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले दिन। तब तक आप सब सुनते रहें रेडियो MCM 94 FM, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में योजना के प्रमुख पहलुओं और देश भर के विद्यार्थियों के हित में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha had passed the legislation yesterday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha today gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Lok Sabha Speaker Om Birla, stating once again that he is open to having a detailed discussion on the several incidents that took place during the protest on the NEET paper leak issue. Talking to reporters in the Parliament complex, the minister said the government itself is saying that it is ready for a discussion and will provide answers, but the opposition does not want to hear the answers and is shying away from the discussion.
3: The government wants a discussion in Parliament while the opposition is running away from it. This is difficult to imagine because in a parliamentary democracy, it is usually the opposition that demands a discussion and the government that responds. But here, the government itself is saying that it is ready for a discussion and will give answers, while the opposition does not want to hear those answers and is walking away. We have repeatedly said that we want a discussion, but they are not agreeing to it.
2: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has urged Indian businesses and citizens to adopt fair trading practices, promote recycling and reuse, and encourage a circular economy while taking Indian products and services to global markets. The minister said this while addressing the inaugural ceremony of Bharatiya Vyapari Mahotsav 2026 in New Delhi today. University Grants Commission, UGC, has issued 16 Letters of Intent, LOIs, to foreign higher educational institutions from Australia, Italy, UK and the US. Minister of State for Education, Dr. Sukanta Majumdar, said this in a written reply in the Rajya Sabha today. He informed that UGC has issued LOIs to 6 foreign higher educational institutions in Karnataka, 6 in Maharashtra, 3 in Delhi NCR and 1 in Tamil Nadu. Indian Railways has approved 153 crore rupees construction project of a 4-lane road over bridge at Gairatpur-Ahmedabad section of Western Railway. The ministry said the railway bridge portion will have a total length of 106 meters. It will comprise 2 composite girders of 53 meters each. Indian Railways has also approved the provision of Kavach version 4.0 on 660 route kilometer of

0: This is Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar. Market Mantra ke taza ank ko lekar hum hazir hain. Hamesha ki tarah arthniti, karobar aur share.
2: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
3: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माय चॉइस का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपने गाने की फरमाइश। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल।
4: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: मनोरमा है।
4: जी जी,
5: गाना सुनना है।
4: जी, गाना सुनाएंगे, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
5: मेरा नाम कुशवाहा पड़ेगा, कानपुर से बोल रहे हैं।
4: अच्छा, कैसे हैं आप?
5: बहुत अच्छे मैम, गर्मी तो बहुत है मैम, आज बहुत दिन खराब हो गया।
4: गर्मी तो है, तो वैसे क्या हो रहा है अभी?
5: अभी बैठे हैं।
4: खाना वाना भी आपका?
5: खाना आपका खाना?
4: जी जी, आपकी सुनवाई बता दीजिए।
5: गाना सुनवाइए मैम, जनरे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
4: सर, गाना किस करती है?
5: अभी रेडियो रोहतक।
4: तो वैसे आप ये रेडियो रिंगिंग को कैसे सुनते हैं?
5: मोबाइल से सुनते हैं, रेडियो भी है हमारे घर, रेडियो से भी सुनते हैं।
4: अच्छा, मतलब मोबाइल ऐप के जरिए?
5: नहीं नहीं, रेडियो जो सर मोबाइल, जो मोबाइल में रेडियो होता है ना।
4: हाँ,
5: इससे सुनते हैं।
4: चलिए, बहुत अच्छी की बात है। मतलब कितने समय से सुन रहे हैं?
5: उसी समय से चालू हुआ।
4: अच्छा,
5: 2009 5 जनवरी को जो समय से सुनते हैं।
4: चलिए, बहुत अच्छी की बात है। कैसा लगता है आपको कार्यक्रम?
5: बहुत बढ़िया, हर प्रोग्राम अच्छा लगता है। हर समय समय से, पहले तो 12 बजे बंद हो जाता था ना, 5 बजे खुलता था, अब तो चालू हो गया 24 दिन में, और रात में 11 बजे तक सुनते हैं।
4: मतलब आप ऑल प्रोग्राम सुनते हैं?
5: सब प्रोग्राम सुनते हैं, सुनता है, कोई काम में चले कोई बातें नहीं, समय रहता है तो जो प्रोग्राम आता है वो सुनता है।
4: आप गाना डेडिकेट भी है?
5: बोले हैं सभी को।
4: ओके, तो ले करते हैं गाना आपका।
5: जी मैं,
4: जी रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा आ रहा हूँ मैम, मैयर एमपी से।
0: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम। तो अभी इंतजार खत्म हो गया मैम, फोन तो लग गया। अभी तो फरमाइश का इंतजार रहेगा मैम, तब बजेगा आज तो कल,
0: कोशिश रहेगा कि
1: तो जी। तो आज फरमाइश है कुमार सानू का, आवाज में है, गाने के बोल है मारे कटारी मैं मर जाऊं, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं मैम।
0: ओके ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: धन्यवाद मैम।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, नमस्कार।
6: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
7: जी अरुणा जी, क्या हाल चाल है?
6: जी बढ़िया है, अपना बताइए, आप कैसे हैं?
7: हम जी बढ़िया, और मैं दिलीश राम दिलीश।
6: जी जी, कैसे हैं आप?
7: यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी से परेशान है।
6: जी यहाँ पे भी बहुत गर्मी,
7: लेकिन आप लोग ऐसी है बैठे रहना, हम लोग को धूप में चलना पड़ता है, पूरे दिन रोड पे चलना पड़ता है, गाड़ी चलाना पड़ता है।
6: ऐसे क्या करते हैं?
7: मैं गाड़ी चलाता हूँ यहाँ पे, और आपके रेडियो से गाना भी सुना रहे हैं। बहुत गाना, बहुत गाना भी सुना रहे हैं। हमारे इतने आर्जे लोग आए और हम लोग यहीं पे आए, आर्जे लोग हैं कि आज भी हम लोग से प्यार मोहब्बत है, और सभी लोग अच्छे जानते हैं लिखना जितने जितने सारे अभी तो आप लोग अभी अभी आई है।
6: वैसे आज की फरमाइश बता दीजिए।
7: जी हेलो।
6: जी जी, फरमाइश बता दीजिए अपनी।
7: आवाज सब बिक जा रहा है, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। गाना है तेरा पता मालूम नहीं, ये वाला सॉन्ग सुना दीजिएगा।
6: जी जी, बता दीजिए।
7: आपको सुनने वाले आपकी टीम कमाल सुनने वाले रेडियो में।
6: ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
7: और कुछ मंगलमय हो।
6: नमस्कार।
8: ये

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 FM
0: नमस्ते।
1: में। नमस्ते
0: अनिल बात कर रहा हूँ छोटू से।
1: जी जी कैसे हैं अनिल जी?
0: बस बढ़िया, आप बताइए और आपकी टीम के बारे में बताइए।
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ और हमारे यहाँ के टीम भी सब कोई बढ़िया है।
0: आप भारती जी बोल रही हैं ना?
1: नहीं
0: मनोरमा जी बोल रही हैं?
1: जी जी
0: जी, अभी मेरा कॉल लगा था, अभी आवाज में डिफरेंट नजर आ रहा है क्योंकि कॉल लगा और फिर कट गया, आधा अधूरा बात हुआ था।
1: जी, वो नेटवर्क इश्यू की वजह से कट गया।
0: हाँ,
1: तो
0: तो आज का फरमाइश है हमारा, कुमार सानू का सॉन्ग है, बहुत दिन हुए हैं देखे हुए तुझे यार।
1: वैसे आप दो लाइन गा के सुना सकते हैं?
0: गाना तो बहुत कम गाते हैं लेकिन आप कहिएगा तो थोड़ा सा गुनगुना देंगे।
1: जी
0: बहुत दिन हुए हैं देखे हुए तुझे आजा, याद नहीं है उतना अच्छा से, खराब हो गया गाना ही, खराब हो गया पूरा।
1: कोई बात नहीं, आप
0: थोड़ा सा सुने हुए ज्यादा दिन भी हो गया ना, इसलिए तो सोचे कि आज रेडियो पे ही फरमाइश कर रहे हैं इस गाने का।
1: जी जी बिल्कुल
0: अब आप गवा दी हमको, अब भारती जी से जब बात होगी वो भी गवाएंगी, सोनी जी आएंगी तो वो भी गवाएंगी।
1: तो कोई ना, आप बहुत अच्छा गाते हैं इसीलिए बोले।
0: नहीं, गाना बहुत कम गाते हैं वैसे, कभी प्रयास कर लेंगे घर से ही, मतलब उसको रिपीट कर लेंगे फिर उसके बाद उस दिन हम गा के सुना देंगे बढ़िया से गा।
1: जी जी बिल्कुल। तो
0: वैसे आप
1: आप
0: लोगों का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है रेडियो रिमझिम पे, और आपसे एक बार बात हुई थी तो वो कॉल बजा नहीं था, और बाकी सब ठीक है।
1: जी, वैसे तो मैं कॉल रिकॉर्ड नहीं की थी, आज बहुत दिन के बाद कर रही हूँ।
0: आप स्टार्टिंग में जब आई थी, जब आप लोग शुरुआत में जब आप आई थी और भारती जी को भी उसमें योर वॉइस योर चॉइस में लाया गया,
1: जी जी
0: उसी टाइम के बाद बता रहे हैं।
1: अच्छा, हाँ तो कोई मेरी कहीं मिस्टेक हुई होगी। तो वैसे तो मैं सारा गाना प्ले की थी,
0: हाँ,
1: अगर आप कहीं नहीं सुने होंगे भी हो सकता है।
0: नहीं रेडियो ये तो कोई बोल ही नहीं सकता कि हम नहीं सुने होंगे, मतलब रेडियो तो मतलब एक सोशल मीडिया का युग होने से मतलब नहीं है, वो सब तो बकवास की चीजें हैं, वो अपनी अपनी जो सरकार आ रही है तरह तरह की स्कीमें ला रही है। रेडियो जो है वो किसी का नहीं है, वो भारत सरकार का ही है, लेकिन उसका और बाकी सोशल मीडिया एप्लीकेशन का ये जवाब नहीं हो सकता, वो अलग चीज हो गया, ये अलग चीज हो गया।
1: जी
0: इसमें पारदर्शिता होती है, जो भी चीजें आती हैं अच्छी ही आती
1: जी बिल्कुल
0: है। जी
1: ठीक है अनिल जी, तो अगर गाना उस दिन नहीं बजा होगा उसके लिए सॉरी। और ये
0: अरे
1: कोई
0: ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इसका कोई मतलब दिल पे नहीं लेते हैं, हम अपना ही ना परिवार है, परिवार में सबको रहना है, गलती सही सबसे होता है।
1: जी,
0: जी
1: तो अनिल जी गाना प्ले करते हैं।
0: जी
1: जी
0: थैंक यू।
1: वेलकम, सुनते रहिए।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, आप बात कर रहे थे 90.4 FM।
6: नमस्कार मैम।
5: नमस्कार,
6: कैसी हैं मैम
5: जी? बढ़िया है, अपना बताइए।
6: हम भी ठीक है, नाश्ता पानी हो गया है?
5: हो गया। और आपका?
6: मेरा भी हो गया है।
5: चलिए बहुत अच्छी बात है। वैसे आपका नाम?
6: सुनीता देवी।
5: हम तो आवाज सुन के ही पहचान गए, लेकिन क्या करे, अगला आदमी को भी तो पता चले।
6: जी जी जी मैम।
5: वैसे कहाँ से?
6: हाजीपुर से।
5: अब क्या हो रहा है अभी?
6: अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी बैठे हैं, तो इसीलिए सोचे की तो आज बुधवार है, आज लगाएं कॉल करें। सोमवार को तो नहीं लगाएं, तबीयत खराब था, उपवास से तो सो गए थे।
5: वैसे मौसम भी चेंजिंग हुआ है, इसकी वजह से भी तो।
6: जी जी मैम, दो दिन से तो धूप बहुत ज्यादा तेज हो रहा है।
5: बहुत ज्यादा। क्या कर रहा?
6: और सब बोलिए।
5: जी सब बढ़िया। आज की फरमाइश बता दीजिए।
6: जी मैम, गाना तो भूल गए हैं, मगर ये गाना याद रहा है, खेसारी लाल के नहीं है, शंकर भगवान को गाना है, रात दिन रावनी है, रात दिन राउर बैला लाला, वही बजा दीजिएगा मैम।
5: और सुनवाना भी है?
6: जी मैम, आपको, भारती मैम को, सभी भाई और बहनों को सुनाना है।
5: तो आपके घर परिवार में सब कोई ठीक है?
6: जी मैम, सब कोई ठीक है। आपकी?
5: जी मेरे यहाँ भी सब कोई ठीक है।
6: चलिए ठीक है,
5: ठीक है। तो आपका गाना प्ले करते हैं।
6: थैंक यू मैम।
5: रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: थैंक यू मैम।
5: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी, मैं अरुण मिश्रा बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 2 से गोपालगंज।
1: जी, क्या हाल चाल है अरुण जी?
0: बस बहुत बढ़िया है जी। आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं?
1: जी जी, हम लोग भी बढ़िया हैं।
0: जी, आप लोग आपका तो ये रेडियो का जो आदमी सुन करके बिल्कुल हमेशा टाइम का इंतजार करता रहता है कि हाँ अभी टाइम होगा, अभी कॉल करेगा, ये प्रोग्राम अभी सुनेगा। बहुत अच्छा है, सुबह का प्रोग्राम भी तो जो है वो आदमी को जिंदगी के लिए एक नया ढाल बन गया है, जो प्रवचन आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत जी। हमको गाना सुनना है, मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है।
1: ओके, हेलो जी जी, और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: जी, सबसे पहले तो आप आए और जितने भी ये फिल्म का दोस्त साथी हैं, जितने भी आदमी सुनते हैं, उन सबको सुनाना। ठीक है
1: जी। तो मौसम कैसा है उधर का?
0: मौसम तो बस सही है, मौसम जो है मौसम बना हुआ है, बारिश का ऐसे संभावना लग रहा है कि शाम तक बारिश होएगा, क्योंकि ये भादो के जैसा नहीं लग रहा है, एक कुवार का जैसा लग रहा है। घाम में काफी मतलब वो है, थोड़ा सा भी धूप लगता है ना तो लगता है कि बस कमरा सूख गया। सही मौसम नहीं है,
1: ऐसा लग नहीं रहा जैसे कि सावन का महीना चल रहा है।
0: आप ही देखिए ना, बाहर निकलकर देखेंगे तो आपको खुद अंदर का अपना बता देगा कि सावन भादो के जैसा नहीं लग रहा है, ये कुवार के जैसा लग रहा है। कुवार में जैसा धूप निकलता है ना, ऐसे एक क्वेश्चन नहीं किया था कि कमरा कब सूखता है, तो बताने वाला बताया कि कुवार में। आंसर सही हो गया, यही बात है कि दुमास लग गया था ना। दुमास लग गया, अगर सीधा सीधा महीना जोड़ा जाए ना तो ये कुवारी है। ठीक है, मैडम जी गाना सुना दीजिए, आज सुनाएंगे कि कल?
1: कोशिश रहेगा कि आज ही चले। ठीक है, तो गाना प्ले करते हैं आपका।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो,
3: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
3: जी कैसे हैं सुनील जी?
2: बढ़िया है मैडम जी, और बरसात हो रही है और आपका रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं।
3: अच्छा जी, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
3: अच्छा, तो बारिश हो रही है अभी उधर?
2: जी जी जी, बारिश, रात का ही पानी गिर रहा है, अभी पानी गिर रहा है।
3: अच्छा, हमारे तरफ तो बहुत ज्यादा धूप निकला हुआ है।
2: जी हम आपके इधर गिर रहा है क्या पानी?
3: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है, धूप निकला हुआ है बहुत तेज।
2: अच्छा, उधर धूप निकल रही है उधर?
3: जी।
2: अरे वाह, हमारे यहाँ तो कल से आपको ठंडा ही हो गई, हमने पंखा कूलर सब बंद कर दिए हैं, अब तो नॉर्मल है।
3: अच्छा, तो कहीं लोग बारिश से परेशान है, कोई कहीं गर्मी से?
2: जी जी
3: जी। तब खाना वाना हो गया आपका?
2: जी अभी नहीं हुआ है।
3: अच्छा,
2: भारती जी बोल रही है? सोनी जी
3: नहीं,
2: मनोरमा जी।
3: जी जी
2: जी, बहुत दिनों में बात हुई है मेरी आपसे आज।
3: जी क्या ना, भारती जी रिकॉर्डिंग कर रही थी बीच में।
2: तो मैडम जी, पिक्चर का नाम है आज दीवाना मुझका नहीं कोई।
3: ओके, और गाने के बोल?
2: गाने के बोल है, सारे लड़कों को कर दो शादी, बस एक को कुंवारा रखना।
3: ओके, और गाना डेडिकेट किया?
2: जी जी मैडम जी, सबसे पहले आपको है, भारती मैम को है, सोनी मैम को है, और अपने गोपाल ओझा जी है, जितेंद्र धाकड़ती है, इन सभी को ये गाना डेडिकेट है, जितने भी ये रेडियो सुन रहे हैं उनको। और ये प्ले कब होगा मैडम जी?
3: पूरा कोशिश रहेगा कि गाना आपका आज ही प्ले हो।
2: जी धन्यवाद।
3: तो गाना प्ले करते हैं
2: जी।
3: ये सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: धन्यवाद।

0: हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में। जी, क्या हाल चल रहा रिश्मा जी?
1: ठीक बा, आप बताए?
0: जी, हमारो बढ़िया बात।
1: कल बनी
0: राहुल
1: तो ठीक बा?
0: बिल्कुल बढ़िया बा।
1: मुनारवा में?
0: जी, बढ़िया बानी। ठीक बनी
1: बनी।
0: चलिए, बढ़िया की बात है।
1: आज गाना सुना दी।
0: बता दी।
1: हारे हारे हम तो दिल से हारे।
0: काई दो लाइन लोग गा के बता सकते नहीं?
1: बता दे।
0: बिल्कुल
1: याद नहीं है, थोड़ा सा याद था।
0: हाँ हाँ, उतने गई ना।
1: हरे हरे हरे हम तो दिल से हरे। इतना याद है मैडम जी?
0: कोनो बात नहीं के। और ये गाना आ रहा क्योंकि सुनवाई के भी चाहता नहीं?
1: और सुन ले, मैं जितना सुनता सब कोई सुने।
0: चलिए, बढ़िया बात।
1: अच्छा मैडम जी, अगले बजू
0: है शुक्रवार के हम रिकॉर्ड कर।
1: शुक्रवार? अच्छा,
0: गाना

0: घर परिवार में सबको ठीक बनो
1: जी मैडम जी सब ठीक बा बताई
0: जी जी यहाँ पे भी सब ठीक
1: बात सबको ठीक बा
0: सबके बढ़िया
1: बात सबको ठीक बा
0: बढ़िया
1: बात में बनी
0: चलिए ठीक बात और गाना प्ले कर पानी
1: जी मैडम जी बजा दे आज तन बजा दे तो ठीक है
0: जी जी पूरा कोशिश रही
1: हाँ ठीक बात
0: सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: जी मैडम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone kinde bajte hai to kehte hain।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम।
5: आज तो बड़ी खुशी की बात है कि एक ही बार कॉल लगाया लोग।
6: जी जी
5: हाँ, नहा करके आए थे। जानते हैं कि आज पंच खुला है, एक महीना के बाद आज नहाए है। सोचे कि अब तो टाइम नहीं है, लगा कर देखे के लगता है कि लग गया। बोलिए समाचार, बोलिए अपना।
6: जी सब बढ़िया है,
5: ठीक है ना।
6: जी जी
5: आज तो घाम हुआ है।
6: गर्मी तो बहुत है।
5: गर्मी है आज।

0: गर्मी है यार, गर्मी में गर्म पानी से गोसल किए।
1: अब क्या करिएगा जब व्यवस्था दी तो नहाना।
0: और सब सुनाइए
1: जी। सब बढ़िया। आप नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
0: हमारा नाम है मैनुद्दीन अहमद। पहचानते नहीं है, बराबर करते हैं।
1: जी जी पहचानते हैं, लेकिन हमारे श्रोता लोग तो जाने।
0: हाँ हाँ, मैनुद्दीन अहमद, घर जुमरिया, उसका गाँव थाना में पड़ता है।
1: और सब बढ़िया ना।
0: हाँ हाँ ठीक।
1: अभी खाना वाना हो गया ना।
0: हाँ अभी तो खाना खाए।
1: ये बढ़िया,
0: अभी खाना खाए है, सेब खाए।
1: तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
0: हाँ हमारा फरमाइश ले लीजिए, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, पूरी फिल्म का।
1: और ये आप सुनवाना भी चाहते हैं किसी को।
0: कब सुनाइएगा?
1: पूरा कोशिश रहेगा कि आज ही बजे आपका गाना।
0: अच्छा ठीक। वो उसने तो हमे को बज गया, सुन ली सुबह भी बज गया, सुन ली दो बार आ गया। ठीक है,
1: वालेकुम अस्सलाम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: थैंक यू। मैं निसार अहमद लकड़ी दरगाह जिला सिवान से बोल रहा हूँ। जी, मैं निसार अहमद लकड़ी दरगाह जिला सिवान से मैं बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? भारती जी?
1: नहीं जी, मैं मनोरमा।
0: अच्छा, मनोरमा जी।
1: जी जी
0: जी, अच्छे से कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, सुनते हैं हम। तो गाना हमको सुनना है,
1: बता दीजिए।
0: लास्ट कॉल है मेरा अब शायद।
1: नहीं,
0: अभी है कॉल, इसके
1: कॉल है
0: और गाना है, और थोड़ा गुनगुना कर बता देते हैं।

0: यही गाना है।
1: ओके, वैसे आप अपना नाम क्या बताएं?
0: निसार अहमद, लकड़ी दरगाह, जिला सिवान।
1: ओके, तो ये आप गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: पहले तो आपको, भारती जी को, आज सोनी मैडम जहाँ भी हैं, ये गाना उनके लिए भी है, और जितने भी रेडियो इंजिन सुन रहे हैं उन सभी भाई बहनों के लिए और अपने फैमिली के साथ ये गाना सुनना चाहते हैं।
1: ठीक है, तो गाना प्ले करते हैं आपका।
0: थैंक यू
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजिन 90.4 FM।
0: थैंक यू, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं।
2: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो
4: जी, नमस्कार।
3: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
4: जी सर, मास्टर बोल रहे हैं गना से।
3: जी जी, कैसे हैं आप?
4: हम लोग बढ़िया से, अच्छे से हैं। आप लोग कैसे हैं बताइए?
3: जी जी, हम लोग भी बढ़िया हैं। लोग
4: बढ़िया हैं, रेडियो रिमझिम परिवार सब लोग अच्छे से हैं।
3: जी जी, सब कोई बढ़िया है।
4: आपके तरफ बारिश हो रहा है कि नहीं?
3: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है,
4: बड़ी धूप कड़ा निकल रहा है।
3: जी धूप तो है।
4: तो ये तो पहला कॉल लगा हुआ है?
3: जी जी, पहला ही कॉल।
4: जी सर, गाना सुना दीजिए, गाना सुनवा दीजिए।
3: बता दीजिए,
4: 8 और 16 मूवी का। आज सुबह जब मैं जगा, आज सुबह जब मैं जगा, ओ तेरी कसम ऐसा लगा तूने मुझे याद किया है। ये वाला गाना मैडम।
3: ओके, और ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
4: जी, सबसे पहले आपको और जितने रेडियो रेंजिंग सुनने वाले श्रोताओ है सभी को, और हम लोग थनाओ से रोशन ट्रेलर में सुनेंगे सभी लोग।
3: तो ये आप रेडियो रिमझिम को कैसे सुनते हैं?
4: मोबाइल से सुनते हैं,
3: मोबाइल ऐप के जरिए।
4: ऐप के जरिए? हाँ, और रेडियो हम लोग का तब थोड़ी बजेगा, पकड़ भी नहीं करेगा रेडियो में।
3: जी जी, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
4: हम धनाव थाना नासरीगंज, जिला रोहतास, बिहार से, जिला रोहतास का हम लोग हैं।
3: अच्छा, चलिए बढ़िया। तो आपका गाना प्ले करते हैं?
4: जी
3: जी। रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: जी धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
0: जी दिल से धन्यवाद। मैं संजय कुमार शाह, ग्राम बढ़ा मनिया, पूर्वी चंपारण बिहार से।
1: जी, कैसे हैं संजय जी?
0: जी मेरा हाल खबर बिल्कुल बढ़िया है। थोड़ा गर्मी तो बहुत ज्यादा है, गर्मी थोड़ा नहीं कहा जाता है, लोग
1: जी गर्मी तो बहुत।
0: जी बाकी हाल खबर ठीक है, बढ़िया है। और कहीं ना रूम में बैठे हैं, आप आ रहे हैं, सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, सब घर पर जा रहे हैं, सब ठीक ठाक है। और सब उधर के मौसम बताइए, उधर इसे गर्मी क्या है, बरसात हुआ है कि नहीं, आजकल होता है कि नहीं बरसात?
1: तो बहुत है, धूप भी निकला हुआ।
0: जी जी, हमारे यहाँ 50 रोज पहले ही से बारिश रुका है, 4 रोज पहले बारिश हुआ था।

0: या कुछ मित्र की याद करना चाहता है तो पहले आपको वो रेडियो इंजन संपन्न परिवार को और दोस्त में हो गया शेखाना से मामा साबी जी रामेश कुशवाहा जी अलीबा कुम से नरेश सोहनी दीपक दास गायबहन ठाकरे जीना साहब धर्मेंद्र यादव उर्फ मिथुन धनराज कृष्ण कुशवाहा मदन राम भैरवी भैरवंशी राजेंद्र यादव भाटी सतलाल गौतम उत्तर प्रदेश मऊ से सलार अंसारी मोहम्मद सलार अंसारी बजवलिया का विशेष उनको संगीता सहासोक हरिंद्र प्रसाद यादव मिगुप्ता कौशल किशोर प्रसाद जितेंद्र समर्थन नीरज गुप्ता हमारे नाम से देने पर चले तमाम आते हुए अभी आपसे चलेंगे। नमस्कार
1: नमस्कार। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके रेडियो
4: जी। गाना सुनना चाह रहा हूँ
5: जी। गाना सुनवाएंगे, आप नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
4: कमलेश कुमार बलुआटोला मनियारा फार्म से।
5: अच्छा,
4: गाना सुनना है बुलर राजा के बाबा धाम का गाना।
5: जी बता दीजिए।
4: बुलर राजा गाना बाबा धाम के नाम का।
5: कौन सा आवाज कट के आ रही है?
4: बाबा धाम के गाना।
5: गाने के बोल
4: देवघर बाबा के। बुलर राजा कौन गाना बजाई? नाव का गाना बजाई ना।
5: अच्छा ठीक है, मतलब भोजपुरी में या फिर हिंदी?
4: बाबा धाम गाना बोलूंगा ना।
5: तो मतलब हिंदी में या फिर भोजपुरी में?
4: भोजपुरी में बजाइए।
5: अच्छा, और गाना सुनवाना भी है
4: जी?
5: ओके, तो गाना प्ले करते हैं
4: जी।
5: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिम 90.4 एफएम में।
0: जी थैंक यू, हम कैसी हैं?
1: जी बढ़िया है, अपना बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
1: कोई अच्छी की बात है। वैसे आपका नाम?
0: नेहा।
1: कहाँ से बोल रही है नेहा जी?
0: काका मुसाफिर।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है।
1: क्या हो रहा था अभी?
0: अभी आराम करेंगे।
1: खाना वाना हो गया आपका?
0: जी।
1: ये बढ़िया है। तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
0: सावन मजा न देगी गाना,
1: चूड़ी मजा न देगी, कंगन न मजा देगी।
0: जी
1: ओके। और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
0: आपको और जितने भी रेडियो रिंगटोन कभी को।
1: ओके, वैसे नेहा जी आप ये रेडियो रिंगटोन को कैसे सुनती हैं?
0: जी ऐसे सुनती हूँ,
1: गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड की हैं।
0: जी
1: ये बढ़िया, मतलब कब से सुनते आ गई आप ये कार्यक्रम?
0: 2000।
1: अच्छा, तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिंगटोन का कार्यक्रम?
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: मतलब सबसे अच्छा कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है रेडियो
0: रिंगटोन?
1: अच्छा जी, चलिए बढ़िया। तो नेहा जी आपका गाना प्ले करते हैं। जी रेडियो रिंगटोन 90.4 एफएम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्कार।
7: नमस्कार।
6: हेलो मैम, हम बोल रहे हैं ना।
7: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
6: अपना सुनाइए।
7: जी मेरा भी बढ़िया।
6: अरे हमारे से कोई गलती हो गया है क्या? मैंने कॉल किया, 312 कॉल किया, दो बार लगा उसके बाद ही काट दिया गया।
7: नहीं, कॉल कटा नहीं हो क्या ना, नेटवर्क इश्यू की वजह से कट जाता है कभी कभी।
6: हो सकते की कोई भारी गलती हो गई है हमारे।
7: नहीं नहीं है, कोई बात नहीं।
6: बहुत परेशानी होती है कॉल लगाने में, है ना, तो ऐसा लगता है कि बना हुआ घर गिर गया। हाँ, अगर विश्वास न हो तो आप एक बार लिसनर बन के कॉल करके देख लेगा।
7: नहीं, हम
6: इतना परेशानी होती है,
7: तब तक दूसरा।
6: हाँ, 300 बारी आज कॉल किया, अब दो बार लगा इसके बाद कट गया।
7: चलिए कोई ना,
6: तो मैं सोचा कि लगता है कोई गलती हो गया है, बोलूंगा कि मैम देखिए हमारी नंबर ही ब्लॉक कर दो, क्या फायदा।
7: नहीं नहीं, ऐसी बात।
6: और सब अपना सुनाइए।
7: जी जी, सब बढ़िया।
6: इस बात को अपने दिल पे मत लेना, मैं ऐसे बोल दिया, बहुत परेशानी होती है।
7: समझते हैं।
6: हाँ, तो इस बात को आप दिल पे मत लेना, क्योंकि किससे कहेंगे, आप ही से कर सकते हैं ना।
7: जी बिल्कुल।
6: हाँ, तो वही बात है। शुरू से आप ही रिकॉर्डिंग कर रहे थे, शुरू से रिकॉर्डिंग आप ही कर रहे हैं।
7: नहीं नहीं, आज मेरा रिकॉर्डिंग है। आपका नाम?
6: गणेश कुमार मिश्रा। दिल्ली पहचान नहीं रहे क्या? तो मैं ऐसे भी सोचा कि आज लगता है मनोरमा मैम है, इसीलिए लंबा क्या बात करने का अलग तरीका है, इसलिए थोड़ी लगता है बिजी ऐसा जा रहा था ना, लग रहा था कि मनोरमा में नहीं है आज। क्योंकि आप लंबा बात होते हैं ना। चलिए, आप पहले का भी रिकॉर्डिंग हमारी आता है की हुई है, आज भी एक रिक्वेस्ट ले लीजिए, भोजपुरी ही है, मैं ज्यादा करके भोजपुरी देता हूँ लेकिन बढ़िया देता हूँ, कोई अश्लील गाना नहीं। तो आज भी एक है गोटू राजा के, है गाने का बोल है, खाली रथे कर और ही काम बा, माई बाबू के चरण में चारों धाम बा।
7: ये आप गाना एक बार गा के बता सकते?
6: खाली तीरथ है काम बा, माई बाबू के चरण में चारो धाम बा। बस इतना ही।
7: बहुत अच्छा गा लेते हैं
6: मैम। मैं तो बहुत अच्छा गाता ही था, थोड़ी टेंशन में आजकल जी रहे हैं साल डेढ़ साल से, इसलिए थोड़ी वो, नहीं तो मैं तो गांव में एग्जाम जो होता है ना 24 घंटा का, उसमें मैं गाता था, मेन में मैं गाता, पर पानी की वजह से थोड़ी टेंशन में। तो हम तो गा तो बहुत अच्छा लेते हैं, संगीत हमें बहुत प्रेरणा, संगीत तो बहुत प्रेम है, इतना मूवी से मुझे प्रेम नहीं है, संगीत प्रेम, संगीत सुनकर मैं रातों भर जगा रह जाऊंगा, इतनी प्रेम है। हाँ, इसलिए थोड़ी सी हमारी बातों पर गौर करना, बहुत परेशानी है आप लोगों से बात करने के लिए।
7: जी जी।
6: गाने सुनने का माध्यम तो बहुत है, सुन सकते हैं जैसे मर्जी, लेकिन एक आप लोगों के द्वारा जो गाना बजता है उसका एक अलग ही है। तो ये कब तक बज जाएगा
7: ये गाना आपका? कल बजेगा, लग रहेगा कि आज ही बजे।
6: नहीं, पिछला भी आपका एक बार ही है, गाना मेरा सुना दीजिए।
7: गाना
6: फिर करते हैं, बात करके बहुत अच्छा लगा।
7: चलो गाना भी करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: ओके।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम 90.4 FM में।
0: अस्सलाम वालेकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या खैरियत है?
1: जी बढ़िया, अपना बताइए।
0: मेरा भी अच्छा। आपकी तरफ के मौसम कैसा हुआ है?
1: धूप से निकला हुआ।
0: जी गर्मी बहुत ज्यादा है।
1: आज गर्मी है। वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
0: हम माझा से बोल रहे हैं।
1: अच्छा, और आपका नाम?
0: मेरा नाम साई पलक है।
1: साई पलक
0: जी।
1: बहुत प्यारा नाम है।
0: जी
1: तो क्या हो रहा है अभी?
0: अभी आपके पास कॉल कर रहे थे, एकदम बिजी बता रहा था लाइन। तो क्या कि अभी लगा है कॉल?
1: चलिए, अब कॉल लग गया तो अपनी फरमाइश बता दीजिए।
0: क्या मौसम आया है?
1: क्या आप दो लाइन गा के बता सकती हैं?
0: नहीं, मतलब इतना ही याद है क्या मौसम आया है? सुना दीजिए गाना। सर आपको भी डेडिकेट करना चाहते हैं, सभी डिजिटल को डेडिकेट करना चाहते हैं।
1: ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है। क्या

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: तो श्रोताओ, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
4: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: बाय लोटस।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हर का गौरव सारण प्रमंडल की शान गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: और

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आज विक्रम संवत 2083 श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दिनांक 13 अगस्त 2026 दिन गुरुवार के इस सुप्रभात में रेडियो रिमझिम का पूरा परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। आज सूर्योदय प्रातः 5:31 तथा सूर्यास्त शाम 6:29 के आसपास होगा। तो आइए जानते हैं आज का आदर्श वाक्य। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय उनसे प्रेरणा लेना सीखिए, क्योंकि प्रेरणा आगे बढ़ाती है और ईर्ष्या पीछे खींचती है। श्रोताओं, उगते सूरज की सुनहरी किरणों ने प्रकृति को जगाना शुरू कर दिया है और हमारी स्टूडियो घड़ी में सुबह के 5:00 का संदेश दे रही है। नई उमंग, नई ऊर्जा और सकारात्मक विचारों के साथ आइए आरंभ करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा एक मधुर और भक्तिमय गीत के साथ।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।